सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथ है कमल श्री में।
0: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शाटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: सुनने वाला सब श्रोता लोग के दीपाली के तरफ से सुप्रभात प्रणाम। तो दोस्त लोग, रोज की तरह आज भी हम लेके आ गई बनी कुछ हर्बल उपाय, जौना के अपना के रवा रहम स्वस्थ और खुशहाल। कार्यक्रम आपन दी आपन देखभाल में। रहुआ खुशी के और दुगुना करे खातिर हम बताई कुछ हेल्थ टिप्स। श्रोतागण, आज हम सबसे पहले बताएं गोखरू के बारे में। दोस्त लोग, गोखरू के पौधा जमीन पर फैलेला और प्रायः सब जगह पावल जाला। विशेषकर खेत के आसपास जंगल में और इस साधारण स्थान में भी वर्षा ऋतु में ये पौधा उग जाला। एकर गुण ये होला कि गोखरू अग्नि के बढ़ावे वाला, पित्तवात के शमन करे वाला, मूत्राशय के शुद्ध करे वाला, विपाक में मधुर, बल एवं पुष्टि दायक, शीतल व्रिय वर्धक, पेशाब की रुकावट के दूर करे वाला, पथरी के गलावे वाला, वात रोग नाशक, सुजाक, प्रेमी श्वास में गुणदायक, गर्भाशय के शोधन करे वाला, खांसी, वात रोग और बावसीर दूर करे वाला, मूत्रपिंड के उत्तेजना देवे वाला, बंधत्व मिटावे वाला, हृदय रोग और प्रोस्टेट ग्लैंड के सूजन दूर करे वाला होला। यूनानी चिकित्सा पद्धति में एकर सुजाक प्रमेह, मूत्राशय और गुर्दा के पथरी नष्ट करे वाला, खुश्क तथा गरम मानल गई बा। नपुंसकता के दूर करे वाला और मूत्र के रुकावट ठीक करेला। एकरा प्रयोग में सावधानी ई बरते के होला कि यदि गोखरू के निर्दिष्ट मात्रा से अधिक सेवन कई जाए तो इसे तिल्ली और गुर्दा की हानि पहुँचे के संभावना बढ़ जाला, साथ ही कफ जनित अनेक रोग भी उत्पन्न हो सकेला। दोस्त लोग, आई जानल जाओ गोखरू के उपयोग से कौन कौन रोग से हमनी के छुटकारा पा सकतनी। मूत्र मूत्र के रूके पर यानी मूत्रावरोध पे, गुर्दा के संक्रमण तथा प्रोस्टेंट ग्रंथि में सूजन होके या एकर आकार बढ़ जाए से मूत्र के प्रवाह प्राय बाधित हो जाला। ई रोग से मुक्ति पावे खातिर गोखरू के फल के चूर्ण 1 से 2 चम्मच एक ग्लास दूध में पका के सुबह और शाम लगातार पिए से मूत्र प्रवाह चालू हो जाला और मूत्र से संबंधित रोग भी मिट जाला। नपुंसकता में नियमित रूप से 6-6 घंटा के अंतराल पर 1-1 चम्मच गोखरू के फल के चूर्ण में आधा

0: तक नियमित रूप से सेवन कइल जाए कोनो भी अन्य कारण से होके वाला नपुंसकता दूर हो जाला। यौन शक्ति बढ़ावे और शीघ्र पतन रोके खातिर एक एक चम्मच गोखरू और शतावरी के चूर्ण एक कप पानी में उबाली और छान के पी ली। यौन क्षमता में वृद्धि हुई, साथ ही शीघ्र पतन की शिकायत भी दूर हो जाई। पेशाब में जलन, मसान या गुर्दा में संक्रमण होखे से प्रायः हो जाला। गोखरू फल और पत्ता के समान मात्रा में लेके पानी डाल के काढ़ा बनाई। काढ़ा छान के एक काढ़ा के दिन में 3 बार पिए से फौरन लाभ मिली। पथरी होके पे 1 चम्मच के मात्रा में दिन में 6-6 घंटा के बाद गोखरू के पंचांग के चूर्ण, गाय के दूध के साथ सेवन करी। आ विकल्प के रूप में बकरी के दूध से 1 चम्मच गोखरू के बीज के चूर्ण, कई दिन तक लगातार लेवे से भी पथरी छोटा छोटा टुकड़ा में गल के टूट जाई और फिर मूत्र के साथ बाहर निकल जाई। सुविधा अनुसार दोनों में से कौनो एक उपाय करी। प्रमेह दूर करे और पुंसत्व शक्ति बढ़ावे खातिर गोखरू के फल, शतावरी, कोच के बीज, खीरेंटी और ताल मखना सबके समान मात्रा में लेके चूर्ण बना के 1-1 चम्मच चूर्ण सुबह शाम गरम दूध के साथ लेवे से ये दोनों रोग तो नष्ट हो ही, साथ ही शरीर भी पहले की बजाय अधिक पुष्ट हो जाए। एक रोग में उपयोगी गोखरू के पाक, दोस्तों गोखरू के ताजा पाकल होकल फल के लेके कूट ली, फिर गाय के 1 किलो दूध में धीमा आंच पर धीरे धीरे पाके दी। आप बीच बीच में कलछी से हिलाते रही ताकि तले पर ना गल जाए। जब खोआ बने लगे तो इसमें 125 ग्राम गाय के दूध डाल के भुनी और 500 ग्राम चीनी के चाशनी पहले से बना के रखी। फिर मावा भून जाए के बाद उसमें चीनी के चाशनी डाल के थोड़ा देर पकाई, फिर आंच से उतार ली। अभी में लौंग, सौंठ, पीपल, हल्दी, जावित्री और जायफल के प्रत्येक 3-3 ग्राम लेके उसके चूर्ण बना के ये मिश्रण में डाल के अच्छा तरह मिला दी। यदि इसे अधिक शक्तिप्रद और प्रभावक बने के चाहतनी एमे बादाम, पिस्ता, किशमिश, काजू आदि मेवा के कतरन भी डाल के रोजाना 10 से 15 ग्राम की मात्रा में गरम दूध से सेवन करें। नियमित रूप से कुछ समय तक ई योग के प्रयोग करते रहे से मूत्र रोग, प्रमेह और गर्भाशय की विकृति दूर हुई। इसे शरीर में बल वृद्धि हुई और ये शरीर पुष्ट भी हो जाए। उपचार के दौरान हल्का और सुपाच्य भोजन ली, खटाई, मिर्च और मसाला आदि से भी परहेज करी। तो दोस्त लोग आज हमनी के जननी है सन गोखरू के बारे में। तो आज खातिर बस इतना ही, काहे कि अब समय हो गई बा रउआ से विदा लेवे के। एगो प्यारा सा मुस्कान के साथ आपन दोस्त दीपाली के दी जाए के आज्ञा। आर रखे रहुआ आपन सेहत के ख्याल, आज माई ये सब नुस्खा के आ सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4। नमस्कार।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: देखिए दो टाइप की सोच है, एक कि इंसान खुद को बदल ही ना पाए और दूसरा कि वो बस घड़ी घड़ी बदलते जाए। तो शकुनी भैया जो हमारे हैं वो दूसरी तरह के इंसान है। चौसर की पहली कोशिश नाकाम होने पर भी वो चुप नहीं बैठे। दुर्योधन को फिर से उकसाया और न चाहते हुए भी धृतराष्ट्र ने पांडवों को एक बार फिर से चौसर खेलने के लिए बुलावा भेज दिया। ये महाभारत बेटे के मोह में पड़े बाप की कहानी है और मैं इसका साक्षी हूं। मैं आकाश हूं। मैंने ये भी देखा है कि कैसे शकुनी लगातार दुर्योधन के घावों को कुरेद कुरेद कर उसके अंदर की नफरत की आग को बुझने से रोक रहा था, क्योंकि आग बुझ गई तो शकुनी बुझ गया और शकुनी कैसे बुझेगा, बड़ी पुरानी आग है।
7: मेरे होते पांडव तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे भांजे, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरे ही पासे अन्याय और अपमान को कुचलने के लिए ही जन्मे हैं। देख लेना भांजे, कल उन्होंने तुम्हारी हंसी उड़ाई थी और आज सारा संसार उन पर हंसेगा। सारा संसार उन पर हंसेगा भांजे, सब हंसेंगे उन पर।
8: बस मामा बस, मैं यही चाहता हूँ, निचोड़ लीजिए उन पांडवों की शक्ति, उनका अहंकार, उनका वैभव।
7: बाघ के पंजों से तो कोई बच सकता है बांझे, पर मेरे पासों से कोई नहीं बच सकता।
8: पर मुझे भय है मामा कि यदि पितामह फिर से पांडवों के पक्ष में खड़े हो गए तो क्या होगा, और उनका आदेश तो आपने देखा है, कोई भी टुकरा नहीं सकता।
7: शैतान की देवी जिसकी पूजा करती है तेरा मामा वो है, और तेरा मामा कह रहा है संदेह मत कर भांजे, संदेह मत कर।
8: मामा पर उस कृष्ण को रोकने का उपाय जरूर सोच लीजिएगा, जिस छलिया ने यहां ना होकर भी पांचाली की लाज बचा ली वो कुछ भी कर सकता है मामा।
9: आपको तो सब कुछ पता था कृष्ण, फिर ये अनहोनी क्यों होने दिया आपने, दूर बैठे तमाशा क्यों देखते रहे, क्या आपके मन ने आपको कोई संकेत नहीं दिया, आपको आभास तक नहीं हुआ? क्या ये समझना मेरी भूल है कि आप हमारी आत्मा में उतरकर सब कुछ जान लेते हैं?
10: तुम जहां हो मैं वही हूं कृष्णा, तुम्हारे स्वर मेरे हैं, तुम्हारी आत्मा से निकली तुम्हारी वो पुकार भी मेरी ही पुकार थी।
9: तो दुर्योधन को रोका क्यों नहीं तुमने कृष्ण, क्या तुम मुझे उसके हाथों अपमानित होते देखना चाहते थे? यदि मैं और तुम एक ही हैं, तो क्या मेरा अपमान तुम्हारा अपमान नहीं है?
10: प्रत्येक घटना स्वयं में कुछ रहस्य छुपाए रहती है पांचाली। तुम्हारे इस अपमान का रहस्य भविष्य में अवश्य प्रकट होगा।
9: भविष्य की प्रतीक्षा में मैं अपना वर्तमान खो दूं केशव? एक दुराचारी के हाथों अपनी मर्यादा दांव पर लगा दूं?
10: तुम भोली हो कृष्णा, जो सच नहीं जान सकी। दांव पर तुम नहीं, स्वयं मैं लगा था। तुम मेरी चिरंतन शक्ति हो और जुए में वही शक्ति दांव पर लगी।
9: मैं तुम्हारी गूढ़ बातें नहीं समझ सकती काना, पर मेरे साथ जो हुआ उससे मेरी जीने की इच्छा खो चुकी है। मैं केवल इसलिए जीवित हूँ कि कौरवों से प्रतिशोध ले सकूं, और इसके लिए तुम्हें एक बार नहीं बार बार आना होगा।
10: तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा क्रोध है पांचाली। प्रतिशोध की अग्नि में अपने आप को मत जलाओ। तुम्हारा यही क्रोध कहीं पांडवों का विवेक न हर ले।
9: पांडव मैंने उनकी शक्ति देख ली केशव, देख लिया उनका साहस, उनका पुरुषार्थ, उनका विवेक।
10: भूल कर रही हो पांचाली, युधिष्ठिर को पहचानने में भूल कर रही हो तुम। उन्होंने जो कुछ भी किया भविष्य के लिए किया। और
9: क्या हुआ, अचानक चुप क्यों हो गए केशव?
10: तुम्हें भावनाओं के इस युद्ध से बाहर निकलना होगा पांचाली।
9: अवश्य निकल जाऊंगी, पर हम पर अन्याय होता देखकर भी सबका इस तरह चुप्पी साध लेना?
10: प्रतीक्षा करो कृष्णा, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। याद रहे, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी अनीति सत्य को पराजित नहीं कर सकती। सब कुछ हारने के बाद भी धर्म की ही जय होती है। वर्तमान तुम्हें विचलित अवश्य कर सकता है, पर पराजित नहीं। पर इस विजय से पहले बहुत कुछ देखना है तुम्हें।

0: को साथ ले चलना चाहता हूँ।
1: तो ठीक है भैया, हम चलेंगे और इस बार दुर्योधन का अंत होकर रहेगा।
0: यदि तुमने दुर्योधन पर घात किया भीम, तो महाविनाश को कोई नहीं रोक सकेगा, ना तात विदुर, ना धृतराष्ट्र, ना पितामह भीष्म।
1: तो विनाश के डर से हम अपने मान सम्मान से समझौता कर लें, उनके इशारे पर नाचते फिरे, वो जब भी बुलाए हम उनकी सभा में अपने बर्बादी का खेल खेलने पहुंच जाएं। ये कौन सा पुरुषार्थ है, ये कौन सी धर्मनीति है आपकी?
2: संकट नीति और धर्म का नहीं है भैया भीम, संकट उस अनजाने षड्यंत्र का है जिससे दुर्योधन हमें अपना शिकार बनाना चाहता है।
3: हम में से कोई नहीं चाहता भैया कि षड्यंत्र के जिस चक्रव्यूह से हम निकल कर आए हैं फिर उसी में फंस जाएं। पांचाली ने जो भोगा है वो आपसे छुपा नहीं है भैया, उसने जो कहा था उसे तो याद कीजिए।
4: यदि धर्मराज उसे याद कर लेंगे तो फिर से जाकर द्यूत का आनंद कैसे लेंगे नकुल?
0: पांचाली, मैंने आनंद के लिए हस्तिनापुर का निमंत्रण नहीं स्वीकार किया, मैं भविष्य के विनाश को देख रहा हूँ और उस विनाश को रोकना चाहता हूँ।
4: तो रोकिए, आनंद से रोकिए, भला आप उस पीड़ा को कैसे समझेंगे जो मैंने सहन की है। पर एक बात सुन ले ज्येष्ठ, अब तक तो मैं शांत रही पर अब मैं कोई और परीक्षा नहीं दे सकूंगी।
0: इस युद्ध को रोकने का और कोई उपाय नहीं है पांचाली, मैं जानता हूँ कि यदि हम हस्तिनापुर नहीं गए तो दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई करने का बहाना मिल जाएगा। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे सपनों के इंद्रप्रस्थ को युद्ध की अग्नि में होम कर दूं।
4: क्या आपके भ्राता आपके विचारों से सहमत है?
0: मैं सभी भ्राताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कुरुवंश को विनाश और मुझे इस कलंक से बचा ले, मेरी कोशिश में मेरा साथ दे। मैं सबकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, आप सब भी मेरी भावनाओं का सम्मान करें।
2: आप कुछ कहना चाहते हैं भ्राता भीम?
1: यदि कोई कुछ नहीं कहना चाहता तो मैं भी चुप हूं।
4: इसका अर्थ ये हुआ कि आप सभी अपने अग्रज के सम्मान में हस्तिनापुर के लिए निकल रहे हैं।
0: हाँ पांचाली, और इस बार केवल एक दाव लगेगा, उस दाव में जय या पराजय जो भी मिले हम सभी को स्वीकार करना होगा।
4: हे कृष्ण, ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? फिर से वही द्युत, फिर से वही दाव, फिर वही लज्जाहरण। आप इन्हीं पांडवों का पक्ष लेते हैं जो बार बार भूल पर भूल करते रहते हैं। आपने कभी समझने का प्रयास किया कि ये फिर से क्यों कूद पड़े उसी जुए में?
5: धर्म का मार्ग कठिन होता है पांचाली, इसलिए तुम अपनी शक्ति बनाए रखना।
4: मुझे केवल तुम पर भरोसा है माधव, नहीं होकर भी तुम सर्वत्र हो, तुम हर एक घटना के साक्षी हो। कोई अनहोनी हुई तो तुमसे ही पूछूंगी और तुम्हें ही मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।
6: तो आखिर द्रौपदी कृष्ण से बात कैसे कर रही थी जबकि कृष्ण तो द्वारिका में थे? दरअसल भगवान से बात करने के लिए उसको द्वारिका में खोजने की क्या जरूरत है, वो तो कहते हैं ना भीतर ही होता है। जैसे शैतान को भी तो खोजना नहीं पड़ता, वो भी भीतर ही होता है शकुनी की तरह।
7: अब इसमें हंसने की क्या बात है मामा, वो आ गए हैं और अब हमारे साथ खेलेंगे भी, पर केवल एक दांव।
8: और उसी एक दांव में उनका सर्वनाश हो जाएगा भांजे।
7: और यदि हम वो दांव हार गए तो?
8: हम कभी हार ही नहीं सकते भांजे, तुम हार सकते हो, मैं हार सकता हूं, लेकिन मेरे पासे कभी नहीं हार सकते।
7: अर्थात मेरी विजय निश्चित है?
8: तुम सिर्फ विजय का उत्सव मनाने की तैयारी करो भांजे, विजय की तैयारी। विजय की तैयारी।
9: मैं समझ नहीं पाता युधिष्ठिर कि ऐसा कौन सा बंधन था कि

0: तुम एक बार अपना सब कुछ हार कर फिर से वही अनैतिक खेल खेलने चले आए। क्या अभी भी दुर्योधन को समझना बाकी है? क्या तुम अभी तक शकुनी के पासों को नहीं समझ सके?
1: मैं ता धृतराष्ट्र का निमंत्रण कैसे ठुकरा सकता था पितामह? उन्हें कैसे ना कह सकता था मैं?
0: ना नहीं कह सकते तो जाओ, खेलो सर्वनाश का खेल। जाओ, सभा सज गई है, वही सभा, वही पासे, वही शकुनी और वही अनैतिकता।
2: मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि इस बार भी मेरी ओर से गंधार पति शकुनी ही पासे फेंकेंगे
3: और पूर्व निर्धारित शर्त के अनुसार इस खेल में केवल एक दाव खेला जाएगा। दाव हारने वाला 12 वर्ष तक वनवास करेगा और 1 वर्ष अज्ञातवास होगा, जिसमें उन्हें छिपकर रहना होगा, क्योंकि यदि अज्ञातवास में उनका भेद खुल गया तो दोबारा यही सिलसिला शुरू होगा, अर्थात फिर से 12 वर्षों का वनवास। तो खेल शुरू करते हैं।
2: चलिए, पासे फेंकिए धर्मराज और जीत लीजिए बाजी।
1: अवश्य दुर्योधन, और देखना इस बार मैं अवश्य जीतूंगा।
4: हे ईश्वर, तुम जानते हो कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं गुरुवंश के हित के लिए कर रहा हूं। इस बार मुझे निराश मत करना।
1: तो मामा शकुनी, हम 5 पांडव द्रौपदी और माता कुंती मिलकर 7 जन हैं, इसीलिए ये रही मेरी चाल 7। वाह 7! अब आप पासे फेंकिए गंधार राज।
3: अरे अरे धर्मराज, 7 आपने तो दे दी मुझे मात। आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। अब मैं क्या चलूं मैं? हाँ, नहीं, रुको, क्या करूं? हाँ, अब मैं सबसे बड़ी चाल चलूंगा, 12। और देखना, मेरे दोनों पासों में 6 6 आएगा। 6 और 6 12, लो ये मारा। 12 12 12 12 12 12।
5: मैं इसे नहीं स्वीकारता। ये छल है। सुबल पुत्र ने हमारे साथ छल किया है। शकुनी ने
3: ये छल नहीं है, तुम्हारी मूर्खता का फल है।
5: हमारे साथ षड्यंत्र हुआ है महाराज।
6: शांत हो जाओ भीम, शांत हो जाओ। मोटे भैंसे की तरह गरजने से हार जीत में नहीं बदल जाती।
5: मैं तुझे चीर डालूंगा दुर्योधन। हमसे छल करने का दंड मिलेगा तुझे। मैं तेरा शरीर खंड खंड करके यमुना में बहा दूंगा।
6: तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ भीम, चुपचाप बैठ जाओ, वरना इस सभा में मेरे योद्धाओं को देख रहे हो ना, तुम में से कोई भी सभा से जीवित नहीं निकल पाएगा।
5: तो ठीक है, जिसमें साहस है सामना करे मेरी गदा का।
7: अब कौरव और पांडव आपस में लड़ पड़े। देखो क्या है, लड़ने का क्या है, लड़ पड़े। उनको समझ में आ गया था कि शकुनी ने जरूर कोई खेल खेला है, पर अब जो होना था सो तो हो ही चुका था। और जब कोई एक बार जलने के बाद भी फिर से आग में हाथ डाले तो क्या कहेंगे उसको आप बताइए, युधिष्ठिर? हाँ, अरे नहीं, इतना ना बिचारे प्यार तुम। खैर चलिए, महाभारत।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पर शिव नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89974।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
5: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नवोदय विद्यालय को लेकर की गई समीक्षा बैठक में हुए कई आवश्यक निर्णय। सारण निर्वाचन को लेकर राजनैतिक दलों के साथ की गई बैठक। महावीरी अखाड़ा पर शांति समिति की हुई बैठक। और एक साल से राशन नहीं उठाने वालों की अब होगी जांच। कई अलग अलग मामलों में आज एक दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज जवाहर नवोदय विद्यालय में अभिभावक शिक्षक परिषद यानी PTC की मासिक बैठक भी की गई। बैठक में विद्यार्थियों की शिक्षा, अनुशासन और सुरक्षा को लेकर गंभीरता से मंथन किया गया। विद्यालय में बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाए रखने के लिए नियमों का सख्ती से पालन कराने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में विद्यालय परिसर में मोबाइल फोन लाने और उसके उपयोग पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही बिना अनुमति विद्यालय परिसर से बाहर जाने वाले विद्यार्थियों पर भी कड़ी निगरानी रखने की बात कही गई। प्राचार्य सुधाकर शुक्ला ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और अनुशासन से किसी भी तरह, किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बलेसरा में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता के उद्देश्य से मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रबंधन और समिति की बैठक में भी कई मांग के आधार पर जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उचका गांव की चिकित्सकीय टीम विद्यालय परिसर में पहुंची और स्वास्थ्य शिविर में बच्चों की जाँच की गयी। मेडिकल कैंप के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उचका गांव की टीम ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली के संदर्भ में भी आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और सजग बनाना बताया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन एवं निर्वाचन की तैयारियों तथा आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लेकर समाहरणालय के NIC कक्ष में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। जिले में अलग अलग क्षेत्रों में लगातार महावीरी अखाड़ा का आयोजन हो रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। सभी इलाकों में जहां जहां महावीरी अखाड़ा का तारीख तय हुआ है वहां शांति समिति की बैठक की जा रही है। इसी को लेकर बरौली बाजार में भी शांति समिति की बैठक की गई, जिसको लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष और नगर परिषद के सभापति, जन प्रतिनिधि, अनुज्ञप्तिधारी और शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि महावीरी अखाड़ा को लेकर शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और अनुशासित आयोजन सुनिश्चित करने के लिए सभी अखाड़ा समितियों को आवश्यक निर्देश दिया गया। वहीं डीजे तथा ऑर्केस्ट्रा पर पूर्णतः प्रतिबंध की बात कही गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट के आलोक में सारण शिक्षक निर्वाचन एवं निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को दी गई। साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की गई। बैठक में बताया गया कि 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 23 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पूर्वाहन 8 बजे से अपराह्न 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा, तो वही मतगणना 27 अक्टूबर को निर्धारित है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों और आदर्श आचार संहिता का सभी संबंधित पक्षों द्वारा भी कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए। इसको लेकर राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से उन्होंने आवश्यक विचार विमर्श भी किया। विभागीय निर्देश के आलोक में गोपालगंज अनुमंडल अंतर्गत ऐसे 5099 राशन कार्ड धारियों की सूची उपलब्ध कराई गई है जिनके द्वारा पिछले 12 महीने से खाद्यान्न का उठाव नहीं किया गया है। उक्त सूची विभागीय लॉगिन अनुमंडल पदाधिकारी लॉगिन में उपलब्ध कराई गई है। सभी संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सूची का प्रखंड स्तर पर सत्यापन कराते हुए ऐसे राशन कार्ड जिनके लाभुकों द्वारा लगातार 12 माह से खाद्यान्न का उठाव नहीं किया गया है के संबंध में नियमानुसार आवश्यक जांच प्रतिवेदन समर्पित करें। आम जन की जानकारी एवं पारदर्शिता के उद्देश्य से संबंधित सूची प्रखंड आपूर्ति कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, पंचायत, सरकार भवन तथा संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के पास उपलब्ध करा दी गई है ताकि संबंधित उपभोक्ता इसका अवलोकन कर सके। यदि किसी उपभोक्ता का नाम उक्त सूची में शामिल है और उनके द्वारा खाद्यान्न का नियमित उठाव नहीं किया जा रहा है अथवा किसी कारण से उनका नाम राशन कार्ड निरस्त नहीं किया जाना चाहिए तो वे 17/9/2026 से 30/9/2026 तक संबंधित प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में आवश्यक साक्ष्य प्रमाण के साथ अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति अथवा आवश्यक साक्ष्य प्राप्त नहीं होने तथा सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत पात्रता एवं नियमानुसार संबंधित राशन कार्ड को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। कई अलग अलग मामलों में आज पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। इसमें बैकुंठपुर पुलिस ने 85 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ एक कार को जब्त किया। इसमें किसी तस्कर के गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बैकुंठपुर के 70 घाट पुल के पास छापेमारी कर कार को पकड़ा। इसके अंदर से शराब मिली, तस्कर फरार हो गया। पुलिस ने कार और शराब को जब्त किया है। जगतौली थाना की पुलिस ने भी 26 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने भोपतपुरा स्याही नदी के पास वाहन जांच शुरू किया था। इसी में मोटरसाइकिल से तलाशी ली गई तो शराब पकड़ी गई। इस मामले में सुधीर महतो, पिता राम पुकार महतो, साकिन कररिया थाना श्यामपुर भटहा जिला शिवहर को गिरफ्तार किया गया है और इसकी शराब और गाड़ी को जब्त कर इसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। विजयपुर थाना की पुलिस ने 20 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सरया मोड़ के पास वाहन जांच करते हुए इस शराब को पकड़ा। इस दौरान पकड़े गए आरोपी संतोष मदेसिया, पिता कैलाश मंडल, साकिन हरदिया, मुसहर टोली थाना विजयपुर को गिरफ्तार किया गया है और इसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सिधवलिया थाना की पुलिस ने भी 111 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ एक कार को जब्त किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सियरुआ सरकारी स्कूल के पास इस गाड़ी को पकड़ा। इसके अंदर से 111 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली। इस मामले में तस्कर फरार हो गया है। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर तस्कर की पहचान करनी शुरू कर दी है। फुलवरिया थाना की पुलिस ने भी 67 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया और एक कार को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना पर फुलवरिया थाना क्षेत्र के ग्राम सत्तू बबुला गांव के पास छापेमारी की, जहां कार को पकड़ा गया। इसके अंदर से विदेशी शराब मिली, जिसके बाद आरोपी मोहम्मद हाकिम को गिरफ्तार किया गया है, जो नथुनी कुरैशी का पुत्र है और पटियाला थाना अहियापुर जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके साथ ही कोर्ट के द्वारा जारी वारंट और अन्य कांडों में भी पुलिस ने अलग अलग थानों से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी को आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने उचका गांव थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अपराध निदेशिका का अवलोकन किया, गुंडा पंजी और अन्य अभिलेखों के संधारण तथा लंबित कांडों की समीक्षा की। साथ ही फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी, वारंट एवं कुर्की के निष्पादन, वाहन जांच अभियान तथा शराबबंदी से संबंधित कार्यों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन, अपराध नियंत्रण, शराब एवं अन्य अवैध कारोबार के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही और संवेदनशील स्थलों का सतर्क निगरानी तथा आमजन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने के लिए दिशा निर्देश दिया। कुचायकोट थाने में 62 किलोग्राम चरस जैसा मादक पदार्थ पुलिस ने 2022 में बरामद किया था। इस मामले में अभियुक्त आसिफ अंसारी पिता कासिम अंसारी, साकिन अंसारायन और शान मोहम्मद पिता चांद मोहम्मद साकिन तलाही, दोनों थाना झिंगाना जिला शामली उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और अब अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए इन्हें सजा सुना दिया, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि इस मामले में दोनों अभियुक्तों को अदालत ने दोषी पाते हुए 10-10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 1,00,000 रुपए के अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रात्रि में रेलवे यात्रियों और बस से उतरने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर लगातार पुलिस के तरफ से बस का संचालन रात्रि में किया जा रहा है। इस निःशुल्क बस संचालन में बहुत सारे यात्री रात्रि में अपने सुरक्षित गंतव्य स्थानों तक पहुंच रहे हैं। अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रेलवे स्टेशन से उनके गंतव्य तक सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए थावे रेलवे स्टेशन, मीरगंज रेलवे स्टेशन और गोपालगंज शहर के बस स्टैंड से तथा गोपालगंज रेलवे स्टेशन से भी रात में बस का संचालन पुलिस के द्वारा करवाया जा रहा है। इसमें पुलिस के पदाधिकारी, पुलिस कर्मी बस में मौजूद रहते हैं और यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्यों तक पहुंचाते हैं। बरौली प्रखंड के बघेजी सरकारी विद्यालय में एक शिक्षक के साथ स्थानीय लोगों के मारपीट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक संजय कुमार त्रिवेदी के साथ स्थानीय लोग मारपीट कर रहे हैं। वायरल वीडियो में इसका दावा किया जा रहा है। इसको लेकर आज जिला शिक्षा पदाधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। थावे दुर्गा मंदिर परिसर में विकास कार्यों को लेकर अंचल प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। रोड नंबर 8 पर संचालित 28 अस्थायी दुकानों को 25 सितंबर तक हटाने का अंतिम निर्देश जारी किया गया है। अंचल कार्यालय थावे की ओर से जारी आम सूचना में सभी संबंधित दुकानदारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर दुकानें खाली करने को कहा गया है। अंचलाधिकारी सुधीर कुमार ओंकार ने बताया कि इससे पहले 2 जून को भी सभी दुकानदारों को 1 सप्ताह के अंदर दुकानें हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अब तक दुकानें खाली नहीं हुई हैं, जिसके बाद पुनः एक और समय दिया गया है। इसके बाद प्रशासन अपने स्तर से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई में लग जाएगा। गोपालगंज स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में आज 11वें आयुर्वेद दिवस को उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में जिले के आयुष एवं आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने भाग लिया। इस दौरान आयुर्वेद के महत्व, इसके उत्पत्ति, चिकित्सा पद्धति और स्वस्थ जीवन शैली में इसकी उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिविल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद इजराइल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान देशी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कमर परवेज ने उनका स्वागत किया। जिला स्वास्थ्य प्रबंधक धीरज कुमार और कमला राय कॉलेज के प्रोफेसर TN सिंह का भी जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चिकित्सकों ने कहा कि आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा परंपरा है। इसका उद्देश्य केवल रोग का उपचार करना ही नहीं बल्कि व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना भी है। वक्ताओं ने आयुर्वेद की उत्पत्ति, इसके सिद्धांतों और दैनिक जीवन में इसके महत्व के बारे में जानकारी दी। लोगों को संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। चिकित्सकों ने कहा कि वर्तमान समय में बदलती जीवन शैली के कारण लोग कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में आयुर्वेद की जीवन शैली आधारित अवधारणाएं लोगों के लिए उपयोगी हो सकती हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर करुणा निधि, डॉक्टर अशफाक अहमद अंसारी, डॉक्टर धीरज कुमार मिश्रा, डॉक्टर देवेंद्र पांडे, डॉक्टर आशुतोष पांडे, डॉक्टर कुमारी प्रियंका, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर इरशाद अहमद, डॉक्टर प्रीति कुमारी पांडे, डॉक्टर विकास कुमार, डॉक्टर इमाम हुसैन, डॉक्टर बाबुद्दीन, डॉक्टर शौकत अली, डॉक्टर हेमंत कुमार सिंह, डॉक्टर पीएस मिश्रा सहित जिले के सैकड़ों आयुष एवं आयुर्वेदिक चिकित्सक उपस्थित रहे। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नवोदय विद्यालय को लेकर की गई समीक्षा बैठक में हुए कई आवश्यक निर्णय। सारण निर्वाचन को लेकर राजनैतिक दलों के साथ की गई बैठक। महावीरी अखाड़ा पर शांति समिति की हुई बैठक। और एक साल से राशन नहीं उठाने वालों की अब होगी जांच। कई अलग अलग मामलों में आज एक दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
12: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
13: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
14: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
14: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11001।
15: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
16: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
15: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
17: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
18: Controversy, popularity, name, fame, money, success, talent, zid, mehnat, lagan, and most importantly, achhi takdeer. Yeh hai meri kahani mein hamare aaj ke mehman ko superstar banane mein. In sare factors ka barabar contribution raha hai. Inke baare mein baatein to kai hui, par inhone khud kabhi bhi किसी भी बात पे कोई सफाई नहीं दी, लेकिन आज खुद हटाएंगे कई पर्दे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से। ये है द वन एंड ओनली हिमेश रेशमिया।
19: हाय, मैं हूँ हिमेश रेशमिया।
18: तो आइए जानते हैं हिमेश की कहानी उनके करियर की शुरुआत से।
19: ऑनेस्टली मैं हमेशा ये समझता हूँ कि मुझसे और कई टैलेंटेड लोग इस दुनिया में होंगे, लेकिन कोई एक माँ की दुआएं हैं, बाबा आपका आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है, सलमान भाई

0: ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है उसने बहुत मेहनत की, बट मेहनत बहुत लोग करते हैं। वो कामयाबी तकदीर और ऊपर वाले के आशीर्वाद से मिलती है, ये सब मेरा मानना है। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी मेहनत वगैरह इतनी की, जितनी भी अगर मेहनत मैं करता भी हूं तो वो तकदीर है, कोई एक आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है, वो इमोशनल कनेक्ट है जो कहीं ना कहीं कुछ करवा रहा है, एक डिवाइन इंटरवेंशन है, एंड दैट इज व्हाट इज अ वेरी दिस माय स्ट्रांग बिलीफ। तो स्ट्रगल की बात जहां तक है, क्योंकि पहला गाना, पहला सीरियल, पहला म्यूजिक, पहला एक्टिंग का पिक्चर सब हिट हुई, तो फिर इजी हो जाती है जर्नी। उसके बाद जो लाइन से सब चीजें हिट हुई वो कहीं ना कहीं तकदीर थी, पहले भी तकदीर थी। तो मैं तकदीर को मानता हूं, मैं मानता ही नहीं हूं कि टैलेंट नाम की कोई चीज होती है। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। ऐसे इंटरव्यू में एक्चुअली कोई सुनेगा तो बोलेगा ये कैसी बातें कर रहा है, या कितने लोगों की इंटेलिजेंस को बहुत चैलेंज कर देती है ये बात, बिकॉज दे फील वेरी हर्ट कि क्या हम मेहनत नहीं करते, यानी कि हम बेवकूफ हैं। बट सच ये है कि आप बेवकूफ हो, क्योंकि वो तकदीर ही होती है। क्योंकि क्यों कोई चीज चलती है और क्यों नहीं चलती, क्यों इतने महारथी परास्त हो जाते हैं, क्यों वो कमाल कमाल के योद्धा परास्त हो जाते हैं, और कमाल कमाल की सिंपल चीजें सुपरहिट हो जाती है लाइफ में कोई भी क्षेत्र में, वो मुझे लग रहा है कि दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ डेस्टिनी और सम डिवाइन इंटरवेंशन।
1: तो सुनते रहिए ये है मेरी कहानी में हिमेश रेशमिया को। लगभग 600 650 गाने और 125 फिल्में कर चुके हिमेश का म्यूजिक क्रिएट करने का क्या तरीका है, उनकी मेथड ऑफ वर्किंग क्या है, क्या उनको कभी क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलता है अपने काम से, आइए उन्हीं से जानते हैं।
0: एक्सपेक्टेशन का मुझे बहुत प्रेशर रहता है, और उस वजह से मैं जो ज्यादातर कर रहा हूँ कि जब से मैंने ये शुरुआत से ही है कि इंडस्ट्री में लोग यूजुअली अपने गाने नहीं ज्यादा सबको सुनाते वो रिलीज के बाद, और वो कन्विक्शन एक वर्ड है कि यार मेरा बड़ा कन्विक्शन था, मेरा कोई कन्विक्शन है ही नहीं। हिमेश रेशमिया कोई कन्विक्शन में नहीं बिलीव करता, वो सैम्पलिंग में बिलीव करता है। मैं एक गाना बनाता हूँ, मैं 10 लोगों को सुनाता हूँ, अगर 9 लोगों ने कह दिया कि ये गाना सुपर हिट है और एक ने बोल दिया फ्लॉप है, तो मैं वो गाना नहीं बनाऊंगा, मैं वो फेंक दूंगा। वो मेरा पसंद की कोई मैटर ही नहीं करती, इट इज सैम्पलिंग, बिकॉज मैं ऑडियंस के लिए काम कर रहा हूँ। मेरी पसंद की है बनारस का म्यूजिक, जो क्रिटिकली बहुत अक्लेम हुआ लेकिन डब्बा है इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल सक्सेस। तो ये जो मैं सैम्पलिंग में 300 गाने बनाता हूँ, उसमें से 30 गाने सिलेक्ट होते हैं, वो 30 गाने सबको जाते हैं, उसमें से वो सबको अगर 10 out of 10 कोई बोलता है गुड, कोई बोलता है वेरी गुड, कोई बोलता है एक्स्ट्रॉर्डिनरी, तब वो पास होता है, तब वो रिकॉर्ड होता है। ये मेरी सैम्पलिंग का शुरू से रहा है, और उसी वजह से इतना ज्यादा काम मैं कर सका, बिकॉज सक्सेस की वजह से आपको काम ज्यादा ऑफर होता है। तो वो सक्सेस इसीलिए मिली कि वो सोच आई, और वो सोच तकदीर ने दी कि सैम्पलिंग करो और अपना दिमाग मत यूज करो। मैं मेहनत करता हूं, मैं गाने बनाता हूं, और मैं इतने ऑप्शंस बनाता हूं। मैं 300 गाने पहले भी लेके आया था, आज मेरे पास 500 गाने की बैंक है, और वो 500 में से फिर हम सिलेक्ट करते ही रहते हैं, फिर रोज एक नया गाना बनता है। और ये नहीं सोचा जाता कि ये 7 गाने बने हैं बस उसी को सुनाते रहो, या मैं आपको कन्विंस कर। अभी मैं हम लोगों के वहां पे कोई नॉर्मल जो हमारा स्टाफ है उसको भी ये बोलने का हक है कि ये गाना बेकार है, फ्लॉप है, और मत करो आप ये गाना, तो हम नहीं करते, बिकॉज इवेंचुअली ऑडियंस तो वैसे ही सोचेगी ना। तो उस तक जो माल पहुंचे वो अच्छा एक सैंपल लो, सो दैट इज द वे आई हैव बीन एबल टू सम क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन होता है। तो वो अपने पैसे बर्बाद करो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन के लिए। मैंने आज तक सिर्फ लोगों के लिए काम किया है, तो जब मैं लोगों के लिए काम करता हूँ और लोग मुझ पर पैसा लगाते हैं, तो मैंने तो अपने पैसे कभी नहीं लगाए। आज अगर टी सीरीज के साथ मेरी 100 फिल्में हैं तो उनका पैसा लग रहा है, और वो गाने ऑडियंस को वो बेच रहे हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री हो तो कुछ हो। और बनारस में एक प्रोड्यूसर आया था मेरे पास, जिन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ चाहता हूं कि आपकी क्रिएटिव बड़ास में निकालूं, तो मैंने की थी, तो उसमें बर्बाद वही हुआ। आज वो हमेशा कहते हैं बट ही वॉज ओके विथ इट। तो किसी और को अगर पैसे बर्बाद करने का शौक है तो वो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन हो, या मैं अपने घर में वो म्यूजिक बना सकता हूं जो बहुत क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग हो। बट जहां बात कमर्शियलिज्म की है, बट कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जैसे कि नमस्ते लंदन थे, जैसे कि आपकी कशिश सरफरोश वो गाना है, या जैसे मैं वो चांद जिसका नहीं तेरे बिन कोई आसमां इस पिक्चर में एक गाना है जो मुझे लग रहा है कि क्रिएटिवली भी उस लेवल का है, और येट मैं बहुत ही चीप गाने में नहीं जाता हूं। तो एक कमर्शियली अच्छा लगे, और एवरी एल्बम में एक ऐसा गाना मेरे सेटिस्फेक्शन का करने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो हमेशा नहीं चलता।
1: तो सुनते रहिए ये है मेरी कहानी में हिमेश रेशमिया को।

0: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710-30992 या 97-65-65-750।
6: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
8: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
8: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
8: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: कहानी दे हमेरी कहानी।
10: कहानी जारी है और ये कहानी है।
11: हाय, मैं हूँ हिमेश रेशमिया और ये है मेरी कहानी।
10: इतनी फिल्में, इतने गाने, इतने शोज करने के बावजूद भी हिमेश टाइम टू टाइम खुद को चैलेंज करते रहते हैं। आइए जानते हैं कैसे।
11: पहले मैं ऐसा करता था, टॉम डिक एंड हैरी कर ली, ये कर ली, जो छोटी एवरेज पिक्चरें हैं तो वो भी की, तो वो अपने आप से मेरी एक वो थी कि भाई प्रेम रतन धन पायो कर रहे हो, किक कर रहे हो, या जो म्यूजिक कंटिन्यूसली हिट हो रहा है, बट उसमें एक बिल्कुल आपको एक नया लड़का नई लड़की नो प्रमोशन पता भी ना चले वैसी पिक्चर मिले तो क्या आपका म्यूजिक चल सकता है। वो मेरा थॉट था, अपने आप से मेरी एक लड़ाई थी, अपने आप से मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरे म्यूजिक में मुझे उस लेवल पे अपने आप को पुश करना पड़ेगा। तो वो सनम तेरी कसम में मैंने किया और वो आज सनम तेरी कसम का म्यूजिक हर जगह लोग बात करते हैं, जिसमें अगर आप देखें कि सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई भी नहीं है, डायरेक्टर्स ऊपर आ रहे हैं, प्रोड्यूसर नया है, हीरो बिल्कुल ही नया है, कोई स्टार सन नहीं है, लड़की बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं हो तो क्या मेरा म्यूजिक चल सकता है, ये मेरा अपने आप से एक सवाल था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सारे गाने बहुत अच्छे हुए हैं, सो आई एम हैप्पी विद द म्यूजिक बिकॉज क्रिएटिवली इट्स बीन अ वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस। डायरेक्टर्स भी मेरे कहते हैं कि वो फिल्म कोई स्टार्स के साथ बनती तो बहुत बड़ी हिट हो सकती थी। एक माइंडसेट चेंज करने वाली बात है, लोगों का माइंडसेट यहाँ पर एक कंपोजर सिंगर क्यों बना, तब भी बहुत माइंडसेट मैंने तो फेस किए हैं। जब कंपोजर से सिंगर बने तो लोगों ने, पहले तो सिर्फ पांच या छह सिंगर होते थे, और तब एक 2005 में हमने जो टीवी शो किया था तब नेशनल टेलीविजन पर ये बोला था कि विद इन 2-3 ईयर्स 10,000 सिंगर होंगे, और 10,000 सिंगर हुए, तब हंसते थे लोग, 10,000 सिंगर कैसे होंगे। तो और फ्रेश सिंगर्स को एक्सेप्ट करने का, मैंने आई डोंट थिंक मुझसे ज्यादा किसी ने फ्रेश सिंगर्स को इंट्रोड्यूस किया है, माने आपने नेम इट एंड उनको ज्यादातर इंट्रोड्यूस हमने किया है, क्योंकि मुझे सलमान खान साहब के फादर जिन्होंने हमें ब्रेक दिया, सलमान भाई ने ब्रेक दिया, एक बात सिखाई है कि इंडस्ट्री को अगर आपको देखे नहीं जाओगे तो वो कर्ज चुकता नहीं होगा, और वो होना चाहिए। कुदरत तभी आपका साथ देगी जब आप इंडस्ट्री में नई टैलेंट को दोगे, तो वो सिर्फ बातें करने वाली बात नहीं होती है, इम्प्लीमेंटेशन इज द बिगेस्ट थिंग। क्योंकि मेरा काम हमेशा, मैं चाहता हूं कि बोले, और मैंने न्यू लोगों को इंट्रोड्यूस इसीलिए किया है क्योंकि शायद 15-20 साल पहले कितने ऐसे माँ के बेटे होंगे जो टैलेंटेड होंगे लेकिन प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला। आज कम से कम प्लेटफॉर्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर अच्छा गाते हो तो एक दो गाना तो मिल ही जाएगा, फिर कंपटीशन बहुत है टिकने के लिए, तो उसके लिए आपको अच्छा काम करना पड़ेगा।
10: तो सुनते रहिए ये है मेरी कहानी में हिमेश रेशमिया को। हिमेश ने एज अ प्रोड्यूसर अपने करियर की शुरुआत 16 साल की उम्र में की, फिर म्यूजिक कंपोजर बने, फिर सिंगर बने, फिर एक्टर, स्टोरी एंड स्क्रीन राइटर, और अब फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। आइए जानते हैं कि हिमेश ट्रेंड के साथ बदल रहे हैं या बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं।
11: जब पहली बार ये सब चीजें होती हैं तो माइंडसेट इंडिया में चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब चीजें बहुत बदल रही है। आज मैं दूसरे कंपोजर्स के लिए गाता हूँ, और कभी मैं दूसरे जो सिंगर्स हैं या कंपोजर्स हैं उनको गवाता भी हूं। तो ये सब चीजें पहले नहीं होती थी, पहले सब रूल सेट थे, कंपोजर सिंगर नहीं हो सकता, वो इसको क्यों गवाता, यहाँ कॉलोब्रेशन सब कुछ हो रहे हैं। उसी तरह वर्ल्ड वाइड रॉक स्टार्स एक्टर्स भी बनते हैं और उनकी फिल्में सुपरहिट भी होती हैं, यहाँ पर नहीं था लेकिन अब होने लगा है, अब एक्सेप्ट करने लगे हैं लोग। जब एज एन एक्टर मैं आया हूं तो ये मेरी 10वीं फिल्म है, तो पहली फिल्म हिट हो गई, फिर कुछ फिल्में नहीं चली, फिर एक्सपोजे में एक सक्सेस कमर्शियली मिली और क्रिटिकली भी अक्लेम मिला। तो अब अगेन ये जर्नी नेक्स्ट लेवल पे गई है, तो उसमें वर्कशॉप्स किए हैं, फिटनेस पे मेहनत की है एंड अपनी कोशिश कर रहा हूँ, बट चैलेंजिंग है, और वो चैलेंजिंग पार्ट की वजह से ही मजा भी आ रहा है, बिकॉज एक कंपोजर टू सिंगर टू एक्टर लॉट ऑफ थिंग्स, और इतनी डिबेट होती है, रोज डिबेट चलती रहती है कि भाई क्यों एक्टिंग करते हो, उसके बाद फिर 10वीं फिल्म आ जाती है, फिर प्रोडक्ट अच्छा भी लगता है, फिर डिस्कशन होती है, तो सबके अपने अपनी राय है, अपने मशवरा है। आपका शुरू सक्सेस इन स्टार्डन पे चल गई, कुछ प्लान वर्कशॉप्स तो किए नहीं थे, कुछ मेहनत की नहीं थी, फिटनेस पे काम नहीं किया था, तो जब चल गई तो उसकी चीजों को कहीं ना कहीं बहुत पैसा कमाने के चक्कर में ग्रांटेड भी लिया, पैसा कमा लिया, लेकिन काम उसके बदले में जो करना चाहिए वो नहीं किया, वो मेरी गलती थी, वो एक्सपोज में किया कि भाई एक साल मेहनत, वजन लॉस, खाना पीना बंद, फिटनेस पूरी तरह, एक एक कैरेक्टर रहे कि पूरे नाटक की तरह पहले स्क्रिप्ट याद होनी चाहिए, लुक में वो सारी चीजें आनी चाहिए। रवि कुमार का अगर आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो वो उस लेवल का यू नो परफॉर्मेंस होना चाहिए। आपके सामने एक्टर्स हैं इरफान खान, आदिल हुसैन, सारे बड़े बड़े तुर्रम खान एक्टर्स हैं जो ऐसे काम नहीं करेंगे, तो वो सबके साथ अगर आपको परफॉर्मेंस उस लेवल का देना है तो पहले मेहनत तो तैयारी थी, और डायरेक्टर भी हमारा नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर है।
10: तो सुनते रहिए ये है मेरी कहानी में हिमेश रेशमिया।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99 399 66 999।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन, मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए,
6: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
4: कॉल कीजिए 90 066 7231, जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
9: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
11: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
12: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है, इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
11: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
12: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
11: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
12: जानकारी है तो कॉल करे 62052 6112 पे।
13: कहानी जारी है और ये कहानी है।
14: हाय मैं हूँ हिमेश रेशमिया और ये है मेरी कहानी।
13: पिछले कुछ सालों में हिमेश की लाइफ में सिर्फ 2 ही चीजें बदली हैं। एक है उनकी फिजिक और दूसरी उनकी एक्सक्लूसिविटी। आइए दोनों के बारे में हिमेश से ही जानते हैं।
14: फिटनेस तो अभी क्या, एवरीवन इज रियली, ऋतिक हैज रेज्ड द बार, यू नो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप फिट तो रहो। 1.5 साल वर्कआउट किया, लेकिन मैंने नेचुरली किया है इसलिए मैंने वो गजनी वाली बॉडी नहीं बनाई, बट हाँ नेक्स्ट टाइम वो भी जाना चाहूंगा, बट नेचुरल करते करते वो फिर 3 साल का प्रोसेस। मैं 8:30-9 बजे के बाद रात को खाना नहीं खाता हूँ, सुबह 7:30-7 बजे तक. एंड सनराइज सनसेट वाला फॉर्मूला जो है वो फॉलो करता हूँ, बिकॉज दैट इज द बेस्ट फॉर आई कैन ईट मोर. आई टेक अप टू 2600 कैलोरीज, जबकि यूजुअली 1500-1600 के बाद लोग नहीं, आप भी नहीं लेते होंगे, बट क्या होता है अगर आप दिन में खाओ तो सबको डाइजेस्ट हो जाता है. एक्टर बनना है तो डेफिनेटली लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ये बात मैंने रियलाइज किया जब 2-3-4 पिक्चरें नहीं चली, क्योंकि पहली फिल्म चलने के बाद थोड़ा सा ग्रांटेड ले लिया था अपनी ऑडियंस को. और आज के बाद हिमेश जोशी, आई विल ट्राई टू ऑलवेज बी फिट. एक स्टेज हर आदमी की जिंदगी में आती है जब उसे बहुत काम करना चाहिए, एक स्टेज आती है जब उसे एक्सक्लूसिव होना चाहिए. मेरी जिंदगी में मुझे डेफिनेटली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, ये बात हर आदमी एग्री करेगा.
0: मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं अब नेक्स्ट लेवल पे जाऊं. तो एज अ कंपोजर सिर्फ अब 2 ही फिल्में करता हूं साल में. आई डोंट टेक अप माय वर्क, आई सिंग ओनली 4-5 सॉन्ग्स एज अ सिंगर, एंड आई डू ओनली 1 फिल्म एज एन एक्टर इन अ ईयर. तो पहले की तरह 650 गाने नहीं कर रहा हूँ, 120 फिल्में हो गई. तो पहले 30-30 फिल्में एक साल में कर लेते थे, अब नहीं करते. तो वो जब इतना एक्सक्लूसिविटी की है तो काम बेटर होना चाहिए. एक्सपेक्टेशंस पे फुलफिल करने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी. तो ये तो शुरुआत है, एक्चुअली द जर्नी फॉर मी इज जस्ट बिगन.

0: बाते।
1: आइए जानते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सब कुछ हासिल कर चुके हिमेश की लाइफ की फिलॉसफी के बारे में। साथ ही सुनते हैं रेडियो सिटी को डेडिकेटेड उनका स्पेशल परफॉर्मेंस।
2: मैं फिल्मी कीड़ा हूँ क्योंकि सुबह से रात तक सिर्फ फिल्में देखी है। हर रात को एक फिल्म देखता ही हूँ और फ्राइडे को थिएटर में जाके फिल्म अभी भी देखता हूँ। तो वो मेरे लिए एक बहुत मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि फिल्मों में द बिगेस्ट प्लस पॉइंट फॉर मी इज दैट माई हॉबी इज माई प्रोफेशन। और मुझे लग रहा है कि हम सबको हमारी इस किस्म की हॉबी को प्रोफेशन में बदलने का जो हमें मौका मिला वो आई थिंक वी आर वेरी ब्लेस्ड। बिकॉज दूसरे कोई काम में लोग काम करते हैं लेकिन हम काम करने के साथ साथ कहीं ना कहीं एंटरटेनिंग एंटरटेनमेंट हमारे साथ है, तो वो हम लोग थोड़े से ज्यादा ब्लेस्ड हैं। उसके लिए मैं रियली भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ।

0: बहुत लोगों का साथ है मेरे साथ और उन लोगों का साथ है जिन्होंने मुझे बनाया है, एक एक फैन ने, एक एक इंसान ने, माने जिस जिन रूट से मैं आया हूँ और उस रूट से यहाँ तक की जर्नी मुझे लग रहा है कि हर उस फैन का या हर उस इंसान का जो कहीं ना कहीं छोटे घर में, बड़े शहर में, छोटे शहर में, गाँव में, गलियों में बस रहा है, उसका जो एहसान है, जो कर्ज है, वो मैं कभी उतार नहीं सकता और उनके प्यार और आशीर्वाद की वजह से मैं टिका हुआ हूँ और टिकूंगा भी, और जो ये सोचते हैं कि नहीं टिक सकेगा उसको मुंह के बुल गिराऊंगा भी।
1: जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने की कहानी, कहानी किस्मत की बंजर जमीन पर अपनी मेहनत और पसीने से कनक सोना उगाने की, कभी खुद को साबित कर गुजरने की, तो कभी जिंदगी बदल देने वाली हार की, और कभी दुनिया जीत लेने की। ऐसी ही कहानियां करेंगी आपका इंतजार, तो सुनना ना भूलें।

0: लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99,554-97,644।
6: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
7: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम।
10: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक आमजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने समरकंद में आयोजित फिडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें दौर में इंग्लैंड को मात दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: सेवा यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। सेवा यात्री विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए जन सेवा और जन भागीदारी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इनमें स्वच्छता अभियान, स्थानीय लोगों और लाभार्थियों से संवाद तथा स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सामुदायिक स्थानों पर सेवा गतिविधियां शामिल हैं। यात्रा का उद्देश्य सेवा, संवाद, युवाओं की भागीदारी, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। वडनगर से वाराणसी के बीच 10 समूह मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
10: सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे जल जीवन मिशन के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया।
11: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन का हिमाचल प्रदेश में लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 17,09,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है और जल जीवन मिशन के प्रावधानों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिमला जिला के बढ़ई गाँव की निवासी ममता ने बताया कि जल जीवन मिशन से उनके गाँव में हर घर नल से जल की सुविधा मिल रही है, जिससे विशेष तौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
12: हमारे गांव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी। जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
11: वहीं आकांक्षी जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दुर्गम क्षेत्रों तक नल से जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
13: बहुत अच्छी बात, जो वर्षा जल संग्रहण है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया। जब भी बारिश होती है टैंक के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं।
11: भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन को लगातार प्रोत्साहित किया है और जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258,07,00,000 रुपए की राशि का अस्थायी आवंटन किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
10: दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
14: नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के पहले चरण में 1,300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1,170 ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को अधिक सुरक्षित, हरित और समावेशी शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
10: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दो पहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5,00,000 रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
15: भारत टैक्सी का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में शुरू हो गया है। लखनऊ हवाई अड्डे, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस सहित विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे लाखों युवाओं ने रैपिडो के माध्यम से श्रद्धालुओं को संगम, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में मदद की थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को 11% से घटाकर मात्र 6% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और मशीनरी के लिए फंड की कमी ना हो, इसके लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले समय में 5 लाख लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
10: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। इस बीच राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का एकमुश्त भुगतान करने का फैसला भी किया है। वित्त विभाग ने बताया है कि अप्रैल 2008 से दिसंबर 2015 तक 7 साल की अवधि का महंगाई भत्ता बकाया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरा दिया जाएगा। इसका भुगतान इस महीने के अंत तक किए जाने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
14: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
10: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्पविकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
16: खेल खबरों की शुरुआत एशियाई खेलों से, जहां भारत की रोशिबिना देवी नाओरेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक, वहीं सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शिया उई से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये एशियाई खेलों में रोशिबिना का 3रा पदक है। उधर सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर थी, लेकिन अंतिम 500 मीटर में तीसरे स्थान पर आ गई। इससे पहले सतनाम सिंह ने हांगझो एशियाई खेलों में पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स में भी कांस्य पदक जीता था। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सातवें दौर में इंग्लैंड को डेढ़ के मुकाबले ढाई अंकों से हरा दिया। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में बी सविताशी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार सातवीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने सातवें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविताशी इस ओलंपियाड में अपने सभी सातों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई हैं। प्रतियोगिता में अब केवल दो दौर बाकी हैं और इस धमाकेदार जीत ने भारत की पदक की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रखा है।
10: बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट को पार कर अब आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। एक रिपोर्ट।
17: उड़ीसा में लगातार बारिश से कई जिलों, खासकर दक्षिणी जिलों में आम जनजीवन पर असर पड़ा है। संवेदनशील इलाकों में पानी भरने, जमीन खिसकने और सड़कों के संपर्क टूटने की खबर है। आईएमडी ने आज नवरंगपुर के लिए बहुत भारी बारिश की रेड वार्निंग जारी की है, जबकि 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 8 अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
10: इस बीच मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
18: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
10: और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
19: धन्यवाद प्रियंका। दुनिया कर रही तारीफ, चार बड़ी एजेंसियों ने बढ़ाया भारत का वृद्धि दर अनुमान। नव भारत टाइम्स ने लिखा है S&P, फिच, ADB और OECD ने भारत की 2026-27 की GDP का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रकाशित किया है। मंत्रियों को मोदी का मंत्र, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। निर्वाचन आयोग में मतभेद को लेकर उठे सवालों पर दैनिक भास्कर ने आयोग का स्पष्टीकरण प्रकाशित किया है। असहमति होना सामान्य बात है, हमारे बीच दरार नहीं। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण की खबर है बैंकों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 25 सितंबर को ही वेतन और पेंशन देने का फैसला किया। राजस्थान पत्रिका ने बताया है रेल मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम में आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियमों की घोषणा की है।
10: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। और जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान ने रोइंग पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
20: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।
21: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
22: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
23: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
22: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
23: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
22: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क। करें।
23: पता कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
22: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
23: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ। आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 पे।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: कोई एक्टर है आपकी नजर में?
7: अरे हीरो, जो पहले टॉप का हीरो था, अब फ्लॉप का हीरो, आइटम बॉय बनकर भोजपुरी में घिस रहा है।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87894 18744।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 अमरजैट पर।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 6052 पे।

0: राधा, तुमने अपनी चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
5: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
4: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
1: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
1: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
1: जानकारी है तो कॉल करें 62052 पे।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
3: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: हम दिल के बुरे नहीं, बस एक खराबी है, आदत से नहीं।

0: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्री परिषद ने पटना में माता सीता के नाम पर पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। बेगूसराय में खुलेगा दिनकर विश्वविद्यालय। पंचायत चुनाव में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का मानक तय। राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग जल्द शुरू करेगा सर्वे। मोकामा में नए रेल पुल को रेल नेटवर्क से जोड़ने के चलते आज 23 ट्रेनों को रद्द किया गया। 22 ट्रेनों का परिवर्तित मार्ग से होगा परिचालन। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर और कैमूर समेत 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्री परिषद ने पटना में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि यह विश्वविद्यालय माता सीता के नाम पर स्थापित होगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। दोनों विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक खर्च के लिए 15-15 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई है। श्री चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गोधन विकास ऋण योजना के तहत बैंक लोन के ब्याज पर 100% सब्सिडी देने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने कोसी क्षेत्र में डेयरी विकास से जुड़ी 8 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है।
1: मुख्यमंत्री गोधन विकास ऋण योजना के लिए वर्ष 26-27 से 28-29 3 वर्षों के लिए 160 करोड़ 10 हजार रुपए व्यय की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 26-27 एवं 27-28 में 1,06,07,00,000 के अनुमानित व्यय पर कॉम्फेड द्वारा कोशी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड सुपौल के अंतर्गत सुपौल, मधेपुरा एवं सहरसा में डेयरी विकास हेतु दही प्लांट, प्रीमियम आइसक्रीम प्लांट, टोटल मिक्सड राशन प्लांट, भैंस सीफर फार्म, सेट सॉर्टेड सीमेन, नवीन दुग्ध सहकारी समितियों के गठन, मिल्क चिलिंग प्लांट तथा BMCU के लिए इंस्टेंट मिल्क चिलिंग सिस्टम की स्थापना की स्वीकृति दी गई।
0: श्री चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने नवादा के वारिसलीगंज में नई चीनी मिल की स्थापना को मंजूरी दी है। इसमें 500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की संभावना है। इसके अलावा कैबिनेट ने पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 50 हाईटेक ड्रोन खरीदने, स्वास्थ्य संस्थानों में 100 एनएक्स एप्लीकेशन लागू करने तथा विभिन्न आयोगों, बोर्डों और समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्तों में संशोधन समेत 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि दूध की तर्ज पर गांव से सब्जियों की खरीद की व्यवस्था विकसित की जाएगी। बक्सर में जीविका दीदियों से संवाद के दौरान श्री चौधरी ने कहा कि सब्जी उत्पादकों को सहकारिता विभाग से जोड़ने के लिए समझौता किया जाएगा। उन्होंने बकरी पालन को बढ़ावा देने और बकरी के दूध की सुधा के माध्यम से बिक्री की व्यवस्था विकसित करने की भी बात कही।
2: बकरी पालन से फायदा क्या है? पहले गाय और भैंस के दूध को हम कलेक्शन करते थे और सुधा के माध्यम से उसको बेचते थे, लेकिन अब बकरी पालन करने वाली दीदियों को या बकरी के दूध को भी सरकार बेचने का काम करेगा, जिससे कि आपको फायदा मिलेगा।
0: मुख्यमंत्री ने चूड़ामणपुर में जीविका भवन का उद्घाटन किया और लगभग 92 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव में अत्यंत पिछड़ा वर्ग ABC के आरक्षण का मानक तय कर दिया गया है। इसके आधार पर राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग जल्द ही सर्वे शुरू करेगा। आयोग ABC की लगभग 122 जातियों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करेगा। पंचायतवार आबादी, परिवारों की आर्थिक स्थिति और विभिन्न निर्वाचित संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का भी आकलन किया जाएगा। आयोग अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को देगा, जिसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। नए परिसीमन के बाद पंचायतों की संख्या बढ़ने पर एबीसी के लिए आरक्षित पंचायतों की संख्या में भी बदलाव हो सकता है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार पंचायत चुनाव में एससी एसटी और एबीसी के लिए कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है। प्रदेश में उद्योग लगाने की मंजूरी अब एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिल सकेगी। उद्योग विभाग ने सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल का नया संस्करण लॉन्च किया है। इसके जरिए 9 विभागों की 62 सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने ये जानकारी दी। राज्य में 13 औद्योगिक परियोजनाओं में लगभग 2686 करोड़ रुपए के निवेश का रास्ता साफ हो गया है। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 124वीं बैठक में इन परियोजनाओं को स्टेज 1 क्लियरेंस दी गई। उद्योग सचिव कुंदन कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 13 परियोजनाओं के लिए कुल 2686 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी मिली। वहीं 2 परियोजनाओं को लगभग 11,81,00,000 रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन देने को भी स्वीकृति दी गई। प्रदेश में सहकारी बैंकों से नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने अधिकारियों को सहकारी बैंकों को आधुनिक डिजिटल और ग्राहक केंद्रित बैंकिंग सेवा के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया है। विभागीय समीक्षा बैठक में 1 महीने के भीतर व्हाट्सएप बैंकिंग, 3 महीने में मोबाइल बैंकिंग और नवम्बर तक अंगूठे के निशान से भुगतान की सुविधा शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के बीमित कामगारों को अब राज्य के सरकारी अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा मिल सकेगी। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब स्वास्थ्य विभाग के साथ इस संबंध में समझौते की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई व्यवस्था का लाभ राज्य के 5,65,000 से अधिक बीमित कामगारों और उनके आश्रितों को मिलेगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत 26 सितंबर को पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन करेंगे। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण परिसर में स्थापित यह केंद्र अपराध पीड़ितों को उनके कानूनी अधिकार और जरूरी सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध कराएगा। यह केंद्र एक वर्ष की पायलट परियोजना के रूप में शुरू हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह निर्णय यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से 28 सितंबर से प्रस्तावित 3 दिन के देशव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। मंत्रालय ने बैंकों को 25 सितंबर तक वेतन और अन्य देय भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि कर्मचारियों और अन्य पात्र लाभार्थियों को समय पर भुगतान मिल सके। मोकामा में नए रेल पुल को रेल नेटवर्क से जोड़ने के काम के कारण आज 23 ट्रेनें रद्द रहेंगी जबकि 22 ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। पूर्व मध्य रेल के अनुसार राजेंद्र पुल मोकामा हाथीदह जंक्शन टाल रामपुर टुमरा और दिनकर ग्राम सिमरिया स्टेशनों पर प्री इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग काम के कारण यह फैसला किया गया है। रद्द ट्रेनों में मोकामा हावड़ा और हावड़ा मोकामा एक्सप्रेस सहरसा राजेंद्र नगर और राजेंद्र नगर सहरसा इंटरसिटी जयनगर पटना और पटना जयनगर एक्सप्रेस प्रमुख हैं। इसके अलावा मेमू स्पेशल और लंबी दूरी की कई ट्रेनें भी प्रभावित रहेंगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव क्षेत्र के प्रभाव से राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 सितंबर तक राज्य में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। विभाग ने आज अररिया किशनगंज पूर्णिया सुपौल शिवहर सीतामढ़ी कैमूर भोजपुर बक्सर और सारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण गोपालगंज सिवान और मुजफ्फरपुर जिले में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान तेज हवा चलने और वज्रपात की भी आशंका है।
1: 24 सितंबर को राज्य के अधिकांश भागों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया भभुआ भोजपुर बक्सर किशनगंज पूर्णिया सारण शिवहर सीतामढ़ी और सुपौल जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर गोपालगंज सिवान और पश्चिम चंपारण में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: पटना में चल रही 37वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल बिहार ने 40 पदक अपने नाम किए जिसमें 14 स्वर्ण 10 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रदेश में कर्मा पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान डूबने की अलग अलग घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य लापता हैं। पटना के बख्तियारपुर में 3 किशोरों की मौत हो गई। वहीं जिले के मनेर में 3 और अथमल गोला तथा बाढ़ में 2-2 लोग लापता हैं। दूसरी तरफ गया नालंदा रोहतास और औरंगाबाद में डूबने की अलग अलग घटनाओं में 9 लोगों की मौत हुई है। बिहार लोक सेवा आयोग की सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा में धांधली के मुख्य आरोपी सतीश कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने उसे पटना के करदनीबाग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के चकारम स्थित एक अपार्टमेंट में अपराधियों ने वार्ड संख्या 24 की पार्षद ज्ञानवती देवी के पति पर फायरिंग कर दी। उन्हें 5 गोलियां लगी हैं और उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। अररिया की उत्पाद अदालत ने शराब तस्करी के एक मामले में दोषी सूरज मेहता को 5 साल कारावास और 1,00,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है पटना में राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने पर कैबिनेट की मुहर, माता सीता दिनकर के नाम पर खुलेंगे विश्वविद्यालय। दैनिक जागरण ने लिखा है दारोगा भर्ती मुख्य परीक्षा रद्द। प्रभात खबर की सुर्खी है, बक्सर से गया तक फोरलेन विश्वामित्र पथ बनेगा सीएम। दैनिक भास्कर ने लिखा है, भाजपा की नई टीम बनी, हरीश द्विवेदी बिहार के प्रभारी बनाए गए। राष्ट्रीय सागर लिखता है, एसआईआर विवाद, ईएसआई बोला आयोग पूरी तरह संवैधानिक जनादेश और वैधानिक नियमों के तहत काम कर रहा है। आज अखबार की सुर्खी है, इस रविवार देश भर में खुले रहेंगे बैंक, फिर 3 दिन हड़ताल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्री परिषद ने पटना में माता सीता के नाम पर पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। बेगूसराय में खुलेगा दिनकर विश्वविद्यालय। पंचायत चुनाव में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का मानक तय, राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग जल्द शुरू करेगा सर्वे। मोकामा में नए रेल पुल को रेल नेटवर्क से जोड़ने के चलते आज 23 ट्रेनों को रद्द किया गया, 22 ट्रेनों का परिवर्तित मार्ग से होगा परिचालन। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही है बारिश, मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर और कैमूर समेत 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470434468 पे।
10: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
11: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
10: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
11: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
10: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
12: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
12: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
12: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
13: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
14: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
13: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
14: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
13: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा।
14: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
13: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
14: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
13: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
15: Now pick it up,
16: hello.
15: Now pick your phone up,
16: hello.
15: Pick it up,
16: hello.
15: Now pick your phone up,
16: hello.
17: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो
18: हेलो। नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
19: हेलो, नमस्ते मैडम।
20: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
19: गीता
20: जी कैसे हैं?
19: हेलो।
20: हाँ जी,
19: आवाज नहीं आ रहा है क्या?
20: नहीं नहीं, आवाज आ रही है। बोल रहे हैं, क्या हाल चाल है आपका?
19: बढ़िया बाते।
20: अच्छा, और तो बताएं,
19: आप बताएं क्या हाल चाल बाते?
20: हमार हाल चाल भी बढ़िया बा।
19: तो आप कैसन बने?
20: हम तो ठीक बने रहो, हमके पास नहीं
19: मुनारमा मैडम।
20: जी जी,
19: भारती मैडम नहीं, हम हमारा लगा लगी भारती मैडम है।
20: अच्छा,
19: भारतीय मैडम राहुल आवाज भारतीय मैडम जैसा होता।
20: तो हम कुछ नहीं पता ना रहूँगा, मालूम हो कि ना इसे पूछ लेता नहीं कि पहचान लेता नहीं कि ना। तभी कौन सा गाना सुने के बाद?
19: तो आज गाना हमने सुनवाई खेसारी लाल के देह फाई है।
20: कौन सा?
19: आज आज हमारे जान हल्दी से लेट आई बाड़ी। बुलाई तो नहीं ना?
20: ना ना बिल्कुल ना।
19: ये तो याद बा ना?
20: याद बा।
19: गाना आपके सुनवाए के चाहता नहीं सबसे पहले। जितना रेडी नहीं सुनने वाला हूँ मैं कब के।
20: चलिए ठीक बात है, और गाना खाता नहीं चली रहा, और गाना पता नहीं।
19: चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है
20: जी जी, हमके भी से बात करके बहुत ही अच्छा लगेगा।
19: अच्छा, और सब बढ़िया बनू?
20: चलिए प्ले करते हैं गाना, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: के परी छला।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4 एफएम में। हेलो नमस्ते। हाँ हाँ, वो कहा ना कि कॉल ये करता था तब तक दूसरा आ जाता, उसकी वजह से कहीं हो सकता। समाचार तो सब बढ़िया बा, अपन बताएंगे रहुआ कैसन बानी। ऐसे कहाँ से बोलत बानी रहुआ?
2: पंजाब।
1: अच्छा, और आप नाम कहा? चलिए, तो कौन सा गाना सुने?
2: कौन सा
1: सीपी राज के नया गाना? अच्छा चलिए, ठीक बात, क्योंकि सुना रहे कि चाहता था नहीं। जी बिल्कुल, चलिए फिर प्ले करते हैं गाना। जी सुना रही सबके साथ रेडियो 91.4 एफएम।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
4: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
5: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
6: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
7: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
7: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास,

0: और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैडम जी।
2: नमस्ते।
1: कैसी हैं मैडम जी?
2: जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: मैं ठीक हूँ, भोजन से नेहा बोल रहे हैं।
2: जी नेहा जी, क्या हाल चाल है?
1: अच्छा है।
2: तो क्या हो रहा था अभी?
1: अभी कुछ नहीं, आपका?
2: अच्छा, तो खाना वाना हो गया आपका?
1: जी मैडम जी, मैं नाश्ता हुआ, खाना होगा 2 बजे।
2: अच्छा जी, चलिए ठीक है। तो आज कौन सा गाना सुनिएगा?
1: गाना सुना दीजिए, आई मिलन की रात, कितने दिन के बाद आई सजन रात मिलन।
2: ओके, और ये गाना किसी को सुनाना भी चाहती हैं?
1: आपको जितना रेडियो रिमझिम आरजे सब सुनता है सबको, और जितना श्रोता दोस्त सुनता है सबके साथ।
2: ओके नेहा जी, वैसे आप रेडियो रिमझिम को कैसे सुनती हैं?
1: रेडियो से,
2: रेडियो के माध्यम से। चलिए बढ़िया। तो कैसा लगता है कार्यक्रम आपको?
1: जी मैडम जी, अच्छा लगता है, सब सुनते हैं प्रोग्राम।
2: चलिए बहुत अच्छी ही बात है।
1: रेडियो सुन देते हैं, चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं प्रोग्राम सब।
2: जी नेहा जी, तो लगभग आप कितने समय से सुनते हैं अभी?
1: लगभग जो पहला ड्यूटी मैडम रही, पहला तभी से सुन रहे हैं।
2: अच्छा,
1: पहला ड्यूटी मैडम रही तो जो पहले अफसर अली सर चलाते हैं तब।
2: अच्छा जी, चलिए बढ़िया। चलिए तो नेहा जी, गाना प्ले करते हैं आपका।
1: जी मैडम जी, नमस्ते।
2: जी नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: जी हेलो
0: जी, नाम बता दिए अपन।
1: जी विकास कुमार बोल रहे हैं, लखनऊ से, भंडारी से।
0: जी कैसन बानी विकास जी?
1: बहुत बहुत अच्छा, आप ना बताए।
0: जी हमारे भी बढ़िया बा, वैसे क्या होत रहल?
1: अभी क्या करते नहीं, बैठल है, कुछ नहीं कर रहा। टाइट हुआ, बहुत ज्यादा टाइट हुआ है, हम लोग पिछले बार गाना सुने के ना दिल चीर के देख रहा है नाम होगा।
0: और गाना कैसे?
1: जितना सुनने वाला लोग है उसी के लिए, जितना सुनते हैं उतने सभी परिवार सभी के साथ।
0: चलिए तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: क्या
0: गाना प्ले करते हैं आपका?
1: जी जी जी
0: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 एफएम।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AMZ पर।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
10: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सब
5: सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो,
11: हाँ,
10: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 एफएम में।
11: जी मैम, ओवर से लगा रहे हैं, 11 बजे से लगा रहे हैं फोन, बहुत प्रयास से फोन लगाया हमारा।
10: जी जी, वो क्या है ना, बहुत सारे कॉल आते रहते हैं, एक करता है तो दूसरा आ जाता है।
11: जी तो मेरा नाम जाकिर हुसैन, जिला गोपाल जादवपुर से।
10: जी जी, क्या हाल चाल है?
11: सब ठीक है, अपना बताइए।
10: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
11: गाना सुनना चाहते हैं?
10: बिल्कुल सुनवाएंगे, बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
11: हिंदी चाहिए, तुम के आजा तू आजा, आवाज मेरी मुझे जी नहीं देती है, याद तेरी।
10: क्या ये मुझे गा के बताएंगे?
11: जी मैम, गा के थोड़ा सा बता सकते हैं?
10: जी बिल्कुल।
11: तुम के आजा तू

0: ये गाना का सुनाना चाहते हैं।
1: दीदी गाना तो बहुत ही अच्छा गाते हैं आप।
0: जी गाना तो गाते हैं, गाना हिंदी पूरा अच्छे से उतना गा नहीं पाते हैं।
1: अच्छा अच्छा लगा। और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
0: जी मैम सुनाना चाहते हैं, नाम लेना चाहते हैं?
1: जी बिल्कुल लीजिए।
0: मिस्टर सुफी आलम और पूरा रेडियो आपको और पूरे परिवार को और यीशु पल्ली, जितलेश शर्मा, मेराज आलम, अर्जुन, मोहम्मद कूफ, यीशु पल्ली बस इन लोगों को सुनाना चाहते हैं।
1: जी जी तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक है मैम, धन्यवाद।
1: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: वालेकुम अस्सलाम,
1: क्या खैरियत है?
0: जी बिल्कुल बढ़िया है, आप बताइए कि आप कैसी हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ। नाश्ता पानी हो गया?
0: हाँ हो गया। और आपका?
1: बापी कब से फोन लगा रही हूँ आपके पास। हाथी मैम बोल रही है?
0: नहीं।
1: ओ, आप दोनों का एक ही जैसी आवाज है ना, सेम टू सेम आवाज है।
0: अच्छा,
1: आपका आवाज बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा जी।
1: हाँ
0: वैसे आप भी अपना नाम बता दीजिए।
1: मैं जोया बोल रही हूँ।
0: जोया, और कहाँ से?
1: पानीपत से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, आपसे पहली बार बात हो रही है?
1: नहीं, मेरे से दो बार बात हो गया है। एक बार मैं बताई थी आपको गाना का फरमाइश, लेकिन सुन नहीं पाई इसलिए हॉस्पिटल चली गई।
0: वैसे क्या करती हैं आप?
1: मैं तो घर पे हूँ अभी।
0: अच्छा।
1: हाँ, रूम पे काम करती थी, फैक्ट्री में बर्तन का काम करती थी, बर्तन बनता है उसमें।
0: अच्छा जी, तो अभी आप कहाँ हैं?
1: अभी तो मैं रूम पे हूँ, अभी काम नहीं कर रही हूँ इसलिए कि डिलीवरी हुआ है ना, मेरा लड़का हुआ है।
0: अच्छा जी, कांग्रेचुलेशन।
1: थैंक यू मैम
0: जी। तो आज कौन सा गाना सुनिए?
1: आज मेरे को मेरे बच्चे के ऊपर सुना दीजिए अच्छा सा कोई सॉन्ग।
0: ओके जी। और ये गाना आप किसी को सुनाएंगे भी?
1: हाँ, जितने भी रेडियो रिमझिम सुनने वाले हैं सबको सुनाना चाहती हूँ।
0: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: थैंक यू मैम
0: जी। वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: थैंक यू।

0: कैसे खिला।
1: ठक ठक।
2: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0976-575।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
6: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: Now pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
11: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो।
14: हेलो नमस्कार।
13: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
14: थैंक यू। मैं मास्टर निसार अहमद लकी दरगाह जिला सिवान से बोल रहा हूँ।
13: जी जी, क्या हाल चाल है?
14: बहुत अच्छा है, आप कैसी हैं?
13: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
14: आप भाटी जी बोल रहे हैं कि मनोरमा जी?
13: मनोरमा,
14: नॉर्मा जी बोल रहे हैं।
13: हाँ जी।
14: दो शिकायत है आप लोगों, पहले तो 2-3 बार गाना में रिकॉर्ड किया गया, हमारा गाना नहीं, पर उसके लिए कोई बात नहीं है, भला होगा भी मैं सुन भी नहीं पाया होगा।
13: जी
14: हो सकता है।
13: हाँ,
14: हाँ, शिकायत है ही है। हाँ दूसरी शिकायत ये है कि आज 1 महीना 20 दिन से हम कॉल करते हैं, हमारा कॉल रिसीव इस तरह व्यवहार में भी, और 12 बजे से जो कॉल चलता है कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। तो क्या इस नंबर से आप लोगों को कोई एलर्जी है या कोई ठीक नहीं है कि हमारे नंबर को कॉल मैंने रिसीव नहीं?
13: नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है।
14: बात तो है क्योंकि 12 बजे से जो सोच इन्होंने 50 बार भी कॉल किया, कॉल रिंग होता है मगर रिसीव नहीं होता। तो जब कॉल रिंग होता है तो कॉल को बंद कर दिया जाए, इस मैसेज को इंस्टाग्राम पर चलाया जाए, कॉल वाले को बंद कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग कॉल ही करते हैं, लोग मैसेज व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर नहीं करते हैं।
13: जी
14: ये भी शिकायत है।
13: जी जी बिल्कुल सही है।
14: प्रोग्राम तो हम हमेशा सुनते हैं, रेडियो रिमझिम हमेशा सुनते हैं, हम शुरू से अभी तक पुराने लिसनर हैं, मगर कॉल को रिसीव नहीं किया जाता है। गाना बजता नहीं, तो बात को लेकर बहुत तकलीफ होती है। सुनी जी के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे, सुनी जी कहाँ है?
13: सुनी जी के बारे में तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मुझे नहीं पता।
14: सुनी जी तो चली गई बारसा रेडियो में, उनका प्रोग्राम आ रहा है, मैं बारसा रेडियो में उनकी आवाज सुनी जा रही है।
13: जी जी, तो उनके बारे में नहीं बता सकती क्योंकि मुझे इजाजत नहीं है उनके बारे में कुछ बता।
14: बात तो सही है, डायरेक्टर सर का इजाजत नहीं है, मगर हम लोग सुन रहे हैं तो वर्षा में वर्षा रेडियो में उनका प्रोग्राम चल रहा है, चला रहे हैं और कोई बात नहीं। अगर यही जो शिकायत है कि जो मैसेज द्वारा जो कॉल रिसीव किया जाता है उसी को कुछ रिपीट किया जाता है, आप कॉल वाले बस पीछे रह जाते हैं, कम से कम कॉल वाले को भी एक दो चार पांच को उठाया जाए और उसकी फरमाइश सुना जाए।
13: जी तो कॉल भी उठाया जाता है उसमें?
14: नहीं, बहुत कम बहुत कम, हम सुनते हैं, हमेशा प्रोग्राम सुनते हैं, ऐसा बात थोड़ी है, मगर ये जितना मैसेज को ओपन किया जाता है उतना कॉल को रिसीव, कॉल वाले को भी थोड़ा दिल का ये मैंने अरमान होता है, बहुत मेहनत और मशक्कत से कॉल को कॉल किया जाता है, लोगों को भी तो थोड़ा सा टाइम दिया जाए, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है।
13: जी जी बिल्कुल, कोशिश किया जाएगा ताकि कॉल भी बराबर चले।
14: चलिए, जो मैं कुछ कहा भाई उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, और कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा।
13: नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आपकी बात सही है, कॉल पे भी ध्यान दिया जाएगा उसमें 12 बजे वाले शो में।
14: हाँ, कॉल पर ध्यान दिया जाए, जो मान लीजिए कॉल ही करते हैं आप मैसेज द्वारा, इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं तो कॉल ही करें, लोग कॉल करते हैं, मैसेज नहीं करते हैं, व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं, ध्यान दीजिए।
13: जी
14: बिल्कुल, आप बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमको एक गाना सुनना है।
13: जी बता दीजिए।
14: फिल्म का नाम तो याद नहीं है मगर गाने का बोल है, बिजी चाहे नहीं दिया बसाले एक चेहरे पे कई चेहरे बजाले, ये गाना आपको सुना।
13: जी जी, और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
14: पहले तो आपको ही को, रेशमा खातून पठानपट्टी और सोनी मैडम को और जितने भी रेडियो सुन रहे हैं रेडियो रंजीम, उन सभी भाई बहनों को सुनाना चाहता हूँ और फैमिली के साथ। और ये तो मेरा पहला कॉल लगा है।
13: जी जी,
14: आज आज तो बहुत मैंने खुशी की बात है कि मेरा कॉल पहला कॉल लग गया है, रिसीव हो गया है कि नहीं?
13: जी जी बिल्कुल।
14: हाँ, तो ये गाना कब बज जाएगा?
13: ये गाना आपका आज नहीं तो कल बज ही जाएगा।
14: आज मेरे नंबर पर है तो ऐसा टाइम बजाइएगा कि ताकि मैं गाना को सुन सकूं, 7 बजे के बीच में बजाइएगा।
13: जी जी,
14: 7 और 7:30 के बीच, तो मैं 5 बजे से कहीं चला जाता है तो पहला नंबर पर मेरा गाना मुझे 7 के आसपास में बजा।
13: जी जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
14: थैंक यू
13: जी, सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: नमस्ते।
1: सब बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम ठीक हैं मैम।
1: अच्छा जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: हम अयोध्या से बोल रहे हैं।
1: आपका नाम?
0: सूरज प्रजापति।
1: खाना वाना हो गया आपका?
0: जी मैम।
1: तो कौन सा गाना सुनिएगा आज?
0: नदिया पार कोने दिशा में लेके चल रहे।
1: चाहिए गा के मुझे बताएंगे दो लाइन?
0: मैम हमारी आवाज बहुत मोटी है, हम गा नहीं
1: सकते। कोई बात नहीं है, अगर आप दो लाइन गा के बता दे तो बेहतर होता।
0: अगली बार गाएंगे। सबसे पहले आपको और उसके बाद जितने सुनने वाले हैं सभी
1: ओके जी। तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक मैम, नमस्ते।
1: नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: मुस्कुराने की आदत भी है हमारी, आपकी मुस्कुराहट हसरत है हमारी। मुस्कुराने की आदत भी है हमारी, आपकी मुस्कुराहट हसरत है हमारी। आप याद करो या ना करो, आपको याद करने की आदत है हमारी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
8: जी जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है?
7: ठीक है, आप कैसे हैं?
8: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
7: मैं कमरान नसीब, विलेज पकड़ी सुल्तान से। कल नफरत हो गया आपका?
8: जी जी नफरत हो गया। और आपका हुआ?
7: मेरा भी नफरत हो गया, मैं बोला के बारे में
8: तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
7: हमको गाना सुना दीजिए, मूवी का नाम है कुली नंबर 1। ये गाना है गोरिया चुराना मेरा जिया।
8: गोरिया चुराना मेरा जिया।
7: जी जी
8: ओके जी। और ये गाना आप डेडिकेट करना चाहते हैं?
7: हाँ, सबसे पहले आपको और रमन सिद्दीकी, आयशा, सबीना, सब्बा सिद्दीकी और रोशनी कुमारी, निशा सकुनवा, निशा भारती और समीर आलम, गुलाम हुसैन, दिलीप राम, उमा शंकर, बर्जू भास्कर, दिवेंदर, मुकेश, उत्तम सोनी, कैजा अंसारी, अहमद अली अख्तरी, गुड़िया परवीन, चेना आगरा, सभी लोगों को सुनवाना चाहता हूँ और सुना दीजिएगा। ओके नमस्कार।
8: ओके खनन जी, तो प्ले कर देंगे गाना आपका?
7: जी जी जी, ये चुराना दिया कुड़ी नंबर 1।
8: जी जी, तो प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो।

0: हेलो,
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकू 90.4 एफएम में।
0: सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी।
1: जी हम तो ठीक बानी, आपन बताइए रोगा कैसे बानी?
0: हम ठीक है बानी।
1: क्या होता हॉस्पिटल बानी का?
0: ना जी हॉस्पिटल बानी।
1: अच्छा क्या होता फिर?
0: लेट हो जाना थी दवा से है ना वही।
1: तो बात हुआ
0: ना। नाश्ता तो हो गया बानू?
1: हाँ नाश्ता तो हो गया। और अभी भाई लगना
0: तो हमरो हो गया।
1: चलिए ठीक बात। तो क्या होता रोगा?
0: क्या हुई? बस खाना बनी दोपहर का हो गई।
1: बताई और सब ठीक बानू?
0: सब समाचार बढ़िया बा। अपन कही घर परिवार में सब कुछ ठीक बानू?
1: हाँ घर परिवार में भी सब कुछ बढ़िया बा।
0: राउत तो ठीक बा?
1: हाँ हाँ हम बिल्कुल ठीक बानी।
0: कल बड़ा बढ़िया डायरेक्ट मरल रही जी।
1: अच्छा तो रहे बनवे तुम बतल रही की मैंने मिजाज खुश हुई।
0: हाँ
1: जी
0: ना तो ठीक है डायरेक्ट मर रही। हमारे मोबाइल सही में जल्दी चालू ना बंद रहे।
1: हाँ वही से तो बोला।
0: हाँ
1: सबके अच्छा लगता
0: है
1: के बानी काम में लागल
0: बनी लागल बने।
1: बारह बजे से स्कूल स्टार्ट हुई।
0: वो तो जरूरी है। कितना लोग इंतजार जो है ला।
1: चली ताज रोग कौन गाना सुने?
0: आज गाना सुने बा भोजपुरी गाना सुने बा सिल्फी राज के गाना है ना थोड़ा सा गा दी सुने।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।

0: आज के दिन बात 3 दिन बाकी बहुत खास कर बात करे
1: खातिर
0: बात हो जा रहा से तो और सही हो जाला
1: हमने के बेसब्री से इंतजार करे हर वाला फोन करे
0: जितने टाइम
1: लगा लेकिन अच्छा लगा चलिए तो फिर प्ले करते हैं।

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुत देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
8: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
7: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
8: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
7: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
9: तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-84।

0: 911-9-9-911-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- लेते हैं अगला कॉल।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 एफएम।
2: जी नमस्कार, जी रामपुर से।
1: जी जी नमस्कार, कैसे हैं?
2: हम बढ़िया है। देखिए हम दूसरे नंबर से लगा रहे थे, मुझे बताया उस नंबर से लगाया तो लग गया, इस नंबर से चला गया है। मेरा दूसरा वाला नंबर ब्लॉक लिस्ट में नहीं चला गया है।
1: नहीं नहीं, ब्लॉक लिस्ट में क्यों नहीं जाएगा, क्या ना अभी बहुत सारे कॉल आ रहे हैं।
2: इससे लगा रहे थे तो लग गया, लास्ट चल रहा है। जी
1: जी हाँ,
2: नाश्ता काम कर रहे हैं कि नहीं?
1: जी जी नाश्ता तो हो गया, आपने किया?
2: हम भी नाश्ता काम करके तभी ना 11 बजे लगे कॉल लगाए माना।
1: जी जी बहुत मेहनत करनी पड़ती है,
2: क्या करे, इतना तो मान ले और जगह मेहनत करना पड़ता वहाँ तो कुछ मिल ही जाता, लेकिन यहाँ मेहनत करने के बाद दूध जो है लाइन के स्नेट हो जाता है। मौसम कैसा है
1: गोपाल
2: में? निकला हुआ है।
1: जी जी, और आपके तरफ मौसम कैसा
2: है? उमस है, बहुत ज्यादा उमस इतना है कि गाड़ी चल रही है तो हवा लग रहा है, अभी भी जा रही है ना तो सकता है।
1: जी जी चलिए, तो फिर आज कौन सा गाना सुनिएगा?
2: गाना सुना दीजिए, लखनऊ माते रे सैया दीन, लखनऊ माते रे सैया दीन।
1: आवाज कट के आ रही है,
2: मैं कह रहा हूँ आपको वो नहीं है मौला लखनऊ माते रे सैया दीन।
1: जी जी 9 लाखा मंगा दी।
2: हाँ तो क्या कहते हैं मनेगा जो बोलो?
1: हाँ जी
2: हाँ, इसलिए आवाज थोड़ा स्टार्टिंग हो रहा था, इसलिए आवाज फट रहा है, लगता है बुरा मुखर्जी। हाँ रानी मुखर्जी जी का आवाज लग रहा है, इसलिए मैंने कहा अभी मनोरमा जी हैं।
1: जी जी आपने मेरा नया नाम रख दिया।
2: अरे मैंने तो उसी भी नाम रख दिया था, अभी तुम्हारा नाम रख दिया की रानी मुखर्जी का आवाज तो ऐसे ही रहता है ना, राजशिला में देखते हैं ना राजशिला।
1: जी जी एक और है, वो भी वैसे ही बोलते हैं आपके जैसे, आपका असर उनसे भी पड़ गया है। जी आवाज कट के आ रही है
2: ना, ये BSNL का है तो थोड़ा आराम कर रहा होगा, BSNL का है। रानी सिंह जी आपका नाम का बखान इतना कर रही थी मत पूछिए, लेकिन आपकी आवाज में ध्यान है कुछ भी करिए।
1: अच्छा तो आपका असर बहुत पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग भी ऐसे ही बोलने लगते हैं, उनको सुन खाते लगते हैं।
2: नहीं आपकी आवाज अच्छा में बोल रहा हूँ ना, जितने जितना राजी मैंने आज तो गाना ही बदलगा, मेरा लगेगा कल ही गाना सबका आइए मेरा वाला, तो आपको टिकट तो बताएंगे की आपकी आवाज जो है ना रानी मुखर्जी से 100% जो है ना मैच करता है, तुम्हें आवाज तो खुद आपको दूसरी रिकॉर्डिंग और जरूर बताएंगे।
1: जी जी वो दो लोग भी असर उन लोग पे भी पड़े, हमको लगता है शायद
2: हमारा असल की बात नहीं है, आपकी आवाज की असर की बात है, हमारे आवाज की बात नहीं है, आवाज आपकी जो है अच्छे तरीके से दिए हुए हैं, जिसे जो है आपको आवाजों को बखान किया जाता है, दुश्मन भी आपको ठीक को रहते हैं कि अरे मनोरमा जी है सब कोई आपको आवाज की चर्चे लिस्नर है लोग। उन लोग का एक चीज और है आपको कि जो इतनी दिनों से रेडियो पे जो बातें हो रही थी रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो, तो कोई भी ऐसा नहीं चाहता था कि ये बताइए आपको गाना गाना आता है कि नहीं, सर ढोला गा के सुनाइए या कितने दिनों से रेडियो सुनते हैं आप, इंडक्शन देते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है इस बात को, लेकिन पहले इतने आगे लोग आया इतने गए लोग, लेकिन डायरेक्ट कॉल करते थे आज इतना गाना बताइए आपको कौन सा गाना सुनना है, किसको किसको रेडियो करना है, और गाना बताने के लिए गाना कहा तो ठीक है रेडियो 90.4 में आपको गाना फरमाने के लिए सिफारिश की, धन्यवाद आप गाना सुने करता हूँ या करती हूँ, लेकिन हमने जो उस बात को लाइन है ना कि जो सुनाइए ये बहुत अच्छा लगा है, क्वेश्चन का पता नहीं चल जाता है, बहुत आदमी हो रहा है कि इस बात को जो है कहते हैं कि हमको गाना नहीं आता है, वो तो सुनने में मजा आता है, तो ये भी बहुत अच्छा परफेक्ट वाला है और सुनने में मजा आता है।
1: आप लोग से दुआ प्यासे ही हम भी ये कार्यक्रम अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कर
2: रहे हैं। नहीं सही है, लेकिन होती है आपकी ना हौसला जो है मुकाम करना जरूरी होना चाहिए, लेकिन आप आते जो होती है बहुत अलग तरीके की होती है, अगर उन्होंने इतने आगे आई और गई लेकिन इस तरीके से जैसे बातें नहीं करती थी करने की दवा, गाना फरमाया नाम पूछा और उसके बाद पानी छाता, लेकिन आपके साथ जो है लिस्नर लोगों का भी जुड़ाव है, लिस्नर लोगों से आपको भी जुड़ाव हो गया है, तो इस चीज पे आप बहुत अच्छा काम करती है, अच्छा लगता है सुन। आप जो सभी प्रोग्राम जो है शाम को 5 बजे से लेते अच्छे कार्यक्रम में सुनता रहता हूँ।
1: अच्छा जी
2: जी
1: क्या है आपकी फरमाइश, वो भी बता दीजिए।
2: फरमाइश बताया था ना, नहीं सुनी क्या?
1: एक बार और बता दीजिए।
2: मोना लखा बना दे रो सैया के पान है
1: जी जी।
2: और सबसे पहले आपको भर्ती जी है, कमान जी है, अमर भाई है, और उसके बाद हरी जी है, सभी जी, ममता जी, रोहिना जी, नीशा जी, और मुकेश भाई है, कक्का भाई है, मर्जू बंगर है, सोनू भाई है, अवसर भाई है, और सोनी जी को भी सुना देंगे हम। और इसमें तमाम शक्ति सहेलिया जितनी हुई है
1: जी, चलिए फिर क्लिक करते हैं
2: जी। नमस्कार
1: जी, नमस्कार।

0: मुझे न लगा मंगा तेरे उसिया दीवाने तेरी कदमों पे।
1: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
2: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
1: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
2: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
2: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
2: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
4: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
5: भरोसे वाले से लेंगे,
4: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
5: और कीमत भी।
4: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
3: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
6: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
2: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
3: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रमझेन 90.4 आमजेड पर।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
12: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
13: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
14: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: नमस्कार,
16: गाना
15: सुनना था
16: आजकल प्रोग्राम भारती में चला चालू कर रहे हैं, आवाज आपका सबका क्या आ रहा, आप गाना सुना दीजिए।
15: तो चलिए गाना।
16: जी जी,
15: थैंक यू। 90.4

0: जी बहुत बहुत स्वागत
1: है। हेलो,
0: हाँ जी, आप अपना नाम बता दीजिए। और कहाँ पे?
1: बनारस।
0: तो कौन सा गाना सुनी बात?
1: फिलहाल ये बोला, तुम तो धोखे बाजू वादा कर भूल जाते हो।
0: ओके, और ये गाना क्योंकि सुनाए के लिए चाहता नहीं
1: जी, अपने दोस्त को हम लोग सुनेंगे जितने सुनेंगे।
0: ओके जी, तो चलिए प्ले करते हैं।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
6: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: जी, नमस्कार।
7: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंजन 90.4 FM में।
8: मैं मोहम्मद सिराज हुसैन बात कर रहा हूँ।
7: कहाँ से?
8: कुशीनगर से।
7: अच्छा जी, तो क्या हाल चाल है?
8: जी बढ़िया है, अपना बताइए।
7: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
8: तो मौसम कैसा है वहाँ का?
7: मौसम धूप तो निकला हुआ है।
8: हाँ यहाँ भी वैसा ही है
7: जी।
8: तो एक सॉन्ग सुनना है।
7: बता दीजिए।
8: बताते हैं अभी।

0: जी इसका रिजोल सॉन्ग सुनाइएगा, रिजोल
1: जी
0: इसका रिजोल सॉन्ग सुनना है, रिजोल।
1: ओके, और ये गाना आप डेडिकेट भी करना चाहेंगे?
0: आपको और जितने भी लोग सुनने वाले हैं सबको। आज बज जाएगा ना?
1: आज नहीं, कल बजेगा।
0: कोई बात नहीं
1: जी, थैंक यू, वेलकम। तो प्ले करते हैं गाना आपका?
0: जी धन्यवाद
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो 90.4 FM में।
0: थैंक यू। और आपको नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: कैसी हैं आप?
1: जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं भी, आप शायद मनोरमा जी हैं?
1: हाँ जी
0: जी। आपका और उनका आवाज थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन आज पकड़ लिया हम।
1: जी जी। तो
0: और कैसा चल रहा है रेडियो रिमझिम का, परिवार का हाल क्या है?
1: सबसे बढ़िया है।
0: ये अच्छी बात है। मैं तो सोच रहा था कि काफी दिन से ट्राई करने के बाद इधर 15 दिन में आज लग रहा है मेरा पहला कॉल लगा हुआ है, तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि लिसनर्स बढ़ गए या फिर नंबर ब्लॉक हो गया।
1: नहीं नहीं, नंबर ब्लॉक क्यों होगा?
0: तो वैसे आज योर वॉइस योर चॉइस में जब जुड़ते तो पूछते ही बात, लेकिन लग गया फोन।
1: जी जी। वैसे आप अपना नाम बता दीजिए।
0: मैं अनिल बोल रहा हूँ, छोटपुर से।
1: अनिल जी, तो कैसे हैं आप?
0: बस बढ़िया।
1: तो क्या हो रहा था अभी?
0: अभी काम पे हैं और काम करते करते कॉल मिलाते रहते हैं और इसी बीच सुनते भी रहते हैं।
1: जी जी। वैसे क्या करते हैं आप?
0: हम मेडिसिन का काम करते हैं।
1: ये बढ़िया।
0: और गाना हमें सुनना है, कुमार सानू का एक गाना है, किसी की याद सताए शराब पी लेना है।
1: कौन सा?
0: किसी की याद सताए शराब पी लेना है।
1: जी, तो अनिल जी ये गाना मुझे दो लाइन गा के बताएंगे आप?
0: थोड़ा सा एजिटेशन हो रहा है, कभी गा देंगे दूसरे टाइम का।
1: चलिए कोई बात नहीं है।
0: और एक्चुअली एक चीज और है, इस गाने के द्वारा मैसेज मेरा ये नहीं है कि किसी की याद आए तो शराब ही पियो, मतलब शराब पीना अच्छी बात नहीं है, ये मतलब गाना है बस। और जितने लोग सुनेंगे वो इस चीज को बिल्कुल भी इसका बहिष्कार करेंगे, शराब नहीं पीना है।
1: जी जी
0: जी।
1: और डेडिकेट भी करना चाहेंगे
0: सभी लिसनर्स लोगों को, जितने लोग रेडियो रिजिन सुनते हैं सभी को।
1: ओके अनिल जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: थैंक यू
1: जी। वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: Now pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
2: भागे भागे फिरते हैं।
4: तो श्रोताओं अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8009494911 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार सुझाव शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
11: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
12: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
11: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
12: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
11: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
12: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
11: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
12: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे समय 9:31 हो रहा हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करना है तो आप सभी तो जानते ही हैं, और जो भी श्रोतागढ़ नए जुड़े रहे हैं और कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी चाहते हैं कि जुड़ना, तो पुराने गाने के साथ बिल्कुल इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नंबर है 72 77 16 65 96 पे। इस पर छोटा सा एक टेक्स्ट मैसेज करना है, टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो बिल्कुल इस कार्यक्रम से जुड़ पाएंगे। और इस मैसेज में केवल नाम लिखना है, गाने का नाम बताना है और कहाँ से मैसेज कर रहे हैं उस स्थान का नाम बताना है, और फिर सेंड करना है हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे। कुछ ही समय में आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, तो यदि आप चाहते हैं जुड़ना तो बिल्कुल मैसेज करें। कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लिखा गया है कि नमस्ते सर, मैं राजेश प्रजापति जौनपुर से, और मुझे गाना सुनना है, सुना दीजिएगा गाने का बोल है जिसके सपने हमें रोज आते हैं, आते रहे हैं दिल लुभाते रहे हैं। बिल्कुल आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है मधुसरिया से, राजू कुमार यादव का कहते हैं सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, सॉन्ग सुनना है। तो इस सप्ताह आपकी फरमाइश तो हम पूरी किए हैं, गाने का नाम बता सकते हैं तो बता दीजिए और हमें मौका मिलेगा तो पूरा करने की कोशिश रहेगा, यदि जगह बनती है तो। फिलहाल जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं उन सभी से कहना है कि यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़े, हम आपकी फरमाइश बिल्कुल पूरा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे राजेश जी के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

टुडे एमसीएम 94.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब। और कार्यक्रम चल रहा है, इसमें इस फरमाइश का और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है। लिखा गया कि सर गाना सुनाने के लिए धन्यवाद। आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए राजेश जी, और बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनू बाबू कैसे हैं, हम भी थावे माई की कृपा से ठीक हैं, और एक मेरा उनके कृपा से काम आज सफल हो गया, मेहरा वाली मेरी झोली भर दी, जय हो। मैसेज करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया की करियर अक्सोल नेपाल बॉर्डर से, और बिल्कुल थावे माता रानी का कृपा हमेशा श्रोताओं पे बना रहता है, और आपने दर्शन किया आज किसी कार्य में सफल हो गए। चलिए ऐसे गोपालगंज आते रहिएगा, और थावे माता रानी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करने का अवसर मिलते रहेगा। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ, लिखा गया है कि हाय सर, मैं अंकिता शर्मा मिरलीपुर से, और मुझे सॉन्ग सुनना है, और सॉन्ग का बोल देती हैं, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए। डेडिकेट ऑल लिसनर को, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने अंकिता शर्मा। आप भी इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रमझिम 94.4 एफएम पे।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार

0: खासकर ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: प्रसाद क्लिनिक।
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
6: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
5: सुनो दिल से।
7: थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि सुपर शंग वेरी नाइस, और मैसेज करती है निशा भारती, और इनकी तरफ से गाने की भी फरमाइश पहुँचा हुआ है और कमाल के गाने की फरमाइश है खेसारी लाल यादव की आवाज़ में, और गाने की फरमाइश प्यार में तोहरा पिटाइल बाने घर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मैसेज करते हैं राजू जी धन्यवाद। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि नमस्कार सोनू जी, मेरा नाम है संदीप कुमार शर्मा, खास परसोनी से, और मुझे गाना सुनना है तुम बक तू। तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा, एक गाने के बाद आपकी भी फरमाइश प्ले करने की कोशिश है। फिलहाल हम गाने प्ले करते हैं निशा भारती की और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

सब ठीक बा, लेकिन खा लेवे के चाही, नहीं तो और कुछ तबीयत खराब हो जाए। आखिर मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक्स दिल से सो मच, आपको धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को भी समाप्त करेंगे, क्योंकि समय जो है समाप्ति के हो चुके हैं। अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं संदीप शर्मा जी की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश भी कमाल के पहुँचे हुए हैं और कई हमारे पास मैसेज है जो गाने की फरमाइश पूरी नहीं कर पा रहे, तो हम आप सभी से निवेदन पूर्वक कहना चाहेंगे कि आप समय से मैसेज पहुंचाएं। अंत में मैसेज पहुंचाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो समय है वो निर्धारित समय है कि कार्यक्रम इतने समय पे समाप्त कर देना है। हो सकता है तो एक दो गाने बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, वो भी इजाज़त मिलने पर। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ, लिखा गया कि सुनो बाबू, इतर दोनों और के कहानी बा, जब अपना अपना बाबूजी के कह के मना ली, ना तो इतना बेचैनी बात, तो मंदिर के दरवाज़ा तो खुलल बा, पर ठीक ना होई, बाबूजी के ही मना के आगे बढ़े के चाहे। तो बिल्कुल सही बात कहतन, अगर घर परिवार के राय से होला तो लंबा जिंदगी चलेला, और नहीं तो बीच में भी गांठ पड़े के संभावना हो जाला। तो सबसे अच्छा राय रवे रही कि बाबूजी के मना ले तो बेहतर रही। आगे मैसेज और लिखा गया है कि प्लीज़, तो आज तो नहीं हो पा रहा है, कल कोशिश रहेगा। सो आज अंतिम गाने प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं, और आप कल मैसेज करें, बिल्कुल हम आपकी फरमाइश हम प्ले करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप सब सुनते रहें अंतिम गाने के साथ, एंजॉय करें रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे, और हमें दीजिए जाने की इजाज़त। नमस्कार।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे। शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 7277-16-65-96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करें तो आप सभी से निवेदन पूर्वक कहना है कि पुराने गाने की फरमाइश करें, ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए थे, मैसेज को शामिल करते हैं। और लिखा गया है कि हेलो हाय, मुझे भी सॉन्ग सुनना है, बिल्कुल सुनाएंगे। फ़िलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मैसेज करती हैं निशा भारती, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्कार, और सभी को नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं, रब ने बनाया मेरे लिए सुपर सॉन्ग, दिलीप राम दिल्ली से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे बढ़े हैं, यहाँ पे आगे मैसेज राजू जी भेजे हुए हैं और मधु सरिया से कहते हैं कि सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग का बोल है खाई के पाने बनारस वाला, सुनवाना चाहता हूँ रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।
1: पर भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए, ओ खई के पान बनारस वाला।

कैसा सीधा साधा, मैं कैसा भोला भाला। हाँ हाँ, अरे कैसा सीधा साधा, मैं कैसा भोला भाला। जाने कौन घड़ी में पड़ गया, पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से, मीठी छुरी से हुआ हलाल। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पान बनाओ रसवा।

गई हाय हाय कैसी गोरी गोरी वो टिकी टिकी छोरी मामा कैसी गोरी गोरी वो टिकी टिकी छोरी करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी मिली छोरी तो हुआ निहार छोरा गंगा

कमल के शाम सुन रहे थे अभी हम सभी रेडियो 98.4 एफएम पे सोचल रहा है। इसमें इस फरमाइश का और कुमार शानू की आवाज़, सॉरी किशोर कुमार जी की आवाज़ में और डॉन मूवी से। इस गाने के फरमाइश करने वाले थे राजू जी, शरिया वार्ड नंबर तो अभी मालूम नहीं है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है। लिखा गया है कि आऊँगा सोनू बाबू, जल्द आऊँगा माता के दरबार में, फिर धन्यवाद देने और आशीर्वाद लेने। दशहरा में साथ में आप सब आदरणीय मित्रों से भी मुलाकात होगी। इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया, बिल्कुल आइए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनू भाई नमस्कार, कैसे हैं आप सब, मस्त हैं ना? और मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ, मैं रोहित देहरादून से, बिल्कुल मस्त। अपना बताए कि आप कैसे हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय मैं कमलेश जी विलेज सबिया फील्ड गोपालगंज से, और मुझे सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग का बोल देते हैं, जब से हम तेरे आशिक बने हैं आशिकी का मज़ा आ गया, प्लीज़ सुना दीजिएगा। सर जी तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि भोजपुरी सॉन्ग भोजपुरी मूवी से, नाम खून भरी मांग है, सॉन्ग प्यार तोहरा, ओह प्यार में तोहरा पिटाइल बनी घर से, मिलत नहीं थी बाबूजी के डर से, बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा निशा भारती जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि निगाहें मिला के निगाहें चुराना, लेकिन आप कौन हैं, अपना तो परिचय दे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और कमलेश जी के गाने के साथ इंजॉय करते हैं हम सभी रेडियो 98.4 एफएम पे। जब से हम तेरे आशिक बने हैं आशिकी का मज़ा आ गया है।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में, और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
4: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
5: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
4: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
5: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
4: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
5: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
4: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89793।
6: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
8: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9955 97644।

हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 91.4 FM। और समय हो गया है आप सभी के मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। जी हाँ, 9852 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ, 7277 16 65 96। तो दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ेंगे कार्यक्रम की तरफ। और आज काफ़ी मौसम सुहाना बना हुआ है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जब तक हमारे सारे लिसनर जुड़ रहे हैं हमसे, तब तक आप सभी के लिए एक प्यारा सा गाना प्ले करूंगी बारिश का। और गाने की बोल है वो पहली बरसात, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार का। तो एंजॉय करते हैं इस गाने को सभी के साथ रेडियो रिमझिम 91.4 FM में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी प्यारा सा गाना, वो पहली बरसात। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे हमारे पास मैसेज काफ़ी सारे पहुँच चुके हैं, जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, संजय यादव दुबई से, क्या हाल चाल है मैम? तो मेरा हाल चाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं? और लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग मैम। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं भारती मैम नमस्कार, मैं राज राम कुमार पांडे लंदन से, और मैं भी जुड़ गया हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं गोलू अनमोल का बेवफाई गाना बजा दो दीदी एक पल। और गाने की यहाँ बोल पहुँचे हुए लिख रहे हैं हाय हेलो प्लीज़ मुझे यह गाना बजा दो। तो जी, आपके भी गाने की फरमाइश पूरी की जाएगी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचे हुए हमारे पास, लिख रहे हैं कि हेलो भारती मैम, लिख रहे हैं आई लव यू ऑल पब्लिक, मेरे गाने की फरमाइश है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश है। और मेरा नाम शमशेर अली खान है, और मैं 22 बेतिया ज़िला रामनगर से हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैं अंसारी मस्कट ओमान से जुड़ा हुआ हूँ, और एक भोजपुरी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ जो कि मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास, लिख रहे हैं मनोरमा जी गुड आफ्टरनून आपको एंड साथ में दोस्तों को भी गुड आफ्टरनून, और हम श्री राम सासाराम टू दिल्ली, मेरा भी फरमाइश है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आपके भी गाने की फरमाइश को मैंने शुक्रवार को पूरा किया था, तो आपके गाने की फरमाइश को मैं शुक्रवार को ही पूरा करूंगी। और यहाँ पे अगला मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं न्यायपारा विरई जिला बालोद छत्तीसगढ़ से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज बाई ठाकुर, इजर राज, पप्पू ठाकुर, पहली सॉन्ग चलाया बेहद रोचक रहा अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा पर फिल्माया गया था। जी जी बिल्कुल सही बात है आपकी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं महेश पासवान सरिया जिला गिरिडीह से बोल रहा हूँ, और मुझे गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं जी मैम नमस्ते गुड आफ्टरनून मैम, हम हूँ आ गई नहीं और हमरो हाजिरी लगा दी जी मैम, और ओपनिंग सॉन्ग बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग, मौसम भी ऐसा ही बना है जी मैम, और सुहाना सा बहुत ही खूबसूरत मौसम भी हुआ है। तो जी बिल्कुल आपकी बात सही है, और बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ यहाँ जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं सन्यासी रंजन जी जुड़ गए हैं, और लिख रहे हैं गुड़ छुके गुड़ लागत नहीं भारती जी, हम हूँ आगिल बानी और हमरो हाजिरी लगा दी। तो जी आपको भी मेरा प्रणाम। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है सन्यासी रंजन जी की तरफ से, और लिख रहे हैं कि वो हमसे रोज़ पूछती थी मेरे बाबू ने थाना थाया, और एक दिन उसका फ़ोन लेकर व्हाट्सअप चेक किया तो पता चला वो भंडार चलाती है। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ जो हमारे पास यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जावेद अख्तर जी की तरफ से, धनबाद झारखंड के रहने वाले हैं, और गाने की बोल है ना कजरे की धार, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 91.4 FM में।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर

0: सुपर पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो कमलाराय कॉलेज रोड गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
4: छोटे से ब्रेक के बाद जो अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852 78 82 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती जी, मैं निर्गुण सुनना चाहती हूँ भरत शर्मा का कोई भी, और यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आपके गाने को मैंने ट्यूसडे को प्ले किया था और फिर उसी दिन आपके गाने को प्ले किया जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हेलो डियर भारती जी नमस्कार, सुपर सॉन्ग बरसात के दिन आए और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं जितेंद्र बरौली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हेलो गुड आफ्टरनून भारती मैम, मोहम्मद जोहर अंसारी और मस्कट ओमान से, और मुझे भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कॉल रिसीव नहीं की, तो जी मैं आपको बता दूं, या तो आप कॉल पे बात कीजिए और नहीं तो मैसेज से बात कीजिए, दोनों में से किसी एक पे ही आप अपने गाने की फरमाइश कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कि अगला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हाय भारती मैम, मैं भी जुड़ चुका हूँ, साबिर अंसारी जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि सुपर स्ट्रॉन्ग मैम, और मैसेज करने वाले हैं संजय यादव दुबई से। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास जो कि लिख रही हैं कि हाय, और रागनी यादव जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास जो कि लिख रहा है कि का हलवा भारती जी गाना सुनना है, सुना दीजिएगा। और लिख रहे हैं पुजेंद्र यादव जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, क्या आज हमारा गाना बज सकता है? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आपके गाने को मैंने मंडे को प्ले किया था, तो आपके गाने को मैं फिर दोबारा मंडे को ही प्ले करूँगी। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि केरला से एमडी मोहम्मद जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो कि हमारे पास यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, गाने की फरमाइश पहुंची हुई हमारे पास जो कि लिख रहे हैं आज बादल काले घने हैं, आज चांद पे लाखों पहरे हैं, कुछ टुकड़े तुम्हारी यादों के बड़ी देर से दिल में ठहरे हैं। और काफी खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं सॉन्ग है तुमसे अच्छा कौन है। और हरिओम गोस्वामी

मोहन अजगर यूपी से जुड़े हुए आजमगढ़ यूपी से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 91.4 FM में ये प्यारा सा गाना।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी खूबसूरत सा गाना, और गाने की बोल थी चांद तारे फूल और शबनम, और मूवी है तुमसे अच्छा कौन है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख

0: गाना की। थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और मैसेज करने वाले हैं हरिओम गोस्वामी जी और लिख रहे हैं कि बादलों से कह दो जरा सोच समझ कर बरसे, अगर मुझे उनकी याद आ गई तो मुलाकात मुकाबला बराबरी का होगा। और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ थैंक यू का मैसेज पहुंचा हुआ है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हेलो दीदी, गोलू अनमोल का गाना सुनना है। तो जी बिल्कुल, आपके गाने को मैंने बुधवार को प्ले किया था इसीलिए मैं प्ले नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि फीडबैक है भारती मैम। और राम कुमार पांडे जी की तरफ से फीडबैक मैसेज पहुंचा हुआ है, तो चलिए प्ले करते हैं और जानते हैं क्या है इनका फीडबैक मैसेज।
1: भारती मैम नमस्कार प्रणाम, और साथ में जितने लोग सुन रहे हैं सभी लोग को हमारे तरफ से नमस्कार प्रणाम है। और मैं राम कुमार पांडे लंदन से जुड़ गया हूँ और छोटा सा चुटकुला आप लोग के बीच में रखूँगा तो अच्छा लगेगा उम्मीद है। तो कहते हैं कि जब बतिया करे के समय न बा, भारती मैम जब बतिया करे के समय न बा तो कह दो न यार प्यार होइए न बा। तो कहते हैं कि एक पति था न, तो पति पत्नी का झगड़ा तो होता ही रहता है। तो पत्नी बोली अपने पति से, मैं कुछ सालों से करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही हूँ, फिर भी देख रही हूँ आप पूरे स्वस्थ हैं। तो पति बोलता है, इसमें क्या है, मैं अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखता हूँ और नियम से चलता हूँ। तो पत्नी बोली, मुझे बेवकूफ मत बताओ, मतलब कि पत्नी बोली मुझे बेवकूफ मत बनाओ, साफ साफ बताओ कौन है वो चुड़ैल जो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। तो मतलब कि इतना शक है पत्नियां लोग को कि क्या बताऊं। तो कहते हैं, क्या खताती जो हालात ऐसे हुए, क्या खताती जो हालात ऐसे हुए, झूठ था इश्क ओ तुम न मेरे हुए, चांद था जो कभी यार मेरे लिए, चांद था जो कभी यार मेरे लिए, दो बरस हो गए उसके देखे हुए। तो भारती मैम कल ही का बात है, पत्नी का फोन आया, माफी मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, बोल रही थी अब ऐसी गलती नहीं होगी, मेरा भी दिल पसीज गया, मतलब कि मेरा भी दिल जो है ना बहुत नरम है, मैं माफ कर दिया। लेकिन भारती मैम कहना चाहता हूँ, जो भी थी बेचारी बहुत अच्छी थी, सुशील थी, लेकिन पता नहीं किसकी बीवी थी। बहुत लोग ऐसे लोग हस्बैंड लोग होते हैं, उन लोग का सुबह सुबह का जो ये रहता है ना कि चाय पीने का आदत बहुत बुरी होती है। बोलती हस्बैंड बोला, आज ऐसी चाय बनाओ कि पीते ही तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। तो पत्नी बोली, हमारे यहाँ भैंस का दूध है आता है, नागिन का नहीं। आप भारती मैम 14 बच्चों की माँ ने अपने पति के ऊपर केस कर दिया। तो जज ने पूछा, तुमको कब छोड़ कर गया, तो महिला ने जवाब दिया, 13 वर्ष पहले। तो जज ने बोला, अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें 13 साल पहले छोड़ दिया था तो फिर 13 बच्चे जो हैं, 14 बच्चे इतने कहाँ से आ गए। तो महिला ने जवाब दिया, मेरे पति बीच बीच में माफ़ी मांगने आ जाते हैं, माफ़ी मांगने तो एक ऐसा माफ़ी है। तो सभी लोग को नमस्कार प्रणाम।
0: काफ़ी बेहद खूबसूरत राम कुमार पांडे जी की तरफ से फीडबैक मैसेज पहुंचा हुआ था। और इसी के साथ बिना देरी किए बढ़ेंगे फरमाइश की तरफ। और यहाँ हमारे पास फरमाइश पहुंची हुई है जो कि मनीष रजाक फाजिलगढ़ कुशीनगर उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं कि भारती जी गुड आफ्टरनून, और हम भी रेडियो रिमझिम में जुड़ चुके हैं, बहुत दिन बाद जुड़े हैं और हमें भी गाना सुनना है, सुना दीजिएगा। तो जी बिल्कुल, बिना देरी के आपके गाने की फरमाइश को पूरा करेंगे। और गाने की फरमाइश है, बरसात हो रही है बरसात होने दो। और काफ़ी लाजवाब गाना है, तो एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये प्यारे से गाने को।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं।

0: नूरा, अब मैं क्या करूं?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:44 हो रहा है और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो मैं आप सबको एक बात बता दूं कि आप गूगल के प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम का ऐप डाउनलोड करके आप रेडियो रिमझिम के सारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहे हैं गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैसेज करने वाले हैं मनीष रजाक फाजिलगढ़ कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। और यहाँ पे हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जितने भी सुनने वाले हैं सभी को यह गाना अच्छा लगेगा, कल 6 घंटे वेट किया फिर भी मेरा गाना नहीं बजा, आज बहुत मेहनत कर गाना लाया हूँ फिल्म से, और क्या यह ठीक हो रहा है, मेरा गाना क्यों नहीं बज रहा है, क्यों मुझे कोई मुझसे कोई गलती हुई है। तो जी आपसे कोई गलती नहीं हुई है और आपके गाने को इसलिए प्ले नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये भक्ति सॉन्ग है और यहाँ पे भक्ति सॉन्ग प्ले मैं नहीं करती हूँ। और मनोरमा जी भी कल इसीलिए आपके गाने को प्ले नहीं की थी और आप दूसरे गाने की फरमाइश करें तो बिल्कुल आपके गाने को प्ले किया जाएगा। और यहाँ पे जो कि हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं नमस्ते भारती जी, मैं संदीप कुमार माधवपुर शिवान से और मुझे भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि राधे राधे भारती जी, मैं अरविंद चौहान सिवान से और हमारा भी सॉन्ग बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है और आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है और गाने की फरमाइश पहुँची हुई है तो आपके भी गाने की फरमाइश पूरा की जाएंगी। और मैसेज करने वाले हैं एमडी मोहम्मद जी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास जो गाने की फरमाइश पहुँची हुई है लिख रहे हैं कि गाना सुनना है और पुजेंद्र यादव जी के तरफ से गाने की बोल पहुंची हुई है और गाने की बोल है जिंदगी की ना टूटे लड़ी और काफी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

तो अभी हम लोग काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना सुन रहे थे, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सन्यासी रंजन जी की मोबाइल देखकर गांव वालों को बता दिया कि आज बारिश होगी, अब गांव वाले मुझे इंद्रदेव का अवतार समझ रहे हैं। और काफ़ी बेहद मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि राधे राधे, मिथुन शर्मा बेंगलोर से जुड़ गए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, इस रिमझिम एफएम से मैं आज ही जुड़ा हूँ और ये चैनल मुझे बहुत पसंद आया और उम्मीद करता हूँ ये मेरा पहला मैसेज है, ज़रूर शामिल होगा। और आसिफ सैफी फ्रॉम

0: मिरुट यूपी से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि मैम जी नमस्कार, हम लोग भी आपके कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और राम कुमार पांडे भैया नमस्कार, का हाल चाल बा। उमा शंकर सिंह, अवंतिका सिंह, अर्चित सिंह रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, अगर दुनिया में खुश रहना है तो रेडियो रिमझिम सुनकर, और ज़िंदगी में कुछ करना है तो थोड़ा कम पिया करो। मोहम्मद साबिर अंसारी हैदराबाद से जुड़े हुए हैं और काफ़ी बढ़िया लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ जो कि हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, कब सुनाइएगा वह बता दीजिए, तो जी आपके गाने को मैंने मैं प्ले करूंगी, पर उससे पहले यहाँ पे एक दो और गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, पहले उसे प्ले करूंगी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, हेलो गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं जी आप। और मैसेज करने वाले हैं राजू यादव फ्रॉम सिवान से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि मेरा घर है सुबरौली, बिलवंतिया पूर्वी चंपारण बिहार से जुड़ा हूँ, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है राजा लाल यादव जी की तरफ से, और फिर यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है वॉइस के माध्यम से, तो चलिए सुनते हैं और प्ले करते हैं इनकी वॉइस को।
1: हेलो मैम, मैं राजा लाल यादव, पहले सऊदी अरबिया में था, अभी घर पे आया हूँ। एक सॉन्ग सुना दीजिएगा, हिंदी सॉन्ग कोई भी अच्छा सा, और मेरी बेटी रागनी यादव, मेरे वाइफ चंदा देवी, एक सॉन्ग अच्छा सा सुना दीजिए।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करें 6052-62112 पे।
8: थोड़े से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रंजिम 91.4 FM में और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:01 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि पति पत्नी हाथ पकड़ के बाजार घूम रहे थे, उन्हें देखकर दोस्त बोला इतने साल बाद भी इतना मोहब्बत। पति, ओ भाई कैसी मोहब्बत, हाँ छोड़ते ही दुकान में घुस जाती है। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र बरौली से और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मेरा नाम किशन है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी किशन जी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि वाओ सुपर स्ट्रॉन्ग भारती मैम, आपका पसंद बहुत अच्छा है। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्ते रेडियो रिमझिम टीम, हमारा नाम अर्जुन बा और हम बरौली से बानी, आज वाला प्रोग्राम बहुत स्पेशल बा। और मैडम जी आपने एक रिक्वेस्ट बा कि एक गाना बजा दी। और मैसेज करने वाले हैं अर्जुन जी बरौली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जी आपके भी गाने को फरमाइश को पूरा किया।

और इसी के साथ यहाँ गाने की फरमाइश भी पहुंची हुई है और यहाँ मैसेज पहुंचा है सन्यासी रंजन जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं कि जिस प्रकार चूहे हमें देखते ही बोरे के पीछे छिपकर सोचते हैं कि अब हम सुरक्षित हैं, उसी प्रकार हम कंबल के अंदर घुसकर सोचते हैं कि अब हम भूतों से सुरक्षित हैं। और काफ़ी मज़ेदार लाइन है सन्यासी रंजन जी की तरफ से। और ये आपकी बात सही है, हम लोग ऐसे ही छुपते हैं और सोचते हैं हम सुरक्षित हैं। और इसी के साथ यहाँ जो हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना प्ले कर दीजिए। तो जी चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करेंगे। और जी आप बता देते और मैसेज करने वाली हैं शिवानी कुमारी थामे से। और गाने की बोल यहाँ लिंक के माध्यम से पहुँची हुई है और गाने की बोल है धनिया बाड़ू कनिया दिलवा दुल्हनिया, बहुत ही खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रंजन 90.4।

अभी हम लोग शिवानी जी की तरफ से सुन रहे थे काफ़ी खूबसूरत गाना, धनिया बनबू कनिया दिलवा दुल्हन मान ले लेवा, और काफ़ी खूबसूरत गाना है। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रही हैं कि दिल से शुक्रिया मैम गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैडम जी, मैं तारकेश्वर माची दुबई से और मुझे भी एक गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को प्ले किया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जी मैम हमारा गाना अभी बजा दी। तो जी आपके गाने को बजाऊंगी पर एक गाना और है जो कि फरमाइश किया गया है, उसे पहले प्ले कर दूंगी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि आप बोली थी कि 2-3 गाने के बाद आपका गाना बजा देंगे, कब बजेगा? तो जी मैं आपको कितनी बार बोलूँ, आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आपके गाने को मैं प्ले नहीं कर सकती क्योंकि ये भक्ति गाना है, कोई भी भक्ति गाना मैं प्ले नहीं कर सकती। और आप दूसरे गाने की फरमाइश करें तो जी बिल्कुल मैं दूसरे गाने की फरमाइश कीजिएगा तो जी मैं बिल्कुल आपके गाने को प्ले कर दूंगी, पर ये भक्ति गाना है, मैं इसे प्ले नहीं कर सकती। और इसी के साथ जो कि यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रही है मैं हजरा सूरत से और मेरा भी सॉन्ग सुनवा दीजिएगा। तो जी बहुत बहुत स्वागत है और आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैडम जी, नमस्कार भारती जी और मनोरमा जी को, मैं भी जुड़ गया हूँ प्रोग्राम से और मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं दीपक चौहान सूरत से। और जो कि यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि संदीप कुमार माधवपुर शिवान से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और यहाँ पे लिंक के माध्यम से गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। लिख रहा है कि मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत करना, मजाक को हकीकत बनने में देर नहीं लगती, सुनो ये मजाक फिर दोबारा मत करना। और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करेंगे। और गाने की बोल है कब आएगा मेरे बंजारे तेरी बंजारन रास्ता देखे, और काफ़ी खूबसूरत गाना है अलका याग्निक का, तो सुनते हैं रेडियो रिमझिम 91.4 FM में।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन

0: से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:17 हो रहा है और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि और लिख रहे हैं, मैम 2 दिन से वेट कर रहा हूँ इस गाने के लिए, फिल्म का गाना है और आप सुनाए नहीं रही हैं। तो जी, मैं आपसे बोली थी ये भक्ति गाना है और मैं प्ले नहीं कर सकती, और अगले जो आपके गाने की फरमाइश पहुँची हुई है उसे भी प्ले करूँगी, पर उससे पहले यहाँ एक गाने की फरमाइश है और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, हेलो भारती मैम, गुड आफ्टरनून, नमस्ते प्रणाम सभी दोस्तों को, नमस्ते प्रणाम, केशव राज जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है, और बिहार बेगूसराय के रहने वाले हैं। और इसी के साथ यह मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास सन्यासी रंजन जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं कि एक जमाना था जब प्यार में लोग अमर होते थे, फिर एक समय आया लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, और अब तो समय वो है जब प्यार में लोग तोतले हो जाते हैं। अरे मिला बाबू कुछ गुच्छा हो गया, और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचे हुए हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम नमस्ते, क्या हाल जी, और मेरा फरमाइश चलेगा, और जय किशोर मैसेज करने वाले हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आपके गाने को मैंने परसों ही प्ले किया था और मैं फिर से परसों ही आपके गाने को प्ले करूँगी। और यहाँ मैसेज पहुँच गया है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, थैंक्स भारती जी गाना बजाने के लिए, और यहाँ पे जो कि हमारे पास अगले गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं, भारती जी कैसी हैं, और मैं आदर्श सिंह बिलवा से, और मुझे भी एक सॉन्ग सुनना है, और गाने की बोल पहुंची हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और डेडिकेट बाई लिख रहे हैं, डेडिकेट बाई भारती मैम और मनोरमा जी को, और प्लीज़ बजा दीजिएगा अभी सुनना है, और गाने की बोल है कहाँ गैलू ए जान, और काफ़ी खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी किए पवन सिंह की आवाज़ में ये प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे आदर्श जी की तरफ से काफ़ी खूबसूरत सा गाना, और गाना की गाने की बोल थी कहाँ गईलू ये जान, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो आदर्श जी बताइएगा ज़रूर कहाँ गईली ये जान। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच गया आदर्श जी की तरफ से, लिख रहे हैं थैंक यू सो मच भारती मैम गाना चलाने के लिए। और यहाँ पे मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, बिग फैन मैं अभिमन्यु कुमार बरौली से और बरौली अंचल से हूँ, और एक गाना सुनना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास जो कि लिख रहे हैं भारती जी गोल लागत बानी हम हूँ जुड़ गिल बानी, और मैसेज करने वाले हैं दिलीप राम दिल्ली से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपको भी मेरी तरफ से प्रणाम। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मैडम जी हमारा गाना नहीं चलाइएगा, और निर्गुण है चला दीजिए। और आपके बता दूं ये निर्गुण बहुत ही लंबा है और मैं इसे नहीं चला सकती। अगर आप कोई और गाने की फरमाइश करें तो जी बिल्कुल मैं उसे प्ले कर दूंगी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हर हर महादेव सन्यासी बाबा मनीष पांडे का हाल बाजी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं मेरा गाना बजा दीजिए गोलू अनमोल का बेवफाई है। और आपके गाने को मैं इसलिए प्ले नहीं कर रही थी क्योंकि मैंने बुधवार को ही आपके गाने को प्ले किया था। और इसी के साथ यहाँ मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं चाहे तेरे शहर की चाहे मेरे शहर की ये रात एक ही है, चाहे तुझको देखूं या चांद को देखूं बात एक ही है। और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं केशव राव राज जी बिहार बेगूसराय से। और यहाँ पे जो कि हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं अर्जुन जी, कुछ रिश्ते लफ्जों से नहीं खामोशियों से समझे जाते हैं, कुछ लोग पास होकर भी दिल से बहुत दूर हो जाते हैं। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम सरफरोज अली हम भी जुड़ गए हैं, और नाइस सॉन्ग पवन सिंह का। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो कि हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो भारती मैम नमस्कार, मैं भी शो से जुड़ गया हूं और हमको भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं राहुल जी। और इसी के साथ यहां हमारे पास जो कि गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और गाना सुनना चाहते हैं अरविंद चौहान सिवान से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और इनकी तरफ से लिंक के माध्यम से गाने की फरमाइश पहुंची हुई है। और गाने की बोल है एक मुलाकात जरूरी है सनम, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
4: बनिए अपने जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम के साथ। आप

0: आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 91.4 FM। और आप सबको एक और बात बता दूं कि आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पर विजिट करके गोपालगंज के हालचाल रेडियो रिमझिम के वेबसाइट से जुड़कर जान सकते हैं और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती मैम हिंदी गाने की फरमाइश भेज सकते हैं, और हम रंजीत कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से, और फिल्म का नाम है, और यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं भारती मैम गाना सुना दीजिएगा। तो जी बिल्कुल, आपके गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग कब बजेगी, कितना टाइम पर, कितना देर में, और मेरा नंबर है भारती मैम। तो जी आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सन्यासी रंजन जी की, हर हर महादेव मनीष भाई, और हमार हाल चाल ठीक बा अपन बतावा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जितेंद्र बरौली से जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं कि पति गुस्सा में, क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा? पति चुप, पत्नी चुप। पति फिर, क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा? पत्नी फिर चुप। पति फिर, क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा? पत्नी नहीं कहा, प्लीज भौंकना बंद करो। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि सरफरोज जी लिख रहे हैं कि भारती मैम क्या हाल है, और लंच हो गया क्या? तो जी मेरा तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं? और मेरा लंच दोपहर के बाद होगा। भारती मैम क्या हाल है, और लंच हो गया क्या? तो जी मेरा तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं? और मेरा लंच दोपहर के बाद होगा, न्यूज़ के बाद होगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर जी, और इनके तरफ से फीडबैक मैसेज पहुँचा हुआ है। तो चलिए प्ले करते हैं और जानते हैं क्या इनका फीडबैक मैसेज।
2: मैम गीत सुन के मजा आ गया, मेरा नाम अरिजीत सिंह है, मैं देवभूमि उत्तराखंड से बोल रहा हूँ।
3: मैम गीत सुन के मजा आ गया, मेरा नाम अवंतिका, मैं देवभूमि उत्तराखंड से बोल रही हूँ।
1: और काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत वॉइस में मैसेज पहुंचा हुआ है। और इसी के साथ यहाँ जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, और काफ़ी देर से बोल रहे हैं, और ये लिख रहे हैं कि आज गीत बजा दीजिए प्लीज़, और विजय थालापति का गाना है। और लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी, अब तो बजा दीजिए, और मैं अभी कर्नाटक से हूँ, अब तो बजा दीजिए। तो जी आपके गाने को

और काफी देर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो चलिए आपके लिए इस गाने को प्ले करते हैं। और गाने की बोल है आपड़ी पोड़े और थालापति, विजय थालापति का गाना है। तो प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 91.4 FM में।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रंजिम 90.4 FM में, और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, मैम जी जिसका गाना है उसको समझ में आ रहा है क्या? तो जी, जिसने बजवाया है उसे तो बिल्कुल समझ में आया होगा, तभी तो बजवाया है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं, अभी जो गीत चल रहा है लोगों को पल्ले नहीं पड़ रहा है, अच्छा था। और उमा शंकर जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है, और जी आपके पल्ले तो क्या, मेरे पल्ले भी नहीं पड़ा। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं? और कृष्णा शर्मा अहमदाबाद गुजरात से हैं, और मेरे साथ लिख रहे हैं कि मेरे साथ बनुबेन मकवाना से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, और बैक टू बैक अभी दो गाने प्ले होंगे लगातार एक साथ। और यहाँ पे गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, हमारा लिख रहा है, हमारा नाम है अर्जुन और बरौली से जुड़े हुए हैं, और गाना सुनना चाहते हैं, और गाने की बोल है नींद नहीं आती है रे, और भोजपुरी सॉन्ग है सृष्टि भारती का, और गाना बजाने के लिए धन्यवाद का भाई मैसेज पहुँच चुका है। और यहाँ पे राहुल जी का भी गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, और गाने की बोल है दिल जानिया, तो इन दोनों को गाने को प्ले किया जाएगा अभी। और बिना देरी किए अर्जुन जी के गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रंजिम 90.4 FM में। उसके बाद राहुल जी के गाने को प्ले होगा, तो एंजॉय कीजिए सभी।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। और यहाँ हमारे पास काफी सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज पहुंचा हुआ है सन्यासी रंजन जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं कि घर वालों से डांट सुनने के बाद मन करता है कभी फ़ोन ही यूज ना करूं, लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि गुस्से में इतना बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं है। और यहां पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि बजाने के लिए शुक्रिया और दिल से धन्यवाद, मैसेज पहुँच गया है। और यहाँ पर जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहा है कि अली क्या बात है, भारती जी कौन सी गलती हो गई है हमसे, अब तो हमारा मैसेज भी शामिल नहीं हो रहा, पढ़ा भी नहीं जा रहा है। तो जी ऐसी कोई बात नहीं है, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी मैसेज को शामिल किया जाएगा। अभी यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि इस बहाने कुछ तो नया गीत सुनाया भाई साहब ने, अच्छा लगा, और ऐसे ही होना चाहिए, कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। और मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर जी, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि एक आदमी अपनी बीवी को दफना के घर जा रहा था कि अचानक बिजली चमकी, बादल गरजे, जोर की तूफान बारिश शुरू हुई, माहौल अफरा तफरी वाली हो गया। दुखी आदमी आसमान की तरफ देखते हुए बोला, लगता है पहुंच गई है। और काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुंची हुई है, और यहां पे मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि भारती जी शोर मचावे के का जरूरत बा, कैसन मुदैया मर्दा बारन जी। और मैसेज करने वाले हैं दिलीप राम जी, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है राहुल जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम सॉन्ग प्ले करने के लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि नेक्स्ट हमारा डिमांड प्ले कर दीजिएगा। और रंजीत कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से जुड़े हैं, और गाने की बोल है वादा करो तुम साथ कभी ना छोड़ोगे। और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है, तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

0: ये क्या?
1: मेरा इस्तीफा।
0: तुम्हारा इस्तीफा नामंजूर किया जाता है।
1: मुझे किसी के इंसाफ करना है सर, और मुझे अफसोस है कि मेरी वर्दी, मेरा कानून मुझे इंसाफ करने से रोक रहे हैं।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
4: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
4: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
4: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
4: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
9: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
11: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070-32042 पे।
12: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं धनेश जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि दिल्ली से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे लिख रहे हैं कि पति मुझे अपनी बीवी से तलाक चाहिए, वो बर्तन फेंक के मारती है, जज अभी से मार रही है या पहले से, जज तो इतने साल बाद तलाक क्यों? पति, क्योंकि अब उसका निशाना पक्का हो गया है। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, और लिख रही हैं हेलो मैम आपका ध्यान किधर है, और हजरा जी का मैसेज इधर है। जी बिल्कुल, आपका भी मैसेज मिल गया है और जी आपके भी गाने को प्ले करेंगे, पर उससे पहले यहाँ एक गाने की फरमाइश पहुँची हुई है उसे प्ले कर दूँ। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है शमशाद अली लिख रहे हैं कि मनोरमा जी ने हमारा मैसेज देखने के बाद भी हमारा मैसेज पढ़ा नहीं, और लिख रहे हैं कि भारती जी कैसे हो आप, हम भी लाइन में हैं। और शमशाद अली उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि एक शायरी, एक आदमी मेडिकल स्टोर पर गया और बोला भाई साहब जहर दे दो। दुकानदार ने कहा बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलेगा, तो आदमी ने रोते हुए अपनी शादी का कार्ड दिखा दिया। दुकानदार के भी आंसू छलक आए और वह छाती पीट कर बोला बस कर पगले रुलाएगा क्या, इतनी बड़ी बर्बादी का सबूत लाया है, जहर की बोतल बड़ी दू या छोटी जल्दी बता। और काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुंची हुई है शमशाद जी की तरफ से, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास अगला मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हेलो भारती मैम नमस्कार जी, मैं पंकज मिक्स लैब यादवपुर रोड गोपालगंज से, और हमको भी एक गाना सुनना है स्वाति मिश्रा की आवाज़ में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और गाना सुनना चाहते हैं वॉइस के माध्यम से, फरमाइश पहुँची हुई है, और केरला से MD मोहम्मद जुड़े हुए हैं, तो चलिए इनके वॉइस को सुनते हैं और जानते हैं क्या इनकी फरमाइश।
13: हाय हेलो भारती मैम, कैसी हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज मुझे भी एक गाने का फरमाइश है। गाने के बोल है, इन नजारों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखो। केसी दास की आवाज़ में है। डेडिकेट रेडियो रिमझिम सभी टीम को और रेडियो रिमझिम के जितने भी श्रोता हैं सभी को, और ख़ास तौर से हमारे जानने वाले हैं लालगंज बजाजी रोड अभिनंदन टेलर की पूरी टीम को। ओके, सियो, टाटा, बाय बाय।

और इसी गाने के साथ बढ़ेंगे दोपहर न्यूज की तरफ और हमारी मुलाकात आप सभी से फिर होगी दोपहर न्यूज के बाद। और तभी तक आप सभी इस गाने को एंजॉय करते रहे और जिनके भी गाने को पूरा नहीं किया गया है उनके गाने की फरमाइश को न्यूज के बाद पूरा किया जाएगा और मैसेज को भी शामिल किया जाएगा। तब तक आप सभी एंजॉय करते रहे ये प्यारे से गाने को।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: श्रोताओ आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15।

0: West Bengal, Telangana, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and Odisha today. And India stormed into men's Kabaddi semi-finals after beating Chinese Taipei in final Group A fixture at Asian Games in Japan. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया, कहा सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स्ड निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम आखिरी ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सेवा हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए। एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सेवा की भावना देश की नीतियों में शामिल होती है तो ऐसी योजनाएं सामने आती हैं जिनसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया।
2: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
1: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधरोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटान करना और शासन में सुधार करना है। ये अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जन सेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है।
3: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके तहत उच्च शिक्षा में विषय के चयन में विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता, बहुविषयक अध्ययन, कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश भर में लागू करने की दिशा में ओडिशा भी लगातार आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान विद्यार्थियों को पारंपरिक डिग्री के साथ साथ रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं, स्थानीय आवश्यकताओं और तकनीकी शिक्षा को भी नई शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ शोध और नवाचार के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन और उच्च शिक्षा में इसके प्रभाव को लेकर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहते हैं,
4: 2024 में नई सरकार गठन होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने संरचनात्मक और शैक्षणिक सुधार के लिए हमेशा प्राथमिकता दिया है। कौशल विकास और उद्योग संपर्क के लिए AEDP, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, नास्कम, फ्यूचर स्किल, कोर्सेरा जैसे कार्यक्रम को अपनाए हैं। इंटर्नशिप बहुत अच्छी तरीके से उड़ीसा में हो रहा है।
3: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन केवल पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अवसरों से सशक्त बनाना है। ओडिशा में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू करते हुए उच्च शिक्षा को बेहतर और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। भुवनेश्वर से दीपक कुमार बेहरा के साथ मैं इतिश सिंह राठौर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: हुए। तोंगा के वित्त मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के न्याय विभाग के सचिव और अटॉर्नी जनरल, वानुअतु के स्वास्थ्य मंत्री, नाउरू के उप विदेश मंत्री तथा प्रशांत द्वीप मंच के महासचिव भी बैठक में उपस्थित थे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में यह अभियान शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। नई दिल्ली में आज 13वें वार्षिक पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के उद्घाटन सत्र में श्री कृष्णन ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन विनिर्मित होते हैं।
2: हम देश में अपनी कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% खुद तैयार करते हैं। भारत में होने वाला मूल्यवर्धन जो लगभग 7-8 साल पहले करीब 10-15% था, अब वो बढ़कर लगभग 22-23% हो गया है। हमारा लक्ष्य 35-40% के बीच मूल्यवर्धन हासिल करना है। इस उद्योग को देश में ही बनाए रखने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है।
1: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री

0: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत

0: लगता है।
1: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
0: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डीलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी के दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के जरिए से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527-88291, और कॉल के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72776-65। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं।

और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है शमशाद अली मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, मैम डबल सॉन्ग चल रहा है मैसेज देख लीजिएगा। तो हाँ उस टाइम गलती हो गई थी, तो

हेलो भारती मैम नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम अखिलेश महतो है और मैं हिजरा नवादा पूर्वी चंपारण संग्रामपुर से हूँ। और मैम मुझे गाना सुनना है, गाना सुना दीजिए मैम। आपको रेडियो में क्या दिक्कत हो गई है मैम कि एक गाना नहीं दो दो गाने के साथ भेज रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ मेरा फरमाइश बजा सकते हो तो बजा दीजिएगा भोजपुरी फिल्म। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, तो इसी के साथ यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं मनोरमा जी, नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? तो मैं ठीक हूँ, आप बताइए कि आप कैसे हैं। और मैसेज करने वाले हैं उत्तर

हमारे यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हाय मैम मेरा भी गाना बजा दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं महेश पासवान सरिया जिला से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं हाय मैम, हाय मैडम जी, नमस्कार भारती जी और मनोरमा जी को, मैं भी जुड़ गया हूँ प्रोग्राम से, मुझे भी गाना सुनना है। और मैसेज करने वाले दीपक चौहान सूरत से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और इनका गाना है नीलकमल जी की आवाज़ में, तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। और ये खूबसूरत सा सॉन्ग को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: तो अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे नील कमल जी की आवाज़ में, और यहाँ पे मैसेज भी पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम, थैंक यू मनोरमा मैम जी सॉन्ग बजाने के लिए, और मैसेज करने वाले हैं दीपक चौहान सूरत से। तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्कार मनोरमा जी कैसी हैं आप। तो मैं ठीक हूँ, आप बताइए कि आप कैसे हैं। और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, और इसी के साथ बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं अक्सर जब हम आपको याद करते हैं अपने रब से यही फरियाद करते हैं उम्र हमारी भी लग जाए आपको क्योंकि हम उनको खुद से ज़्यादा याद करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा लाइन था धनेश कुमार मिश्रा जी की तरफ से, और इसी के साथ यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मैं हजरत सूरत से मेरा भी सॉन्ग सुना दीजिए। हेलो मैम, आपका धन्यवाद है और मेरा गाना बजा दीजिए। तो इनकी फरमाइश वॉइस के माध्यम से है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
1: हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं हजरा सूरत से, और मुझे भी एक सॉन्ग सुनना है भोजपुरी सॉन्ग, जो सॉन्ग का नेम है बिना बुलावले गौरा नैहर मत जइहा, और सुनवाना चाहती हूँ आपको, अपने हस्बैंड जी को, और हीना जी हैं, सफाक जी हैं, सलेहा जी हैं, ब्यूटी परवीन है, रुबीना नाज है, और अख्तरी जी हैं, अरिफान जी, कमरान जी, गुलाम हुसैन, वीरेंद्र गुप्ता, साहिल राजा, समीर भाई, और दिलीप राम, और जितने लोग पहचानने वाले हैं सब लिसनर को।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9956 59536 या 9956 57902। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन।
0: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: ठक ठक।
3: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए।
4: अच्छा मिला ही नहीं
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि

पहुंच गया है जो कि लिख रहे हैं, आज मेरा एक हफ्ता पूरा हो गया है, आपकी आवाज़ में आपकी चॉइस का एक सॉन्ग सुनना है, अगर आप गुनगुनाया तभी प्ले करें। और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा जी। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे गाना नहीं आता है, गाना ओनली आपके गाने को ही मैं प्ले कर सकती हूँ। और आपको कौन सा गाना सुनना है वो अपनी फरमाइश मैसेज में कर दें। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, कोई भी गीत शामिल कर लेना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी, हम रेडियो रिमझिम से जुड़ गए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं गुरु नानक पूरा पंडिता पंजाब से, और किशोर सबल सबलिनिया, सवित्री सबलिनिया, सुमन सबलिनिया, बेटी अंशु। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम, मैं धर्मेंद्र कुशवाहा देवरिया यूपी से, सॉन्ग सुनना है, तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 91.4 FM पे।

खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे माझा, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, मैडम जी मैं प्रणाम मनोरमा मैडम जी, गोल्ड गोल्ड लागत नहीं, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चलाओ तनी रहुआ, हम सुना तानी रेडियो रिमझिम बहुत अच्छा गाना चल रहा बा अभी, प्रणाम। हम मिथिलेश चौहान बोलतानी हीरा नवादा संग्रामपुर से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, आज भी इंतजार कर रहा हूँ, मेरा गाना सुना दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं मिथुन शर्मा बेंगलोर से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। उससे पहले यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही है, हेलो मैम, माय नेम इज आफरीन सब्बा पटना धामा पाकड़ से मेरा भी गाना बजा दीजिए, और गाना का नाम है मेला दिलों का आता है। और मैम प्लीज़ मेरा गाना बजा दीजिएगा, भारती मैम प्लीज़। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
4: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
5: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
4: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
5: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
4: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
5: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
4: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
6: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
7: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे जो कि मेला तिलोखा आता है, और मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए, और मैसेज करने वाली है आफरीन। और इसी के साथ बढ़ेंगे

ना मिले तो कश्ती को तो समंदर को दोष देते हैं, बिगड़ जाए तो कोई काम तो मुकद्दर को दोष देते हैं। चलने वाले चलते नहीं संभल कर, चलने वाले चलते नहीं संभल कर, ठोकर लग जाए तो पत्थर को ठोस दे देते हैं, आई मीन दोष दे देते हैं। और ये मैसेज करने वाले हैं पाजी यूपी चौवन से, और इन्होंने मैसेज किया कि हाजिरी लगा दीजिएगा मनोरमा मैम जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं वाव सुपर सॉन्ग, और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सर झुकाने की आदत नहीं है, आंसू बहाने की आदत नहीं है, हम खो गए तो पछताओगे बहुत, हम खो गए तो पछताओगे बहुत, क्योंकि हमारे लौट के आने की आदत नहीं है। और मैसेज करने वाले हैं फॉर्म तिवारी जी संदीप आजमगढ़ यूपी से, और इन्होंने मैसेज किया कि मैम मेरा सॉन्ग प्ले कर दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने को हम प्ले करेंगे। और एक और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ है, जो कि मैं सभी पिता से कहना चाहूँगी कि अपनी बेटी के लिए घर मत देखना, घर में लोग कैसे रहते हैं वो देखना। तो वो बात तो सही है। और मैसेज करने वाली हैं हजरत सूरत से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा मैम तोहर बिना अधूरा हर अरमान बा, तू ही तो हमार पहचान बड़, तोहरे बिना अधूरा हर अरमान बा, तू ही तो हमार पहचान बा, जब से मिलू तू हमसे जीवन बन गई आसान बा। और लिख रहे हैं कि सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं संदीप मृत्युंजय तिवारी गोस्वामी प्लीज और गाना बजा दीजिएगा। और ये आजमगढ़ यूपी से हैं, और इन्होंने मैसेज किया कि मैम अभी गाना बजेगा क्या, तो ज़रूर बजेगा। और इससे पहले यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचे हुए हैं।

दूसरा गाना सुना दीजिए। गाने के बोल है तो हर फोटो करेजवा में धैले हुई, और प्लीज गाना सुना दीजिएगा और मैसेज करने वाले हैं। और इनका नाम, ये नाम मेंशन नहीं किया है, सॉरी, नाम है महेश पासवान जी, और मैसेज किए हैं जो कि लिख रहे हैं हाय मैं, मेरा भी गाना बजा दीजिए। तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

तो अभी हम लोग गाना सुन रहे थे लो मुकेश पासवान जी, महेश पासवान जी की तरफ से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मनोरमा दीदी, का हाल बा।

शर्मा दीदी, तो जी बिल्कुल मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे। और लिख रहे हैं कि क्या हाल बा दीदी, जरूर बताई। तो हमार हाल चाल तो ठीक बा, अपन बताई कि रहुआ कैसन बानी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ जो कि लिख रहे हैं, हेलो मनोरमा मैम, नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम अखिलेश महतो है और मैं जिला नवादा पूर्वी चंपारण संग्रामपुर से हूँ। मनोरमा मैम, हमार गाना आज मेरा गाना बजेगा क्या? तो ज़रूर बजेगा, अपनी फरमाइश भेज दीजिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहा कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मुझे सॉन्ग सुनना है। और मैसेज करने वाले हैं संदीप आजमगढ़ यूपी से, और गाने की बोल है जल्दी आ जा बलमुआ। तो चलिए संदीप जी, आपके गाने को प्ले करते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: तो अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे संदीप जी की तरफ से, और उनके तरफ से मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ पहुंचे हुए हैं। और इन्होंने लिख रहे हैं कि दर्द देख के दर्द बढ़ावल ना जाला, दर्द देख के दर्द बढ़ावल ना जाला, दीपक जला के दीप बुझावल ना जाला। प्रेम कितना बड़ी पर बैगाम ना हुई, दिल लगा के दिल हटावल ना जाला। और बहुत ही खूबसूरत सा लाइन था, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग दीदी, और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार पिपरा नारायण से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मोतिहारी से एमडी मीनू, मेरा मैसेज पढ़ लेती हैं गाना नहीं सुनाती हैं, अब कितना दिन हो गया। अच्छा जी, तो सॉरी, मुझे भी उतना प्रैक्टिस नहीं है कि आप लोग के गाने को मतलब जल्दी से जल्दी प्ले कर दे, क्योंकि मैसेज भी शामिल करना होता है। तो आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। आपसे पहले यहाँ पे बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पे मैसेज पूछा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मैं करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से का हालवा मनोरमा दीदी, तो हाल तो ठीक बा, अपन बताएं कि रउआ कैसन बानी। और यहाँ पे एक और मैसेज पूछा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो मैम नमस्कार विनोद कुमार चौहान विलेज कोई अभी दुबई से हैं, अभी मुंबई से हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि मैसेज पहुँचा हुआ कि प्लीज़ मैम सॉन्ग प्ले कर दीजिए प्लीज़, और अपना नाम मेंशन नहीं किया। और यहाँ पे लिखे हैं सर झुकाने की आदत नहीं है, आंसू बहाने की आदत नहीं है, हम खो गए तो पछताओगे बहुत क्योंकि हमारे लौट आने की आदत नहीं है, और गाना सुनना इनको सब कहेला बहुत सुंदर भाड़ू। और फॉर्म तिवारी जी संदीप, और संदीप के साथ और बेलकुंडा आजमगढ़ से यूपी से, और मैसेज किया है कि प्लीज़ मेरा गाना बजा दीजिए। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे।
1: सब कहेला कि बहुत सुघर बाड़ू तू हमारा चाहत बा।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
2: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
2: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
2: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
2: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे

गाने के बोल है सोना सोना सुनिया रूप द नजारा, और उदित नारायण जी की आवाज में सुनाइएगा और डेडिकेट करना चाहती हैं ऑल लिसनर को। और मैसेज करने वाली है सुहाना जी, तो चलिए सुहाना जी आपके गाने को प्ले करते हैं।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे सुहाना जी की तरफ से, और उनकी तरफ से मैसेज भी पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं शुक्रिया मैम गाना बजाने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आ

जो कि मैसेज लिखे हैं अखिलेश जी, अखिलेश चौहान का फरमाइश भेज दिले बानी हम बजा दे मैडम जी। प्रणाम, हम मिथिलेश चौहान, अखिलेश चौहान का लिंक भेज दिया हूँ, तो जी उनके गाने की भी फरमाइश पूरी करेंगे। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं उत्तम भाई के लिए ये फूल भेज दिए हैं, आप उत्तम भाई को ये सेंड कर दीजिएगा। और मैसेज करने वाले उमा शंकर सिंह रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से। और इसी के साथ बढ़ेंगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो श्रुति दीदी, मेरा गाना चला दीजिए, तो बहुत बहुत स्वागत है, और आपके गाने की फरमाइश पूरी करेंगे हम। उससे पहले यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ बहुत ही मज़ेदार जोक्स है, और जो कि लिखा है आज मैंने अपने दोस्त से पेट कम करने का उपाय पूछा, तो वो बोला फोटो छाती तक ही खिंचवाया कर, सच में जिंदगी में ऐसे दोस्त जिनके पास नहीं है उनका जीवन व्यर्थ है। और बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ पहुँचे थे, और ये मैसेज पहुँचा था धनेश कुमार मिश्रा जी की तरफ से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ आफरीन जी की तरफ से, और इन्होंने मैसेज किया कि मैम मेरा गाना चला दीजिए, नीलकमल जी की आवाज़ में है, तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: कई दिनों से पेट
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे यहाँ पे, और मैं सब पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए, और मैसेज करने वाली हैं आफरीन। और इसी के साथ आप बढ़ेंगे आगे, और यहाँ

नाना बनाऊं। इस खुशी के अवसर पर और अरमान को दुआ पर मुझे गाना सुनना है, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। तो बहुत बहुत बधाई हो और कंग्रेचुलेशन। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं।

तो अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे, छोटी से प्यारी से नन्ही से आई कोई परी। और मैसेज पहुंचा था बिट्टू भाई की तरफ से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ बहुत ही मजेदार लाइन के साथ मैसेज पहुंचा हुआ है। और मैसेज करने वाले हैं जितेंद्र बरौली से, और इन्होंने बहुत ही मजेदार लाइन के साथ कुछ सेंड किया है, तो चलिए देखते हैं क्या है। पति की कब्र पर पत्नी रोती हुई बोली, बेटा लैपटॉप मांग रहा है, मैं क्या करूं। बेटी मोबाइल की फरमाइश कर रही है, कहाँ से लाऊं, खुद मेरे पास कपड़े नहीं है, क्या करूं। कब्र से घुटी घुटी सी आवाज आई, मर गया हूँ, दुबई नहीं गया हूँ। और बहुत ही मजेदार लाइन के साथ पहुंचे थे जितेंद्र जी बरौली से। तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुंच गया है जो कि लिख रहा है, मैडम जी गाना प्ले कर दीजिए। और मैसेज पहुंचा हुआ है अखिलेश कुमार जी की तरफ से, और फरमाइश पहुंची है लिंक के माध्यम से। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

तो अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और मैसेज पहुंच गया जो कि लिखा है, मैडम जी प्रणाम, धन्यवाद गाना बजाने के लिए, अखिलेश भाई की फरमाइश पूरी, रेडियो रिमझिम में काम करने वाली को भी प्रणाम और मनोरमा मैडम जी भी प्रणाम, बाय बाय। तो मैं आप लोग से एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आज भी जिन लोग का गाना प्ले नहीं हुआ उन लोग का गाना कल प्ले करेंगे और मुझसे कोई गलती हुई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश तो की हूँ कि सारी लोगों का फरमाइश मैं पूरा करूँ, लेकिन अगर जो लोग छूट गए उन लोग का कल मैं प्ले करूँगी। तो श्रोताओं, समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 98527 88291, और कॉल करने के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 72776665। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप सभी से लूँगी विदा, और सुनते रहिए ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 5790।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

0: प्रस्तुत बा निर्गुण रउआ सबके सेवा में छोट भाई के द्वारा हम और बाबूजान भाई देखी एह के बाबूजान भाई सजौले बड़े कितना बढ़िया आ गलती के क्षमा करब। प्रस्तुत बा निर्गुण सुनी संसार में का होता आ का करे के चाही शेरबा।
1: डाली डाली बगिया में

सजनी कहतरी साजन से आसो तू बलम जीना गवना करई हा आसो तू बलम जीना गवना करई हा होखे दसयान

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
5: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पर।

0: करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज, कॉल करें 94512-11001।

0: जब बुझ जाई समैया चाहे कतनो तेल लगा लो अरे खा लो दूध मलैया।
1: राम नाम आधार बा एह जीवन में, यही से कवि कहतड़े देही का कहतड़े।
0: राम नाम रस पिय, राम नाम रस पिय भैया हंसी।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
6: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
6: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
10: भरोसे वाले से लेंगे,
9: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
10: और कीमत भी।
9: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
11: ST ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
12: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
13: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
14: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
13: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
15: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
13: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
1: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
4: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
5: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
4: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
5: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
4: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
5: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
4: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88869।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 94 FM में।
1: जी, योगेश जंगरे करा सकती
2: हूँ। जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बढ़िया है।
2: तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: एक गजल है, फिल्म प्रेम के हाथों से छू ले दो, मेरा गीत अमर कर दो।
2: जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: सभी साथियों को।
2: तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: जी, धन्यवाद।
2: जी, रेडियो रंजन में कॉल किए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 एफएम में। जी, हम सब भी अच्छे हैं। तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
1: सुनना जी शादी वाला गाना।
0: अच्छा, नहीं जी, बोल
1: शादी वाला गाना वो सुना दीजिए। किसानियों गोरे रंग वालियों, हम तुम्हारे हैं दीवाने। शादी वाली रात में जूते चुराते हो, दिन तो चुराओ तो जाने वाला।
0: अच्छा, और गाना किसी को सुनवाना भी है
1: जी आपको? जूते चुराता सुनता भी सुनेंगे हम, आप दूसरों को साथ सुनेंगे।
0: तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
2: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
2: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
2: तो फिर देर इस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
2: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
3: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
2: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452-11001।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009-94-911। जी हाँ, 8009-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो।
8: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 में।
8: जी हाँ मैम।
7: हेलो।
8: हेलो
7: जी, नाम बता दीजिएगा अपना।
8: जी नाम मेरा बाबू राम कुमार हुआ।
7: अच्छा, और कहाँ से हैं आप?
8: मैं बिहार से बोल रहा हूँ।
7: बिहार में कहाँ?
8: बिहार मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से।
7: जी जी, तो कैसे हैं आप?
8: अभी तो ठीक है मैम, आप लोग कैसे हैं?
7: जी जी, हम सब भी ठीक हैं। तो आज आपको कौन सा गाना सुनना है?
8: बॉर्डर का मैम।
7: जी,
8: बॉर्डर का संदेश आते हैं।
7: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
8: जी, सब लोग हमारे दोस्त ही है, फ्रेंड सारे लोग।
7: ओके, तो गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
8: जी।

0: हेलो, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: ग्वालियर सुंदरपुर।
0: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: ठीक है, आपका बताइए।
0: जी मेरा भी ठीक है।
1: भगवान बड़ी फुर्सत से नहीं गाँव का।
0: हाँ हाँ, और गाना किसी को
1: सुनिए। ये गाना जी जी अमन आशीष और अधीर।
0: तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 एफएम।
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
9: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
10: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार

0: की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: हेलो
4: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
3: हेलो, जयंती बोल रहे हैं क्या?
4: जी
3: हाँ, मैं गोपाल बोल रहा हूँ बंगाल से।
4: जी
3: कैसे है ना?
4: मैं अच्छी हूँ, आप बच्चे आप कैसे हैं?
3: आप अच्छे हैं ना? वर्षा कैसे हो रहा है? पानी?
4: जी
3: पानी हो रहा है ना? कि
4: नहीं, पानी तो नहीं हो रहा है इधर।
3: आपके घर में तो पानी हो रहा है? और दुर्गा पूजा आपको उधर में होता है ना?
4: हाँ, दुर्गा पूजा
3: होता है। दुर्गा पूजा का पंडाल तैयारी हो रहा है क्या?
4: जी बिल्कुल तैयारी हो रहा है, गोपालगंज पूरे तैयारी चल रहा है।
3: अच्छा अच्छा अच्छा, तो आज तो गाना सुनेंगे।
4: बता दीजिए कौन सा?
3: जुदाई मूवी का है, पुराना जुदाई है, जितेंद्र और रेखा। गाना तो है मार गई तेरी मेरी जुदाई, किशोर और आशा भोसले का गाना। तो वो पुराना जुदाई है, वो आज जुदाई है ना, अनिल कपूर का वो नहीं है। जुदाई जो है जितेंद्र और रेखा की, मार गई तेरी मेरी जुदाई, किशोर कुमार और आशा भोसले। गाना गान तो अच्छा अच्छा, गाना तो मैं सभी को डेडिकेट करूंगा, आप भी और आपको रीडिंग। हेलो हेलो माय चॉइस तो प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही आदमी सुनते हैं और प्रोग्राम भी अच्छे रहते हैं, सब गाना भी, सब रिक्वेस्ट भी सब अच्छे से करते हैं ना।
4: बस आप साथ में रहते हैं, जुड़ते हैं तो अच्छे से चल रहा है।
3: ऑफ कोर्स हम लोग के साथ में है आपके साथ, तो गाना तो और भी बढ़िया चल रहा है ना, तो प्रोग्राम भी और भी अच्छा होगा।
4: रेडियो रूम से मैं कॉल किया।
3: ओके थैंक।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4
0: एफएम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: कौन है? निर्मा जी है?
1: नहीं, मैं भारती बोल रही हूँ।
0: अच्छा भारती जी।
1: हाँ जी,
0: बहुत दिन के बाद भेज चुका।
1: हाँ हाँ
0: ठीक है। अच्छे है ना?
1: जी हम अच्छे हैं, आप बताइए, आप ठीक है?
0: हम भी ठीक है। और सब सुनाइए, कैसे है?
1: और सब तो बढ़िया है, बस आप लोग से बात हो रही है।
0: ठीक है,
1: तो
0: हमको गाना सुना दीजिए।
1: बता दीजिए कौन सा।
0: राही मनवा दुख के चिंता के साथी है, दुख तो अपना साथी है।
1: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: आप पहले आपको, उसके बाद पूरे टीम के जितना लोग है सबको।
1: अच्छा जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक है, तो सुना दीजिएगा।
1: ये आपको कल सुनने को मिलेगा।
0: अच्छा ठीक
1: है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
6: Now pick it up, pick it up.
7: Hello.
6: Now pick your phone up.
7: Hello.
6: Pick it up, pick it up.
7: Hello.
6: Now pick your phone up.
7: Hello.
8: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
9: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो,
11: सलाम अलैकुम।
10: हेलो,
11: सलाम अलैकुम मैम।
10: जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
11: क्या हुआ, खाना खा लिए?
10: जी जी, हम खा लिए, आप बताइए।
11: हम भी खा लिए। तो बताइए
10: जी, हम सब तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
11: उनको गाना सुनना है।
10: बिल्कुल बता दीजिए कौन सा?
11: हिंदी सॉन्ग है, आशिके कौन तुम आशिकी हो जिसकी शायर है कौन।
10: अच्छा, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
11: आज अजमेरी, रवीना, गुलाब शाह, सहीमा, सब वेलो और आपको भी रेडियो रिमझिम सुन रहे सभी श्रोता को।
10: आपका गाना सीख सकते हैं, रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्ते।
0: विकास कुमार
1: जी। जी
0: जिंदापुर। और बताइए आप कैसे हैं?
1: जी हम अच्छे हैं।
0: और मौसम कैसा है
1: इधर का? तो मौसम अभी बढ़िया बना हुआ है।
0: बारिश वरिश का मौसम नहीं बन रहा है?
1: नहीं अभी तो बारिश का मौसम नहीं बन रहा है, बस ऐसे ही हल्का कभी धूप कभी छांव और हवा हल्का हल्का चल रहा है।
0: अच्छा, लग रहा है कि भगवान धान को नहीं होने देंगे।
1: ये तो बात है,
0: धान का फसल नहीं होने देंगे।
1: तैयार होने का टाइम आ गया है,
0: अभी इनको बारिश होना चाहिए ना।
1: जी जी। वो जब होता है कि धान जब पूरा रेडी हो जाता है और काटने का टाइम होता है उस टाइम होता है।
0: उस टाइम होने से क्या फायदा है मैडम बताइए?
1: तो वही तो आजकल हो रहा है, जब होना चाहिए तब नहीं हो रहा है और होना चाहिए तभी हो रहा है।
0: सुबह सुबह सुबह सुबह मेरे पापा धान का फसल में पानी दे रहे थे बोरिंग से, तो मैं बोला कि पापा पानी नहीं हो रहा है क्या? बोल रहे हैं कि नहीं नहीं बेटा पानी नहीं हो रहा है, पानी होता तो मैं बोरिंग चलाता।
1: सही बात है।
0: और सब बताइए?
1: और सब ठीक है।
0: खाना वाना खा लिया है?
1: जी खाना हो गया हम लोगों का। तो बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनना है?
0: क्या चीज मैडम?
1: कौन सा गाना सुनना है आज?
0: आज खेसारी लाल का वही गाना सुनना है।
1: बता
0: दीजिए।
1: अच्छा अच्छा, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: ये गाना सबसे पहले आपको जितना रेडियो न्यूज सुनने वाला है सबको।
1: अच्छा जी।
0: एक मेरे दोस्त है वो गुरदीप।
1: बढ़िया है
0: जी।
1: तो आपका गाना प्ले करते हैं?
0: अच्छा ठीक है, ओके मैडम।
1: ओके रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। नमस्ते।
0: ठीक है ओके।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9056 59536 या 9056 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097065775।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
8: कैसी हैं?
7: जी मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
8: मैं भी ठीक हूँ। क्या हो रहा है?
7: जी आप सबसे बातें हो रही हैं।
8: आपका हो गया?
7: जी मेरा तो हो गया है, आपका हो गया?
8: जी मेरा भी हो गया।
7: तो क्या हो रहा है अभी?
8: अभी कुछ नहीं, आपके पास फोन लगा रहे थे।
7: अच्छा जी,
8: गाना सुना है?
7: बिल्कुल बता दीजिए।
8: ये गाना नहीं है, ये जो तेरी टायर की सनसन है।
7: जी जी है।
8: हाँ यही सुना है, पुराना सॉन्ग है।
7: जी पुराना है पर बहुत अच्छा है।
8: थोड़ा पूरा बजा दीजिएगा, पहली बात ये है।
7: जी
8: पूरा मतलब जितना है उसको बजा दीजिएगा।
7: अपना नाम भी बता दीजिएगा।
8: एंजल, गोपालगंज से।
7: अच्छा जी, आप पहली बार कॉल की है ना?
8: जी
7: जी जी
8: जी, तो बजा दीजिएगा, पूरा बजा दीजिएगा।
7: गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
8: जी आपको और सभी दोस्तों को।
7: जी बिल्कुल, तो गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
8: जी क्या
7: वालेकुम।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते,
1: कैसे हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: क्या हो रहा है अभी?
1: मैं तो रेडियो सुन रही थी।
0: अच्छा, देखा
1: रेडियो सुन रही थी, उसके बाद आपने गाना भी सुन ली थी। बस खाना खा रही थी और कॉल लगा रही थी।
0: अच्छा,
1: आपका खाना हो गया है? चलिए सब सुना दीजिए, गाना
0: बता दीजिए। कौन सा?
1: हम प्यार करने वाले, नया वाला सुना दीजिएगा।
0: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: जी मैम, आपको और टोनी जैन को और मनोरमा मैम को और अपनी दीदी को और रेडियो सुनने वाले सभी बेटे को और सभी आ रही
0: है। तो फिर आपका गाना प्ले करते हैं।
1: जी मैम,
0: सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
8: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
7: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-39-51-51 पे।
12: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
13: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
15: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
14: थैंक यू मैम, आप कैसी हैं मैम?
15: जी मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
14: हम भी ठीक हूँ, मस्त हूँ, बिंदास हूँ। आपकी दुआएं हैं, आपके आशीर्वाद है।
15: अच्छा जी, क्या हो रहा है अभी?
14: अभी तो आपके पास कॉल ही लगा रहे थे।
15: अच्छा जी, नाश्ता हो गया आपका?
14: नाश्ता नाश्ता हो गया है यार, सारे गाने होने वाला है, हो गया है नाश्ता।
15: अच्छा जी,
14: तो आज बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
16: ये गाना सुना दीजिएगा, तन्हाई की आलम में, बरसात के मौसम में, जिंदा हूँ तो जीने में दो, बरसात में पीने में दो।
14: जी जी, और गाना किसी को सुनाएंगे जी?
16: सबसे पहले तो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं।
14: जी जी,
16: आप सारे जितने रेडियो मंजिल है, जितने मतलब सुन रहे हैं, उन सभी को मतलब डेडिकेट करना चाहते हैं।
14: जी,
16: और सर बताइए मैम, आपका तबीयत वगैरह कैसा है?
14: जी, मेरा तबीयत वगैरह तो सही है, बस
16: अभी अच्छा है। तो स्टोरी चल रही है ना आपका?
14: जी, मेरी स्टोरी
16: ये चलती है ना अभी? चलिए, अब ये वॉइस योर चॉइस सबसे मतलब अच्छी कॉफी है मैम?
14: 12 बजे से 4 बजे तक चलता है।
16: 12 से 4
14: दिन में?
16: पहले हम लोग सुनते थे 1 के बीच चलता था।
14: नहीं, और सब ठीक है?
16: हाँ, हम लोग पूरा फैमिली अच्छा है, तंदुरुस्त है, मत है।
14: जी जी, मत होना चाहिए।
16: जी जी, आप तो हमारी मतलब जाना पहचाने वाले दोस्त लग रही हैं। पहले सुनते थे लोग, फिर आपसे थोड़ा सा मतलब बात करने का एक्सपीरियंस है। और सब बताइए, इतना मतलब बात हो जाता है ना तो आपका लाइन व्यस्त होता है?
14: जी जी, लाइन तो थोड़ा व्यस्त रहता ही है, कॉल आते रहते हैं ना, इसलिए। तो आपका गाना प्ले करते हैं? आपका गाना
16: प्ले कर दीजिएगा।
14: जी,
16: चलिए, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।
14: जी जी, रेडियो रिंग में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
16: थैंक यू मैम, बाय।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन
0: 90.4 FM में। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी, बोल रहा
1: हूँ। अच्छा जी, कैसे हैं आप?
0: बस बहुत मजे में मैडम।
1: जी जी, चलिए बढ़िया है। तो आप बता दीजिए कौन सा
0: गाना? मुझे फिल्म का नाम है दलाल।
1: और गाने की बोल?
0: गुटर गुटर दरिया पे सोना कबूतर।
1: अच्छा, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: आप कौन बोल रहे हैं मैडम?
1: मैं तो भारती बोल रही हूँ।
0: सबसे पहले आप सुनिए मैडम
1: जी,
0: और हमारे हेलो फार्मेसी का रेडियो ग्रुप है ऑल इंडिया का, उसमें गौतम राय बोले, गुलवंत कड़ू है, लोकेंद्र वर्मा है, टेकचंद अग्रवाल है, गंगाधर सावनकर जी है, छत्तीसगढ़ गोवंशी है, संतोष काटे है, रामपाल यादव है, और राजेंद्र गंगवार जी है, तुकाराम जाधव है, भरपूर है हमारे श्रोता मैडम।
1: जी जी, तो गाना आपका प्ले करते हैं।
0: ओके ओके ओके, थैंक यू मैडम।
1: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: ओके ओके।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता जो...

0: ज्वेलर्स BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
3: Now pick it up,
4: hello.
3: Now pick your phone up,
4: hello.
3: Pick it up,
4: hello.
3: Now pick your phone up,
4: hello.
5: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
6: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 92.4 एफएम में।
7: नमस्ते दीदी।
8: नमस्ते गणेश जी।
7: जी
8: क्या हाल चल बा?
7: ठीक
8: जी, हम लोग ठीक
7: बाजी।
8: यहाँ के बानी हूँ, अपना सामने बानी।
7: और सब बताएंगे
8: जी? और सब तो ठीक बा, बस रोवे लोग इनसे बात होता। अभी
7: गोपालगंज के मौसम कैसे बा?
8: गोपालगंज के तो नॉर्मल मौसम बावे, एकदम हवा भी बा और हल्का धूप और हल्का छांव भी बा।
9: क्या हाल बा?
8: हमारे हाल से चल ठीक बा, तो बताई।
9: और ठीक बाते।
8: तो गाना बताई रोवा, यहाँ के तो नहीं की बताओ, तो रोवे बता दी।
9: गाना हिंदी सब सुनने के बाद भाई बोला, सैया आ गई सारी दुनिया के तेरा बंधन बांध लिया। यही सुना
8: गाना तो बहुत अच्छा हुआ जी।
9: दीदी के सबसे पहले रघुआ के रही और मनोरमा दीदी के जितना सुनता है रघुआ लोग के, और हमने भी सुना सोनी दीदी स्पेशल मेरे को बीटू भैया के सुना एक बार, हम बारह नहीं जी की है।
8: अच्छा जी, चलिए बढ़िया बात।
7: और मनीष जी के भोर पार के तरी
8: के भोर, अच्छा यहाँ के नो।
9: हाँ भी सुन ली हाँ,
7: हमारे गाँव से बारह। घर मैंने घर के लगे घर पर। चलिए बढ़िया गाना सुना दे
8: जी। तो गाना प्ले करता नहीं, सुनते रही रेडियो 92.4 FM।
7: नमस्ते
8: नमस्ते।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: जी मैं आगा फसारी बोल रहा हूँ सीतापट्टी से।
0: जी क्या हाल चाल है आपका?
1: बहुत बढ़िया है, आप सुनिए आप कैसे हैं, क्या हाल चाल है?
0: जी जी हम सब भी ठीक है, अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग कर रही
1: हूँ। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना?
0: हाँ हाँ, तो आपसे बात ना रिकॉर्डिंग हो रही है तो
1: बिल्कुल सही बात है। तो फिर और सुनाए क्या चल रहा
0: है? सब तो बढ़िया है।
1: चलिए बढ़िया रहना चाहिए। मुझे एक गाना सुना दीजिएगा, फिल्म का नाम है आगे
0: जी, और गाने की बोल,
1: और गाने का बोल रहेगा तू मेरी जिंदगी है।
0: जी जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: जी आपको और सभी सुनने वाले दोस्तों को, जितने लोग हमको जानते हैं सभी लोग।
0: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: ओके, शुक्रिया।
0: सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
9: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
8: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
9: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
8: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
9: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
8: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
10: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
11: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
12: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
13: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
14: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
13: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
14: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
13: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
14: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
13: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
14: कॉल करें 7070 75 6300 या 7070 75 4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
15: Now pick it up,
16: hello.
15: Now pick your phone up,
16: hello.
15: Pick it up,
16: hello.
15: Now pick your phone up,
16: hello.
17: Break के
16: बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4।
18: धन्यवाद, आप तो जल्दी बोल रहे हैं गोपालगंज से।
17: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
18: जी अच्छा है, हम सोचे हैं और भी दोस्त बात करते हैं भोजपुरी में, तो आज हम भी बात कर ले भोजपुरी में, भारतीय में
17: भोजपुरी हम भी बोलेंगे।
18: हाँ तो मैम, और सब बताओ कैसन बा?
17: और सब तो बढ़िया बा।
18: और मैम हम बहुत ज्यादा कॉल लगनी तब लागल।
17: अच्छा तो हाँ, कॉल तो आवते बाबा एकदम से लगातार,
18: बहुत मेहनत भइल है।
17: इतना बार करेंगे?
18: हाँ अब सब कुछ।
17: अच्छा जी, इतना ज्यादा?
18: 3 मिनट में पहले से लगाते तो 3 मिनट बाद स्टार्ट भइल का। तो मैम भोजपुरी में बात करे हुए एगो हिंदी गाना के फरमाइश करें।
17: बता दी कौन सा गाना
18: और बताई की भोजपुरी में बात कैसा लगा था?
17: अच्छा लगा था।
18: सोचनी आप बहुत लोग सुन ले बानी की भारती मैम तो भोजपुरी में बात होला, सोचनी हम कर ले।
17: बिल्कुल सही,
18: अपन गोपालगंज से रहते हुए अरे चाहिए बिहार में मानी
17: बिहार में मानी और भोजपुरी ना बोलने का क्या फायदा?
18: हाँ अपने माटी के पहचान है। हम रखे गाना सुनाएंगे, गाना का बोल बा दिल कहता है चल उनसे मिल।
17: और गाना
18: सुनाए के बाद आपके और अनुरमा जी के मैम और वो सब सब सुझाव बाद लेकिन हमारे फरमाई पूरा ना कहू।
17: अच्छा कल
18: ना सोमवार की रात में हमारे एक सप्ताह कम्प्लीट हो गए हुए हम रेजिडेंट हिम के रोल नहीं।
17: सर की
18: शिकायत बा?
17: अच्छा कोनो बात ना, कभी कभी हो जाला
18: मैम। और वो देखे नहीं हम शो में योर वाइस योर चॉइस वाला में एक सप्ताह पे ही मतलब फरमाइस करे।
17: हाँ ये तो बात बिल्कुल सही।
18: ओके मैम, सब कोई नाम नहीं ले सकत। ऑल बाय, एडवांस में धन्यवाद और बाय बाय कहे हम काई कॉल लोग का।
17: जी रेडियो रेंज में कॉल करनी हो खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
18: ओके मैम, बाय बाय
17: बाय बाय।

0: हेलो
1: नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंचन 90.4 एफएम में।
1: धन्यवाद मैम। हम यासुद्दीन अहमद बोल रहे हैं चौराहे से।
0: जी जी, क्या हाल चाल है?
1: हमारे भाई का नाम है सुखल तुखारी, उन्हीं के भाई हम है यासुद्दीन अहमद।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: सब बढ़िया, आपने सुनाइए लो।
0: जी हम सब भी अच्छे हैं।
1: पूरा रेडियो टीम अच्छे है न?
0: जी जी, सब कोई
1: अच्छा। अच्छा के बात, थोड़ा ये गाना सुनवा सकती हो?
0: बिल्कुल सुनवा सकते हैं, बता दीजिए कौन सा।
1: एक जो कर्पूरा के नहीं है, क्या नाम हुआ उनका, पड़ता है बड़ी ठंडे वाला गाना सुनते हैं, मनान भाई है। उन हमको भी उन्हीं के एक्टिव से सुनने के हमको भी मन कर रहा है ठंडे वाला गाना। तो गाने से बोल है सरकारी लखतिया जाड़ा लगे, जड़े में बलमा प्यारा लगे। ठीक है
0: अच्छा।
1: जी मनान भाई के फरमाइश पर हमको भी मन कर दिया ठंडे वाला गाना सुनने का।
0: जी जी, चलिए बढ़िया है। तो गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
1: मनान भाई को सुनवाना चाहते हैं और हम अपना सुनवाना चाहते हैं और जितना रेडियो रिंचन में सुनने वाले सभी को और आप लोग को।
0: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिंचन 90.4 एफएम।
1: ठीक है, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: श्रोता लोगिन नमस्कार। रवा सभी सुनत बानी आपन बोली के पहचान यानी कि रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हम राउर दोस्त आज फिर से रेडियो रिमझिम पर हाजिर हो गल बानी लेके अपना माटी के सुगंध से सरोबोर कार्यक्रम भोजपुरी बिरहा। तो चलिए आज के कार्यक्रम के हमने क्या आगाज कर जाओ और सुनल जाओ ये बिरहा।

0: जितना भी भोजपुरिया भाई बाणन, भोजपुरी समझे वाला सब भाई के बहुत बहुत प्रणाम बा। हमके आशा ना विश्वास बा कि आप लोग जहाँ भी हो खब मस्त हो खब स्वस्थ हो खब हंसत हो खब। तमाम आप लोग कांड सुनीला हमरा आवाज में बहुत दुलार प्यार जौन दिला एक खाती हम आभारी बानी। एक और कांड प्रकाश में आइल बा और हैवानियत के भी हद हो गई बा। बाहर कलयुग और बाहर कलयुग के चरण शायद अभी कहल जाता कि कलयुग का पहला चरण चला था।
1: अरे वाह,
0: चौथा चरण में का हुई समझ में न आवत बा। बाहर जमाना और जमाना के लोग कितना नीच स्तर पर उतर चुकल बणन कुछ समझ में न आवत बा। ध्यान दिहन अगर मिजाज से ए बिरहा के सुनब आप लोग एक बार सोचे पर मजबूर हो खब कि दुनिया कहाँ जाता, ये दुनिया के लोग कहाँ जाता। चार लाइन कवि जी बड़ा अच्छा भाव दिहलन है भूमिका के लाइन में।

बात कहां से लिहल गई? आप लोग न्यूज में, सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखत हो, पढ़त हुई हैं। कहानी बड़ा भयावह बा, लेकिन कहां से उठल बा कहानी? नजम के लाइन दिहल गल का,

0: तनी बात समझ ला। राजस्थान के अंदर गांव का नाम गंगानगर, वहीं की ये कहानी है। एक मात्र 13 वर्ष की बेटी भगवान हरे कुखी पतई देलन, हर घर में बेटी है। वो 13 वर्ष की बिटिया कहीं अपने गई थी सखी से मिलने के लिए, और सखी से मिलकर आ रही थी, रास्ते में लेट हो गया, रात हो गई आने में। लेकिन उस लड़की के साथ हुआ क्या बाबू?
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
8: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
10: ठक ठक।
11: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
12: अच्छा मिला ही नहीं।
11: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
11: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
13: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
14: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
13: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
14: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
0: लेकिन उस लड़की के साथ हुआ क्या बाबू? तर्ज मा मास्टर बड़के दा का तर्ज कलाइन बा।
15: यह तरज हो कि रतिया में जब रजनी, रतिया में जब रजनी,

अपने घर से निकलती है बाबू गंगा नगर से, और विजयनगर उसकी कोई सखी थी उसी से मिलने के लिए जाती है। उधर से आने में उसे लेट हो गई, साधन नहीं मिल पा रहा था और रास्ते में लेट हो गया। लेकिन रास्ते में बाबू, उस रात को होता है क्या तरजबा, तनी से बढ़ के द मास्टर।

उस रात को जब कोई साधन नहीं मिला, बाबू रास्ते में एक ई रिक्शा चलाने वाला दिखाई पड़ा है। हाथ देती है, ई रिक्शा वाला रोक दिया, जिसका नाम राम बाबू शायद बताया गया सोशल मीडिया पर, दिखाया भी गया सोशल मीडिया पर। राम बाबू नामक वो रिक्शा चालक रोकता है, कहती है कि भैया कोई साधन नहीं मिल रहा है, हमें गंगानगर तक पहुंचा दो। कहता है कि ठीक है, आओ बैठ जाओ। लड़की को बैठा लिया, लेकिन देखें लड़की क्या जानती थी कि मेरे ऊपर विपत का पहाड़ टूटने वाला है। लड़की के का पतावा, मात्र उम्र 13 वर्ष बतावल गई, नाबालिग लड़की है। और राम बाबू नामक रिक्शा चालक उस लड़की को एक होटल तक ले जाता है, होटल पर ले जा करके और होटल के मालिक को बेच देता है। लड़की को जब बेच दिया, वहीं पर वो मालिक, होटल का मालिक और मैनेजर मिलकर के लड़की को उतार लिए, लेकिन उस लड़की के साथ मालिक मैनेजर और लोग करते हैं कि क्या बाबूजी, कभी भाव देते हैं।

कब कब हो सायावे।

उस लड़की को बाबू उस होटल के मालिक और मैनेजर मिल करके रेप किए, बलात्कार किए। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया और मीडिया से ये प्रमाण मिला कि उस लड़की के साथ होटल के मालिक और मैनेजर नहीं बल्कि 30 लोग लगभग बलात्कार करते रहे। हर घर में बेटी बहन है, एक 13 वरिष्ठ लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ 30 लोग बलात्कार करते हैं बाबू, लड़की कहां से बर्दाश्त कर पाए, बेहोश हो जाती थी, कभी कभी होश में रोते हुए आती थी तो साले सब दारू पिलाते थे। जबरन जबरदस्ती, दिन हो या रात हो, उस लड़की को दारू

0: हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9939365923।
6: प्रसाद क्लिनिक।
7: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
6: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
8: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
9: इसके बाद 22 जून 2026 22 जून 2026 को उस लड़की को छोड़ दिए लोग, और जब छोड़े हैं, किसी तरह से लड़की गिरती
10: पड़ती ने गंगा, गंडक और कोसी नदी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, गाद प्रबंधन के लिए अधिकारियों को दिए विशेष निर्देश। समस्तीपुर में एक नाबालिग छात्रा से दुर्व्यवहार के मामले में 4 अभियुक्त गिरफ्तार, विपक्ष का आरोप राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर। और मौसम विभाग ने भभुआ, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले में अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सेवा हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
11: सेवा, यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए, और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा, कितने ही

0: ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्यघर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है। श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सेवा की भावना देश की नीतियों में शामिल होती है तो ऐसी योजनाएं सामने आती हैं जिनसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में लोक सेवक आवास के संकल्प सभागार में गंगा, गंडक और कोसी नदी परियोजना की प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान कोसी नदी में बाढ़ की समस्या और नदियों में गाद प्रबंधन को लेकर विशेष कार्य निर्देश दिए गए हैं। बैठक में बक्सर भागलपुर 6 लेन ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना और पीरपैंती स्थित 2400 मेगावाट के ताप विद्युत उत्पादन इकाई से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर भी विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पीएम कुसुम योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सीएम राहत कोष में अपनी 1 माह की वेतन की राशि चेक के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपी है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में कई वरिष्ठ नेताओं को नई जिम्मेदारी दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नए नियुक्ति की घोषणा की। सौदान सिंह को राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। उनके पास बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का प्रभार रहेगा। भीखू भाई दलसानिया को बिहार भाजपा का प्रदेश महामंत्री संगठन बनाया गया है। अनंत नारायण मिश्र को भागलपुर, पूर्णिया और कोसी क्षेत्र के संगठक की जिम्मेदारी दी गई है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर 2 चुनाव आयुक्तों की असहमति को लेकर मीडिया के एक वर्ग में आई खबरों को लेकर विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने और SIR प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। निर्वाचन आयोग ने प्रेस नोट जारी कर कहा है कि आयोग के अंदर सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए जा रहे हैं। आयोग ने कहा है कि वैचारिक मतभेद का मतलब टकराव नहीं समझा जाना चाहिए। आयोग ने कहा है कि निर्वाचन आयोग के सभी सदस्य सुझाव देने के लिए अधिकृत हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि हाल के महीनों में 40 नई पहल शुरू की गई है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने चुनाव आयोग पर विपक्ष के आरोप को बेबुनियाद बताया है। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने चुनाव आयोग के फैसलों पर विवाद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि चुनाव आयुक्तों का सामूहिक निर्णय होता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में जो निर्णय लिए हैं वो सर्वमान्य हैं।
2: उनके बीच में क्या हुआ नहीं क्या हुआ मुझे तो नहीं मालूम। अब उनका बयान आया है तो इनको अग्रणी का मामला, मगर एक्चुअली मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उसी के अध्यक्षता में सारा कुछ निर्णय होता है। जो उनका निर्णय हुआ है वो सर्वमान्य है।
1: समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र में बूढ़ी गंडक नदी के बाईपास बांध के पास एक नाबालिग छात्रा से दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप ने बताया कि इस मामले में पुलिस की ओर से ही प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि लड़की की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है।
3: घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए सबसे पहले कल रात्रि में लगभग 11 बजे के बाद से अनवरत आज सुबह तक हम लोगों ने कार्रवाई करवाई। सबसे पहले जो वीडियो था उसका सत्यापन किया गया, घटना स्थल स्थापित किया गया। पुलिस पदाधिकारी के बयान पर ही कर्पूरी ग्राम थाना अंतर्गत कांड संख्या 117-26 जो BNS पॉक्सो और IT एक्ट संगत धाराओं में दर्ज किया। इस घटना में शामिल जो व्यक्ति है वो घटना स्थल के आसपास जगत सिंहपुर और बिजौलिया इन गांवों के अभियुक्त थे। रात्रि में ही उन लोगों की पहचान स्थापित की गई और जानकारी मिलने के 6 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हुए सभी 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।
1: समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी ने घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। श्रीमती चौधरी ने कहा कि अपराधियों को किसी भी स्तर पर संरक्षण नहीं दिया जा सकता।
4: ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, पर साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का और बिहार पुलिस का, समस्तीपुर पुलिस का धन्यवाद देना चाहेंगे कि प्रोएक्टिवली सभी अपराधियों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, अपराधियों को कोई संरक्षण नहीं है। ये मैसेज पूरा क्लियर है कि अगर महिला सुरक्षा में कहीं भी समझौता होता है तो अपराधियों को किसी भी कोने से हम लोग पकड़ करके निकालेंगे और उनको उनके गुनाहों की सजा जरूर देंगे।
1: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने जमुई और समस्तीपुर की घटना को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से साफ हो गया है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति समाप्त हो चुकी है।
5: देखिए, जमुई के बाद समस्तीपुर का जो वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, बेहद दुखद बात है, बहुत ही निंदनीय है, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन पहली बार भाजपा का कोई बिहार में मुख्यमंत्री बना है और कानून व्यवस्था का जनाजा जो है उठ गया है, लॉ एंड ऑर्डर बस नाम का रह गया है।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा और सुशासन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है छोटे व्यापारियों को पूंजी प्रदान करने, नए उद्यमियों को सहायता देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY अब देश के करोड़ों छोटे उद्यमियों तक पहुंच चुकी है। एक रिपोर्ट।
1: छोटे व्यापारियों को पूंजी प्रदान करने, नए उद्यमियों को सहायता देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY अब देश के करोड़ छोटे उद्यमियों तक पहुंच चुकी है। 8 अप्रैल 2026 तक योजना के तहत 57,79,00,000 से ज्यादा ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 40,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वितरित की जा चुकी है। योजना के तहत पात्र छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को बिना संपार्श्विक यानी कलेक्टर के संस्थागत ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
2: मुद्रा योजना से महिलाओं सहित उन वर्गों को छोटे छोटे बिजनेस के लिए लोन लेना आसान हुआ, जो कभी इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इन लोगों के पास बैंकों को देने के लिए कोई गारंटी नहीं होती, ऐसे में सरकार ने खुद उनकी गारंटी ली। मुद्रा योजना से अभी तक 24,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के लोन दिए जा चुके हैं।
1: योजना में महिला उद्यमियों की भागीदारी भी बड़ी है। आंकड़ों के मुताबिक कुल ऋण खातों में लगभग 2/3 ऋण महिलाओं को दिए गए हैं। 2024 में मुद्रा ऋण की अधिकतम सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। इसके लिए तरुण प्लस श्रेणी शुरू की गई, जो पहले का तरुण ऋण सफलतापूर्वक चुकाने वाले उद्यमियों के लिए है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में योजना के लाभार्थी कहते हैं कि मुद्रा लोन मिलने के बाद उन्होंने अपना काम आगे बढ़ाया और इससे उनके व्यवसाय में फायदा हुआ।
3: मेरा नाम प्रशांत सिंह हुआ, मैं आयरा इंटरप्राइजेस करके मेरा फर्म का नाम हुआ। यहाँ पे हम लोग मक्का का दलिया का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए बेगूसराय इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से लोन प्रपोजल सारी चीज के लिए मदद मिला। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से लेके बैंक को फॉरवर्ड करने तक का हमें बेनिफिट मिला। टोटल लोन हमारा इसमें 16.5 लाख का लोन हमने बैंक से लिया, जिसमें 6,40,000 के अप्रोक्स का सब्सिडी सरकार की तरफ से दिया गया हम लोग को। और आज के डेट में हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ टोटल 7 एम्प्लॉय हैं।
1: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार 2015 से 2018 के बीच मुद्रा योजना से जुड़े उद्यमियों में 1,12,00,000 शुद्ध अतिरिक्त रोजगार सृजित होने का अनुमान दर्ज किया गया था। यानी मुद्रा योजना के जरिए छोटे कारोबार को वित्तीय सहारा देने के साथ स्वरोजगार और उद्यमिता को भी बढ़ावा देने की कोशिश की गई। आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से विजय कुमार झा।
0: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि यह निर्णय यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से 28 सितंबर से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। मंत्रालय ने बैंकों को 25 सितंबर तक वेतन और अन्य देय भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि कर्मचारियों और अन्य पात्र लाभार्थियों को समय पर भुगतान मिल सके। जन स्वराज पार्टी ने विधान परिषद चुनाव के लिए 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने डॉक्टर अनुज सिंह को पटना स्नातक सीट से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने डॉक्टर विमोहन कुमार को तिरहुत स्नातक सीट और भूषण झा को तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया है। मानसूनी गतिविधि बढ़ने और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव के कारण प्रदेश के अधिकतर भागों में मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भभुआ, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है।
4: दिनांक 25 सितंबर को राज्य के पश्चिमी एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भभुआ, गोपालगंज एवं पश्चिम चंपारण जिलों के एक या दो स्थानों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: गया जी में कल से विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले की शुरुआत हो रही है। यह मेला 10 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान देश विदेश से आए श्रद्धालु विष्णुपद देवघाट सहित विभिन्न पिंड वेदियों और सरोवरों पर तर्पण तथा पिंड दान का अनुष्ठान करेंगे। जिला प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर सहरसा रोहतास समेत राज्य के विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सकों ने आज हड़ताल की। संघ ने सहरसा सदर अस्पताल के चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में हड़ताल बुलाई है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने बिहार लोक सेवा आयोग की सहायक विकास विस्तार अधिकारी ADEO परीक्षा में फर्जीवाड़े का सरगना सतीश कुमार यादव को पटना से गिरफ्तार कर लिया। उसे आज मुंगेर में प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में पेश किया गया। कटिहार की स्थानीय अदालत ने गैर इरादतन हत्या और SC/ST अत्याचार निवारण कानून के उल्लंघन के मामले में 3 अभियुक्तों को 6-6 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा की भावना से 4 करोड़ परिवारों को घर और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गंगा गंडक और कोसी नदी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। गाद प्रबंधन के लिए अधिकारियों को दिए विशेष निर्देश। समस्तीपुर में एक नाबालिग छात्रा से दुर्व्यवहार के मामले में 4 अभियुक्त गिरफ्तार। विपक्षी का आरोप, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर। और मौसम विभाग ने भभुआ गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले में अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

थाने तक एक जाती है और दरोगा जी से गुहार लगाती है, एक बात कहती है। क्या कहती है बाबू? लड़की रोत में कहत में, अस्त व्यस्त शरीर है, फटे हुए कपड़े हैं, लेकिन रो करके वो 13 वर्ष की मासूम बेटी उस दरोगा जी से गुहार लगा करके रोती है और कहती है, क्या

0: दरोगा जी जब उस लड़की की इस हाल को देखते हैं और उसकी बात को सुनते हैं, डॉक्टर के यहाँ ले जाकर के तुरंत हॉस्पिटल में उपचार कराने हेतु भर्ती किए, लेकिन बाबू लड़की रो करके कहती है कि मेरी माँ को बुला दीजिए दरोगा जी, मैं हो सकता है कि मैं बचू नहीं, हो सकता हम मर जाए, लेकिन मरे से पहले तनी माई से भेंट कर चाहता नहीं। घर पर खबर दिया गया बाबू, माँ बाप रोते बिलखते हॉस्पिटल में आए हैं और जब बेटी को देखते हैं, एक तरफ माँ गिर जाती है, एक तरफ पिता रो करके गिर जाता है, लेकिन उस समय उसकी माँ बेड पर उस बेटी के बैठी हुई है और बिटिया रो रही है, सामने बेड पर पड़ी है, उस समय रो करके अपनी माँ की सूरत देख करके और अपनी माँ से वो लड़की एक बात कहती है। क्या कहती है बाबू? लड़की रोत बे और माई से एक बात अपने कहत बे, माई बेड पर बैठल बे, बिटिया बेड पर पड़ल बे, पानी चढ़त बा, उपचार होत बा, लेकिन वो लड़की अपने माई से रोके का कहलस बाबू
1: कि कैसे के करी हम सब रवाये माई, कैसे के करी हम सब

एक तरफ माँ रो रही है बेड पर, एक तरफ बेटी रो रही है। एक बात और 13 बरिस की बिटिया कहत बे अपने मतारी से, का कहलस कि सुन सान मंगी।

रो करके बिटिया 13 बरस की बेटी कहती है कि माँ अब मैं इस दुनिया में रहने लायक नहीं हूँ, कौन सी मुंह लेकर के मैं गांव में जाऊंगी, मेरे मांग में कौन सिंदूर भरेगा, जिंदगी मेरा नरक हो गया माँ, इससे बेहतर है, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं, मैं मर जाना चाहती हूँ माँ। माई बेटी के बात सुन के रोत वे बाबू कई का सकत वे, लेकिन जब बेटी के इतना बात सुनन माई बाबू बगले में बाबू खड़ा हुन बेटी का बात सुनत हुन, ओ समय मतारी रो के एक बात कहलस का, ये माई रोत और बेटी से कहलस कि बेटी इसे काहे कहत अड़ो, का कहत पे माई

0: आखिर बाबू अब क्या पछतायो जब चिड़िया चुन गई खेत, जो होना था हो गया, लड़की बर्बाद हो गई, हॉस्पिटल में तड़पती रही, जिंदगी और मौत के बीच खेलती रही वो लड़की।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
1: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
0: जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही, लेकिन देखें कभी जी टेरी के भाव दिए हैं क्या, बढ़ के दम मास्टर।
7: की धारा थम गई, अब गंगा जमुना की धारा थम गई, गम में सिसक रहे थे सूरज, चांद, सितारा।
0: आज कहना है कभी का, सरकार विचार करे इस पर क्या, सरकार विचार करे इस पर क्या, यही फील गुड है भारत। आज हम कहते हैं कि हमारा भारत फील गुड में है, हमारा भारत जो है हिंदुस्तान आज डिजिटल हिंदुस्तान बन गया, हिंदुस्तान डिजिटल हो गया, गुड फील है भारत। तो कवि का कहना है कि सरकार विचार करे इस पर, क्या यही फील गुड है भारत। जनमानस रोड पे उतरेगा तो मच जाएगा महाभारत। लगभग 80 बेटी नित दिन, अरे लगभग 80 बेटी नित दिन दुष्कर्म की आग में जलती है। सब लोग मिलकर बतलाएं कि किस किस में गलती है। गंदी नाली के कीड़ों को यदि जल्द नहीं फांसी होगी, महिला आयोग ललकार कहे फूलन पुतली झांसी होगी। अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती है बाबू, अगर गद्दी पर बैठे लोग इस चीज को नहीं समझते हैं, तो अंत में वही नेपाल और बांग्लादेश की हालत होगी। जिस दिन पब्लिक रोड पर उतर जाएगी, उस दिन सरकार को गद्दी छोड़ करके भागना पड़ेगा, चाहे किसी की सरकार हो। सरकार से ही, जनता से ही, पब्लिक से ही सरकार बनती है। सरकार गद्दी पर बैठ जाती है तो भूल जाती है कि हमने इलेक्शन के वक्त क्या क्या वादा किया था। इलेक्शन में तो हजारों वादा कर देते हैं लोग, लेकिन वो दिन भूल जाते हैं। तो बात कवि जी के लिखे के पड़ल। अल्लाह कलाइन बड़ी के दा।

तनी बात समझला। ए बात के सुन के, ए बात के सुन के बाबू जिला एसपी हरिशंकर यादव जी आते हैं और साथ में रीजनल एसपी कैलाश दान आ रहे हैं। दोषी पकड़ाए, जो जो दोषी थे सोशल मीडिया पर आप लोग देखे होंगे, लोग पब्लिक 300 लोगों को मारते हुए पुलिस वालों के सामने थाने पर ले जाती है और जब पकड़ाए हैं सभी लोग ले जाकर के जेल के अंदर बंद किए, आज केस चलना शुरू हुआ। लेकिन वो लड़की जो 13 वर्ष की मासूम बेटी थी आखिर इस जंग को नहीं लड़ पाई बाबू। जो हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी मौत के बीच वो जूझ रही थी, 3-4 दिन बीतते बीतते उसी हॉस्पिटल में अपना अंतिम दम को तोड़ देती है। एक माँ की गोद बेटी के लिए सुना हो गया, एक पिता का गोद बेटी के लिए सुना हो गया बाबू। बेटी इस दुनिया को छोड़कर चल बसी, लेकिन आज वो कातिल जेल के अंदर बंद हैं, केस चल रहा है। हिंदुस्तान के लोग जो भी इस घटना को सुनते हैं, सभी लोगों की मुंह से आवाज आती है कि उन दरिंदों को की तो फांसी होना चाहिए, नहीं तो उम्र कैद होना चाहिए। कबीर जी गाना के अंतिम लाइन में दिहलन है, का दिहलन है बड़ी के दमाश्तर,

आखिर जब तक सरकार इस पर नहीं विचार करेगी बाबू, घटना आए दिन रोज इसी तरह होगा। आज दूसरे पर है, लेकिन जिस पर पड़ता है वही जानता है। सबके घर में बहन बेटी है, बहन बेटियों का सुरक्षा अब करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आज आए दिन जो घटना सुनने को मिल रहा है इसी तरह से होता रहेगा और सरकार आंख बंद करके गद्दी पर बैठी रहेगी। तो हम लोगों को विचार करना है कि अब क्या करना चाहिए। हम लोगों को बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, तब जाकर के सरकार भी बदलेगी। गाना के अंतिम प्रमाण रहा।

कथन करे कवि अनुज लाल निसार मितवा की तैयारी। अरे गंगा जमुना की धारा थम गई, गाते ओम प्रकाश सभी।

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोता लोगिन ई रहल रेडियो रिमझिम पर आज के बिरहा। हमरा पूरा उम्मीद बा कि आज के बिरहा रवा सभी के बहुते अच्छा लागल होई। तो अगर रवा सभी चाहत बानी ए पर अपन सुझाव या शिकायत हमनी तक पहुंचावे के तो हमनी के व्हाट्सएप नंबर बा 98527888291 और ईमेल आईडी बा radiorimjhim@gmail.com और हमनी के खत के पता बा रेडियो रिमझिम बंजारी मोर गोपालगंज पिन कोड 84 14 28। रोज सभी कोनो भी माध्यम से अपन सुझाव या शिकायत हमनी के लगे भेज सकत बानी। तो चलिए अब हमके जाए की दी इजाजत, नमस्कार और इस सुनत रहे अपना बोली के पहचान रेडियो रिमझिम 90.4।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
6: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
7: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
6: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
7: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
6: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
7: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
6: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
7: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH27 चैन पट्टी गोपालगंज।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
8: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH27 गोपालगंज।
8: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
8: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
8: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक हर शनिवार समय 10:00 से 2:00 PM तक।
6: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
11: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
12: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा, मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
8: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
10: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।

0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन व्यक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में इन विभागों में रिक्तियां उपलब्ध हैं: बौद्ध अध्ययन सह प्रोफेसर 1 पद, सहायक प्रोफेसर 2 पद, हिंदू अध्ययन सह प्रोफेसर 1 पद, सहायक प्रोफेसर 2 पद, दर्शन शास्त्र 1 पद, प्रोफेसर सह प्रोफेसर 1 और सहायक प्रोफेसर 2 पद, संस्कृत प्रोफेसर सह प्रोफेसर 1-1 पद तथा सहायक प्रोफेसर 2 पद, डेटा विज्ञान और AI प्रोफेसर 1 पद, सह प्रोफेसर 1 पद तथा सहायक प्रोफेसर भी 1 पद, विज्ञान टेक और नीति अध्ययन विभाग में प्रोफेसर का 1 तथा सह प्रोफेसर का भी 1 ही पद उपलब्ध है। शैक्षिक योग्यता, वेतनमान, तैनाती के स्थान, आरक्षण आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 12 सितंबर 2026 से 18 सितंबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र अथवा नालंदा विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.nalandauniv.edu.in। वेबसाइट का पता एक बार फिर सुनिए: www.nalandauniv.edu.in। भारत मौसम विज्ञान विभाग उप महानिदेशक प्रशासन के 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाएगी। इस पद के लिए पात्रता शर्तों और अन्य विवरणों के लिए कृपया देखिए भारत मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइट www.mausam.in।

0: imd.gov.in। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। कुल सचिव एक पद, अधीक्षण अभियंता और तकनीकी अधिकारी भी एक एक पद। विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए आईआईटी गोवा की वेबसाइट iitgoa.ac.in/careers-iitgoa। मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज में प्रतिनियुक्ति आधार पर सीधी भर्ती द्वारा संस्थान के निदेशक पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं हैं इतिहास सामाजिक विज्ञान में डॉक्टरेट डिग्री, इतिहास सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में किसी भी बड़े एशियाई देश से संबंधित उच्च योग्यता का प्रकाशित अनुसंधान कार्य, कम से कम 5 वर्ष के लिए एक जिम्मेदार पद पर प्रशासनिक अनुभव सहित कम से कम 10 वर्ष का पढ़ाने और अनुसंधान का अनुभव। आवेदन के साथ प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की सभी प्रतियां निदेशक मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज कोलकाता के पास रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 3 हफ्ते के भीतर पहुंच जाने चाहिए। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
2: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
4: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
5: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
4: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
6: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
4: कॉल करें 85070-32042 पे।
7: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
8: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
7: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
8: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
7: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
11: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास जादवपुर में, कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
11: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
12: नन्ना मुन्ना लाही हूं, देश का सिपाही हूं।
13: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
12: हां कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
13: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
12: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
14: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
15: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
14: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
15: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
14: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
15: जानकारी है तो कॉल करें 6252 62112 पे।
14: दिल

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
11: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
12: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
11: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
13: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
14: 73,581 पर हुआ बंद। जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशिबिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स्ड स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
15: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
14: श्री मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित होनी चाहिए।
15: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
14: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात मिशन कर्मयोगी की।
16: मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों पर आधारित और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाली भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों की क्षमता और कौशल को मजबूत करना तथा सिविल सेवाओं को अधिक नागरिक केंद्रित बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत सिविल सेवाओं को नियम आधारित व्यवस्था से भूमिका आधारित व्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सही व्यक्ति को सही समय पर सही जिम्मेदारी देना है। मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT प्लेटफॉर्म पर 1,70,00,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों, कार्यों और व्यवहार संबंधी क्षमताओं से जुड़े 6,500 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े 200 से अधिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है।
15: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे।
16: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान ने कहा कि मिशन कर्मयोगी की स्थापना विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ हासिल करने की दृष्टि से की गई है।
17: विकसित भारत का जो एक आशावादी हमारे लक्ष्य है, उनको समय से प्राप्त करना, गुणवत्ता के साथ प्राप्त करना और सबसे अहम बात जो हमारे नागरिक हैं उनको गुणवत्ता युक्त सर्विसेज इस तरह से हमारे लोक सेवक प्रदान करें।
16: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए iGOT प्लेटफॉर्म पर हर वर्ष निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी है। इन पाठ्यक्रमों को उनकी वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
14: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
18: ध्यान दें। आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
19: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।
20: A good book opens a window of ideas, history and experience. It invites us to think, not only to think, to question. Not only to question, to understand and sometimes to look at familiar subjects from a new perspective.
19: प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजासुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है।
21: युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है और हमें भी खुद को इसके अनुरूप ढालना होगा। इसके लिए हमारी औद्योगिक व्यवस्था, खरीद प्रक्रिया और कार्य प्रणाली में भी तेजी से बदलाव जरूरी है, ताकि हम बदलती युद्ध परिस्थितियों के साथ कदम मिला सकें।
19: भारत ने मजबूत व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाने के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक और आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श में भाग लिया। इस दौरान आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की चल रही समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम निर्वाचन आयोग को किसी भी समय जब वो उचित समझे SIR आयोजित करने का स्पष्ट अधिकार देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। एक रिपोर्ट।
0: गहरे डिप्रेशन ने कोरापुट, गजपति, मलकनगिरी, गंजाम, नवरंगपुर और रायगढ़ जिलों को प्रभावित किया है, जिससे 37 ब्लॉक, 127 ग्राम पंचायतें और 273 ग्राम प्रभावित हुए हैं। 20 वाड़े वाले 5 शहरी इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि 8,082 लोगों को जोखिम वाले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सरकार ने 2400 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम चालू कर दिए हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स NDRF और फायर सर्विस के टीमों को तैनात किया गया है और राहत सामग्री का इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग ने कल व परसों भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
19: इस बीच मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1248 अंक लुढ़ककर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 384 अंक फिसलकर 23,063 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
19: आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने सहित कई कारणों से शेयर बाजार में गिरावट आई है।
22: आज स्टॉक मार्केट में जो हमने गिरावट देखा है, उसके कुछ प्रमुख कारण ऐसे हैं। सबसे पहले जो कच्चे तेल के दाम फिर बढ़े, दूसरा है बॉन्ड्स की जो यील्ड्स हैं उसमें बढ़ोतरी की वजह से एक नर्वसनेस आई। पर सबसे महत्वपूर्ण जो घटना आज हुई है वो IRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है बीमा क्षेत्र में, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला है जिसमें वितरण में जो कमीशन होते हैं उसमें कटौती के बारे में बात की है।
19: और अब जापान एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
23: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रश्मिना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
24: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
23: निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने स्कीट मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में परवीन ने 65 किलो के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्क्वाश और टेबल टेनिस के अलग अलग वर्ग में खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
19: जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया है। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशी बिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
25: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
26: क्या
3: कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन।
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
3: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
13: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
5: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
8: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
12: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
3: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
26: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
26: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
26: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89733।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
11: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
15: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
9: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
15: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
15: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
9: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
15: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
9: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
17: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
27: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
28: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
17: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
29: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
30: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-48-652 पे।
9: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
15: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
9: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी ने कृषि योजनाओं को लेकर की समीक्षा। अपर समाहर्ता ने स्वास्थ्य सेवाओं का किया निरीक्षण। कमजोर विद्यार्थी अब लाइव कक्षा से करेंगे पढ़ाई। पायलट बनकर दीपंकर सिंह ने जिले का नाम किया रोशन। बेलवनवा मंदिर के महंत पर केस हुआ दर्ज। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिले में कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रगति एवं खरीफ फसल की स्थिति को लेकर आज जिलाधिकारी ने कृषि विभाग के संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की। योजनाओं की प्रगति, डिजिटल कॉर्प सर्वे और जिले में उर्वरक की उपलब्धता की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान पशुपालन पदाधिकारी, मत्स्य पदाधिकारी और सहायक निदेशक पौधा संरक्षण सहित जिला उद्योग केंद्र के पदाधिकारी और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक भी उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान बताया गया कि खरीफ 2026 के अंतर्गत विभिन्न फसलों का अक्षादन 100% पूरा किया जा चुका है। वहीं किसानों के खेतों एवं फसलों से संबंधित आंकड़ों के संकलन के लिए चल रहे डिजिटल क्रॉप सर्वे की भी समीक्षा की गई। इस दौरान जिले में कुल 9,23,400 सर्वे प्लॉट निर्धारित किए गए हैं। इसके विरुद्ध अब तक 4,66,338 सर्वे पूरा किया जा चुका है। जिला पदाधिकारी ने शेष सर्वे कार्य में तेजी लाने का निर्देश देते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा करने को कहा। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति एवं HIV नियंत्रण से संबंधित गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे ने ICTC एवं ART केंद्र का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र में कार्यरत सभी कर्मचारी उपस्थित पाए गए। उन्होंने केंद्र पर संचालित विभिन्न गतिविधियों एवं उपलब्ध सेवाओं की भी जानकारी ली और कार्यों के प्रभावी संचालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस निरीक्षण के दौरान जिले में संचालित समेकित स्वास्थ्य शिविर की भी समीक्षा की गई और अधिकारियों ने शिविर के माध्यम से लक्षित लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने तथा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर अब तक की प्रगति की भी समीक्षा की। आज जिलाधिकारी समीर सौरभ ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इसमें शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं विद्यालयों से जुड़े कार्यों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में उप विकास आयुक्त गौरव कुमार और जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडे सहित तमाम संबंधित पदाधिकारीगण मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की कमी है, वहां लाइव कक्षा का संचालन कराते हुए बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित करें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। साथ ही बेहतर शैक्षणिक कार्य करने वाले शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को चिन्हित कर उन्हें प्रोत्साहित करने का भी निर्देश दिया गया। तो वहीं जर्जर भवनों की मरम्मत को लेकर भी उन्होंने आवश्यक निर्देश दिया। साथ ही विद्यालय में शौचालय अथवा दरवाजे जो जर्जर स्थिति में है, उन्हें भी अविलंब मरम्मत करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया, जिसका जिलाधिकारी ने जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। गोपालगंज जिले के लाल और हथुआ प्रखंड के जिगना गांव निवासी दीपांकर सिंह ने बड़ी सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। दीपांकर सिंह इंडिगो एयरलाइंस में पायलट बन गए हैं, जिससे उनके पूरे क्षेत्र और इलाके में खुशी की लहर है। उनके जानने वाले लोगों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी है। दीपांकर के पिता उमेंद्र सिंह, जो पेशे से एक शिक्षक है, उन्होंने अपने बेटे की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनके बेटे ने न सिर्फ परिवार का बल्कि पूरे बिहार का मान बढ़ाया है। इनकी सफलता पर गांव और आसपास के इलाकों में जश्न का माहौल है। कुचायकोट के बेलबनवा हनुमान मंदिर के महंत का एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद पूरे इलाके में उनके खिलाफ आक्रोश देखा गया। मंदिर पर पहुंचकर भी लोगों ने आक्रोश और विरोध प्रदर्शन किया। मंदिर से महंत को हटाने की मांग की गई, जिस पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और मंदिर को प्रशासन ने अपने कब्जे में लेकर अपने स्तर से पूजा राग इत्यादि की प्रक्रिया शुरू करा दी है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर वायरल वीडियो के
आधार की जांच करते हुए उसे सत्य पाया गया और इसमें बेलबनवा हनुमान मंदिर के वर्तमान महंत ब्रिजमोहन दास पर केस दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद कुचायकोट थाने में केस दर्ज कर अब आरोपी पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित इस वीडियो में जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उससे धार्मिक भावनाओं, महिलाओं के सम्मान एवं गरिमा तथा सामाजिक सौहार्द और विधि व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस आवश्यक कदम उठाते हुए ठोस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने जनता से भी अपील किया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी आपत्तिजनक, भ्रामक अथवा संवेदनशील वीडियो या सामग्री को बिना सत्यापन के साझा या प्रसारित ना करें। इस प्रकार की सामग्री के प्रसार से सामाजिक सौहार्द और विधि व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है। ऐसे मामलों में गोपालगंज पुलिस नियमानुसार विधिक कार्रवाई करेगी। उत्पाद विभाग की पुलिस ने कटिया बाईपास रोड पर कार्रवाई करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी नीरज कुमार यादव कटिया के कतालपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके पास से 34 लीटर से अधिक शराब मिली है और इसकी मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त किया है। वहीं कररिया जीन बाबा के पास नगर थाना क्षेत्र में भी उत्पाद पुलिस ने छापेमारी कर बिट्टू कुमार को शराब के साथ गिरफ्तार किया। यह माझागढ़ सुधा शाह के टोला का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके ई रिक्शा गाड़ी से 355 पीस बंटी बबली शराब, जो 71 लीटर से अधिक बताई जा रही है, पुलिस ने जब्त किया है। सहरसा के डॉक्टर पर कार्रवाई के विरोध में पूरे बिहार के डॉक्टरों ने आज कार्यों का बहिष्कार किया। इस दौरान सरकारी हॉस्पिटलों में ओपीडी का बहिष्कार किया गया, हालांकि इमरजेंसी सेवा जारी रखी गई। नगर थाना क्षेत्र के आरआर मोड़ के पास NH27 पर एक अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि ड्राइवर के सोने से यह हादसा हो गया। मौके पर पहुंची 112 की पुलिस ने दोनों घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां इनका इलाज चल रहा है। कटिया में पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक पिकअप गाड़ी से 5 मवेशी को जब्त कर कुख्यात तस्कर पिंटू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह यूपी के बनकटा से जमुना बाजार की ओर मवेशियों को तस्करी के लिए ला रहा था, तभी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना और उसको निष्पादित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इधर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर माझा थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान गोविंदापुर गांव में छापेमारी करते हुए 192 ग्राम गांजा जैसा मादक पदार्थ को जब्त किया है और एक आरोपी को पुलिस ने

0: राज जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 80 लीटर शराब के साथ एक मोटरसाइकिल को कटिया पुलिस ने भी जब्त किया है। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तस्कर फरार बताया जा रहा है। पुलिस की यह कार्रवाई करकटहा नहर के पास की गई है। कृषि अनुसंधान परिषद पटना के तरफ से संस्थान के 3 वैज्ञानिकों की बहुविषयक टीम डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर रोहन कुमार रमन एवं डॉक्टर राकेश कुमार ने 22 सितंबर को सारण और वैशाली जिलों में बाढ़ प्रभावित गांवों का क्षेत्रीय दौरा किया था। टीम ने गंगा एवं गंडक नदियों के बाढ़ के पानी से कृषि फसलों, बागवानी फसलों तथा कुछ हद तक पशुधन पर पड़े प्रभाव का प्रारंभिक आकलन किया। इस दौरान हसनपुर, गोपालपुर, रसूलपुर गाँव में धान, मक्का, भिंडी, नेनुआ, लौकी की फसलों का भी अवलोकन किया गया। स्काउट गाइड के आज 10 कैडेट्स पटना में प्रशिक्षण के लिए रवाना हुए। इसकी जानकारी स्काउट एंड गाइड के संगठन आयुक्त रवि कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि जिले के चयनित 10 स्काउट गाइड के छात्र पटना में आपदा से बचाव की जानकारी लेने के लिए रवाना हो गए हैं। ये सभी छात्र, जिसमें आदित्य कुमार गिरी, अनुज कुमार, संदीप कुमार, विश्वजीत कुमार, संदीप कुमार और अली अख्तर, अभिषेक कुमार, अफरीना खातून, खुशबू कुमारी इत्यादि बच्चे गोपालगंज ट्रेन से पटना के लिए रवाना हुए। ये बच्चे आपदा की घड़ी में लोगों की मदद करने का जज्बा लेकर पटना में ट्रेनिंग के लिए गए हैं। स्काउट गाइड के यह बच्चे आपदा मित्र का विशेष प्रशिक्षण लेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्हें बाढ़, भूकंप जैसी आपदाओं के दौरान जरूरतमंद लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इन बच्चों को तैयार किया जाएगा और आपदा मित्र का प्रशिक्षण देकर इन्हें प्रशस्ति पत्र इत्यादि भी दिया जाएगा। लद्दाख में हथुआ के रहने वाले एक युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। मृतक का नाम मुकेश यादव बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लद्दाख में रोजी रोटी कमाने के लिए लद्दाख गए थे और वहां इनका तबीयत खराब हो गया और इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजन मुकेश यादव के शव को मंगाने के लिए लगे हुए हैं। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी ने कृषि योजनाओं को लेकर की समीक्षा। अपर समाहर्ता ने स्वास्थ्य सेवाओं का किया निरीक्षण। कमजोर विद्यार्थी अब लाइव कक्षा से करेंगे पढ़ाई। पायलट बनकर दीपंकर सिंह ने जिले का नाम किया रोशन। बेलवनवा मंदिर के महंत पर केस हुआ दर्ज। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच हाजिर हो चुका हूं। मैं सोनू शो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रमझिम 94.4 FM पे समय 9:33 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो आप सबके बीच ये बातें हर रोज़ बताई जाती है कि पुराने गाने के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना है। तो यदि आप पुराने गाने पसंद करते हैं और किसी को सुनवाना चाहते हैं या खुद सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल फरमा सकते हैं। इसके लिए नंबर है 72 77 16 65 96। कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तब तक अपना भी कार्यक्रम शुरू करें मैसेज टाइप करने का, और मैसेज में अपना नाम, गाने का नाम, कहां से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम बताना है, और जिसे मैसेज हमारे पास पहुंचेगा वैसे आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। यहाँ पे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हम भी आपसे जुड़ गए हैं सोनू बाबू, कैसे हैं, हाजिरी तो बनता है ताकि आपकी हिट प्रस्तुति और प्रिय श्रोताओं की बातों को सुनने को मिलता है। प्रोग्राम सुपर हिट है, श्रोताओं का ये आए दिन रूस है, पर समय कम है तो हमारे आदरणीय कृपा सर जी से कृपा करके समय पर विस्तार करने की कृपा की जाए तो बिल्कुल कोशिश रहेगा। फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और वीरेंद्र गुप्ता के करियर सोल नेपाल बॉर्डर से भैया भेजे हुए हैं। आगे मैसेज हमारे पास अभी नहीं पहुंचे हुए, तो जो भी श्रोतागण इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के फरमाइश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुछ मैसेज पहुँचे और लिखा गया है कि सोनू भाई नमस्कार और सभी को नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं दिलीप राम दिल्ली से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो मुझे सॉन्ग सुनना है, बिल्कुल सुनाएंगे। फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और इस मैसेज को पहुंचाने वाले अपना नाम पता कुछ नहीं दिए हुए, तो आप जब भी मैसेज करें तो अपना नाम पता के साथ मैसेज करें ताकि आपकी पहचान हो सके। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अपनी तरफ से एक प्यारे से सॉन्ग को प्ले करते हैं और सुनते हैं। यदि आप अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल फरमाएं, हम आपकी फरमाइश प्ले करेंगे और सबके साथ एंजॉय करेंगे। फिलहाल अपनी तरफ से प्यारा सा सॉन्ग प्ले करते हैं।

रेडियो एमसीएम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 7277-1665-96। ध्यान रखना कि जब भी गाने की फरमाइश करें तो आप पुराने गाने की फरमाइश करें, ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। ओल्ड इज़ गोल्ड या 90s की गाने फरमाते हैं, तो आपकी फरमाइश बिल्कुल पूरा की जाएगी। और यहाँ पे आगे मैसेज देखा जाए, आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि हेलो सर, मैं सन्नी पटेल, मैं भी जुड़ चुका हूँ, सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग की फरमाइश करते हैं, हद से भी ज़्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, और गाने की आपकी फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हमें सॉन्ग सुनना है, सुना सकते हैं क्या? बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा, यदि आपके द्वारा गाने फरमाए जाते हैं तो। और एक के कॉल आ रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं उस नंबर पे आप टेक्स्ट मैसेज करें, बस गाने का नाम, अपना नाम, कहाँ से मैसेज कर रहे हैं इतना ही बता दें, हम आपकी फरमाइश बिल्कुल पूरा करेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, और जो भी श्रोतागण आज मैसेज करेंगे उनकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश रहेगी, क्योंकि आज सीटें खाली हैं अभी तक, तो आप सुनना चाहते हैं तो फिर आप अभी फरमाइश करें और अभी अपने गाने के साथ इंजॉय करें।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एम जीम 90.4 एफएम पे। शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक, जिसमें अपना नाम, गाने का नाम, कहाँ से मैसेज कर रहे हैं, अपने गाँव का नाम बताना है और परिचय के साथ आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। तो एक हमारे पास मैसेज अभी पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय मेरा गाना सुनना है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी प्यारी है ओ माँ। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, लेकिन आप कौन कहां से मैसेज को पहुंचा रहे हैं ये भी तो बताएं, ताकि हमें पता चले कि हमारी आवाज़ कहां तक पहुँच रही है। और इस मैसेज में अभी टाइपिंग हो रहे हैं और लिखा गया है कि नाम श्याम गोपाल गेंद से। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। और जो भी श्रोतागण इस कार्यक्रम में अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं वो फरमा सकते हैं और सुन सकते हैं। फिलहाल हम गाने प्ले करते हैं और सुनते हैं।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6750।
3: प्रसाद क्लिनिक।
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470434468 पे।
9: थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजी 90.4 FM पे। सो चल रहा है SMS फरमाइश का और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचे, कुछ लिखा गया है कि थैंक यू सर सॉन्ग प्ले करने के लिए, मैं सन्नी पटेल, आपको धन्यवाद है रेडियो एमजी सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि थैंक्स सर, आपको धन्यवाद है रेडियो एमजी सुनने के लिए, श्याम जी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सही बात है, नहीं तो आगे एक आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सही बात है, नहीं तो आगे एक कहीं नज़र अंदाज कर गए तो आप भी डिप्रेशन में चले जाएंगे। ज्ञानवर्धक सॉन्ग रहा और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया, बात सही है, और हद से भी ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करना चाहिए, नहीं तो दीपक एंड जेलर जी की तरह शुक्रिया अदा करते रहेंगे हर रोज। और आगे लोग पागल कहने लगेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो भाई गाना सुना दीजिए, बिल्कुल सुनाएंगे, फ़िलहाल आपका मैसेज हमारे पास पहुंच चुका है, थोड़ा सा सब्र की ज़रूरत है, एक एक करके सबकी फरमाइश पूरी हो रही है, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे दिलीप राम जी। आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे मैसेज पहुँचाए हुए हैं, लिखे हुए हैं कि सुनो भैया नमस्ते, कैसे हैं, मैं सिद्धार्थ बरौली से और मुझे गाना सुनना है सुरबीर मूवी से,

हमको ना भुलाना कभी। डेडिकेट बाई आपको एंड भारती मैम, मनोरमा मैम एंड ऑल रेडियो रिमझिम लिसनर्स को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

कमल के गाने सुन रहे हैं हम सब रेडियो रूम 89.4 FM, हमको ना भुलाना कभी, हमको ना भुलाना। और सिद्धार्थ जी की फरमाइश, आगे मैसेज देखा जाए और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि नाम प्रीति, एड्रेस मोतिहारी से, शौंग वादिये इश्क से आया है मेरा सहजाद। बिल्कुल प्यारे गाने की फरमाइश है आपके द्वारा, आपकी फरमाइश भी पूरी की जाएगी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि तोड़ेंगे गुरूर इश्क का हम इस कदर सुधर जाएंगे, तोड़ेंगे गुरूर इश्क का हम इस कदर सुधर जाएंगे, रास्ते में खड़ी होगी मोहब्बत, हम सामने से गुजर जाएंगे, तरस जाएंगे उनकी निगाहें एक आखिरी झलक को हमारी, हम हंस कर देखेंगे उन्हें पर पहचानने से मुकर जाएंगे। सुनो भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ रोहित देहरादून से, और गाना सुनना है, गाने का बोले छमक चल लो, जरा धीरे चल लो, चलो वरना जाओगी फिसल, लचक जाएगी पतली कमर। ओहो, चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे और आपके भी गाने सुना जाएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे चलिए आफी के गाने हम प्ले कर देते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने। हम सब रेडियो 89.4 FM पे, रोहित जी आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ।

कमाल के सॉन्ग रेडियो रेम छीम 94 एफएम पे सुन रहे हम सब। रेडियो रेम छीम पे कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का, और यहाँ पे आगे प्रीति जी के तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है और गाने की फरमाइश है वादी इस किसे आया है मेरा सहजादा, और मोतिहारी से मैसेज पहुँचा है। चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं

log on and subscribe to www.youtube.com/linux. रेडियम सेम नेट फॉर 4 FM सुन रहे हैं आप सब और काफ़ी प्यारा शंग वाली इस किस्से आया है मेरा शहजादा। और आगे मैसेज पहुंचे हुए हैं तो देखा जाए आगे मैसेज क्या कहा जा रहा है। और लिखा गया है कि सुनो भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाना प्ले करने के लिए, आपको भी धन्यवाद है रेडियो रमछम सुनने के लिए। रोहित जी आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि तेरे ही प्यार से मेरा ये दिल धड़कता है, तेरे ही नाम से मेरा ये दिल बहकता है, मेरे इस दिल की बेवफाई को तो देखो, मेरा है पर तेरे लिए ही धड़कता है। सुनो भाई नमस्कार, चमक चलो सुपर सॉन्ग, अभी भी बारिश हो रही है का? बिल्कुल बारिश तो हो रही है, सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है और हमें लगता है कि रात भर भी होगी। और मौसम बारिशों वाला हो गया है फिलहाल। आगे मिसेज पहुंचा हुआ है और आगे लिखा गया है कि सर जी मैं भी जुड़ गया हूँ, बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ, गाने के फरमाइश तो नहीं कर पाएंगे पूरी क्योंकि समाप्ति का समय जो है हो गए हैं और एक्स्ट्रा दो गाने हम आप सभी के बीच प्ले करेंगे और क्योंकि आज थोड़े लेट से स्टार्टिंग हुए हैं। आगे मैसेज पहुँचे हुए हैं और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पर मैसेज पहुँचाए हुए हैं दिलीप जी और गाने की फरमाइश करते हैं, तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हुए एंजॉय करते हैं हम सभी रेडियो रमछिम 90.4 FM पे।

प्लेटोरियम जिम नेट फंड 4FM सुन रहे हैं आप सब, और हम सभी इंजॉय कर रहे हैं ओल्ड इज गोल्ड गाने के साथ। दिलीप जी की फरमाइश लिखा गया है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपको सुना भैया, नमस्कार। चलिए आपको भी नमस्कार है। अंतिम गाने प्ले करते हुए कार्यक्रम को भी समाप्त करना है और आगे बढ़ते हैं और अगले गाने के

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित निर्मल्या डे का ध्रुपद धमार गायन, राग था मियाँ की मल्हार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 11 बजने को है, कुछ ही पलों में अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा है कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर 0 कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटा दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणी ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आर्थिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा है कि भारत आज 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी को किए जाने वाले UPI लेनदेन पर लगने वाला व्यापारी छूट दर यानी MDR कोई उपकर या अधिभार नहीं है। सूत्रों ने बताया कि MDR का 1 भी रुपया सरकार के पास नहीं जाता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम परीनाश धालीवाल, अनंत जीत सिंह नरुका और सीमा को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते हो तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
3: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building and set out with resolve to build a developed India. Defence Minister Rajnath Singh has said that it is essential to keep ground reality and nation interest in mind for a good security policy. He was addressing an event organized by a media house in New Delhi. The defense minister said that a holistic approach must be adopted to address the challenges related to national security. The minister acknowledged that without diplomacy, military preparations can lead to confrontations and the security dilemma. Government sources today emphasized that merchant discount rate MDR on person to merchant UPI transaction above 2000 rupees is not a cess or surcharge. Sources said not a single rupee of MDR goes to the government. They said that MDR stays within the payment ecosystem and around 96% of all UPI merchant transactions remain unaffected. The government has reduced the basic customs duty on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to consumers and mitigate inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the basic customs duty on crude sunflower oil has been slashed to nil, while on soybean oil and palm oil has been reduced from 10% to 5%. The ministry said the government has simultaneously reduced the applicable basic custom duty on the refined edible oils while maintaining an import duty differential of 19.25% between crude and refined edible oils. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar held a meeting with Prime Minister of Antigua and Barbuda, Gaston Brown, on the sidelines of UNGA in New York. In a social media post, Dr. Jayashankar said the development partnership, capacity building and climate change cooperation are going forward. He also expressed India's strong commitment to the success of Commonwealth Heads of Government meeting. India reaffirmed its clear and consistent support for the two-state solution to resolve Israel-Palestine conflict. Secretary of State C.B. George attended the high-level ministerial meeting of the Global Alliance for the implementation of the two-state solution in New York on the margins of UNGA today. External Affairs Ministry said in a statement that India's approach combines political commitment with practical support. Mr. George also participated in the second G7 Development Ministers meeting organized by the G7 chair, France, on the sidelines of UNGA in New York. Earlier, Mr. George participated in a high-level side co-hosted by Ghana, Germany and France, Reparatory Justice. Heavy to very heavy rain continued in several parts of Odisha under the influence of a deep depression over north coastal Andhra Pradesh and adjoining South Odisha. The system has triggered waterlogging, road disruptions and a flood-like situation in vulnerable areas where the state government has intensified relief and evacuation measures. And in the Asian Games 2026, Indian runners have clinched silver in the mixed 4 into 400 meter relay race at Nagoya today. Before that, Seema Kumari won bronze in the 10,000 meter race after finishing at third spot in 32.50 minutes. The achievement marks India's first medal in the women's 10,000 meter event at the Asian Games in 16 years. And that is the end of this news bulletin.
0: जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर।
4: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
5: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
4: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
5: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
4: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
5: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
6: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट, कारवा मिनी।
3: सारे गामा कारवा इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ।
4: बदन पे सितारे लपेटे हुए

0: अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखत जा। अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखत जा।
1: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: शहर का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: अगर आप लोग इन फ्यूचर किसी भी एयरलाइंस की सस्ती टिकट लेना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट त्रिमूर्ति ट्रैवल.com पर विजिट करें।

0: বোঝানে।
1: আচ্ছা তো চলো।
2: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 94 FM में।
2: जी, योगेश जंगरेकर
1: जी। जी, क्या हाल चाल है आपका?
2: बढ़िया है।
1: तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
2: एक गजल है, फिल्म प्रेम के हाथों से छू लो तो मेरा गीत अमर कर दो।
1: अरे, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
2: सभी साथियों को।
1: तो आपका गाना प्ले करते हैं।
2: जी, धन्यवाद।
1: जी, रेडियो रंजन में कॉल किया इसलिए आपका बहुत बहुत।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 एफएम में।
1: जी हम
0: जी हम सब भी अच्छे
1: हैं।
0: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: सुना दीजिए शादी वाला गाना।
0: बताने की बोल
1: शादी वाला गाना वो सुना दीजिए। कालियों गोरे रंग वालियों हम तुम्हारे हैं दुराने, शादी वाली रात में जूते चुराते हो तो सुनाओ तो जाने वाला।
0: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: जी आपको जितने श्रोता सुनता भी सुनेंगे हम आपकी दूसरों को साथ सुनेंगे।
0: तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिंगिंग 90.4 एफएम।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ghandi bajti hai to kehte hain hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो।
7: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 में।
7: जी हाँ मैम।
6: हेलो।
7: हेलो
6: मैम जी, नाम बता दीजिएगा अपना।
7: जी नाम मेरा बाबू राम कुमार हुआ।
6: अच्छा, और कहाँ से हैं आप?
7: मैं बिहार से बोल रहा हूँ।
6: बिहार में कहाँ से?
7: बिहार मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से।
6: जी जी, तो कैसे हैं आप?
7: अभी तो ठीक है मैम, आप लोग कैसे हैं?
6: जी जी, हम सब भी ठीक हैं। तो आज आपको कौन सा गाना सुनना है?
7: बॉर्डर का मैम
6: जी,
7: बॉर्डर का संदेश आते हैं।
6: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
7: जी सब लोग हमारे दोस्त ही है, फ्रेंड सारे लोग।
6: ओके, तो गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: जी।

0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: ग्वालियर सुंदरपुर।
0: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: ठीक है, आपका बताइए।
0: जी मेरा भी ठीक है।
1: भगवान बड़ी फुर्सत से नहीं गाँव के।
0: हाँ हाँ, और गाना किसी को
1: सुनना? जी गाना, जी जी,
0: हम तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 एफएम।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: हेलो, जयंती बोल रहे क्या?
7: जी
6: हाँ, मैं गोपाल बोल रहा हूँ बेंगल से।
7: जी
6: कैसे है ना?
7: मैं अच्छी हूँ, आप बच्चे आप कैसे हैं?
6: आप अच्छे हैं ना? व्हाट्सअप कैसे हो रहा है? पानी?
7: जी
6: पानी हो रहा है ना? कि
7: नहीं, पानी तो नहीं हो रहा है इधर।
6: आपके घर में तो पानी हो रहा है? और दुर्गा पूजा आपको उधर में होता है ना?
7: हाँ, दुर्गा पूजा है।
6: दुर्गा पूजा का पंडाल तैयारी हो रहा है क्या?
7: जी बिल्कुल तैयारी हो रहा है, गोपालगंज पूरे जोर शोर से तैयारी चल रहा है।
6: अच्छा अच्छा।

0: आज तो एक तो गाना सुनेंगे।
1: बता दीजिए कौन सा?
0: जुदाई मूवी का है, पुराना जुदाई है, जितेंद्र और रेखा
1: जी।
0: गाना तो है मार गई तेरी मेरी जुदाई, किशोर और आशा भोसले का गाना। तो वो पुराना जुदाई है, वो जुदाई है ना अनिल कपूर का, वो नहीं है। जुदाई जो है जितेंद्र और रेखा की, मार गई तेरी मेरी जुदाई, किशोर कुमार और आशा भोसले। गाना गान तो अच्छा अच्छा गाना तो मैं सभी को डेडिकेट करूंगा, आपको भी और आपको भी। हेलो माई चर्च, तो प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छे सुनते हैं और प्रोग्राम भी अच्छे रहते हैं, सब गाना भी सब रिक्वेस्ट भी सब अच्छे से कर रहे हैं ना।
1: बस आप साथ में रहते हैं, जुड़ते हैं तो अच्छे से चल रहा है।
0: ऑफकोर्स हम लोग के साथ में है आपके साथ, तो गाना तो और भी बढ़िया चल रहा है ना, तो प्रोग्राम भी और भी अच्छा होगा।
1: रेडियो में कॉल किए।
0: ओके थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4
0: एफएम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: कौन है? निर्मा जी है?
1: नहीं, मैं भारती बोल रही हूँ।
0: अच्छा भारती जी।
1: हाँ जी,
0: बहुत दिन के बाद भेज चुका।
1: हाँ हाँ
0: ठीक है। अच्छे है ना?
1: जी हम अच्छे हैं, आप बताइए, आप ठीक है?
0: हम भी ठीक है। और सब सुनाइए, कैसे है?
1: और सब तो बढ़िया है, बस आप लोग से बात हो रही है।
0: ठीक है,
1: तो
0: हमको गाना सुना दीजिए।
1: बता दीजिए कौन सा।
0: सराही मनवा दुख के चिंता के साथी है, दुख तो अपना साथी है।
1: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: आप पहले आपको, उसके बाद पूरे टीम के जितना लोग है सबको।
1: अच्छा जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक है, अब सुना दीजिएगा।
1: ये आपको कल सुनने को मिलेगा।
0: अच्छा ठीक
1: है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो,
2: सलाम अलैकुम मैम।
1: हेलो,
2: सलाम अलैकुम मैम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
2: खाना खा लिए?
1: जी जी हम खा लिए, आप बताइए।
2: मैं भी खा लिए।
1: तो
2: बताइए
1: जी, हम सब तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
2: उनको गाना सुनना है
1: जी, बिल्कुल बता दीजिए। कौन सा
2: हिंदी सॉन्ग है? आशिक है कौन तुम आशिकी हो जिसकी, शायर है कौन।
1: अच्छा, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
2: तन्हा जजमेरी, रवीना, गुलाबसा, सहीमा, सबेलो और आपको भी, रेडियो रिमझिम सुनने सभी श्रोता को।
1: आपका गाना सुन सकते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
0: विकास कुमार।
1: जी जी,
0: जिंदापुर। और बताइए आप कैसे हैं?
1: जी हम अच्छे हैं।
0: और मौसम कैसा है
1: इधर का? तो मौसम अभी बढ़िया बना हुआ है।
0: बारिश उरिश का मौसम नहीं बन रहा है?
1: नहीं, अभी तो बारिश का मौसम नहीं बन रहा है, बस ऐसे ही हल्का कभी धूप कभी छांव और हवा हल्का हल्का चल रहा है।
0: अच्छा, लग रहा है कि भगवान धान को नहीं होने देंगे।
1: ये तो बात है,
0: धान का फसल नहीं होने देंगे।
1: तैयार होने का टाइम आ गया है,
0: अभी इनको बारिश होना चाहिए ना।
1: जी जी, वो जब होता है कि धान जब पूरा रेडी हो जाता है और काटने का टाइम होता है, उस टाइम होता है।
0: उस टाइम होने से क्या फायदा है मैडम, बताइए?
1: तो वही तो आजकल हो रहा है, जब होना चाहिए तब नहीं हो रहा है और होना चाहिए तभी हो रहा है।
0: सुबह सुबह सुबह सुबह मेरे पापा धान का फसल में पानी दे रहे थे बोरिंग से, तो मैं बोला कि पापा पानी नहीं हो रहा है क्या? बोल रहे हैं कि नहीं नहीं बेटा, पानी नहीं हो रहा है, पानी होता तो मैं बोरिंग चलाता।
1: सही बात है।
0: और सब बताइए?
1: और सब ठीक है।
0: खाना वाना खा लिया है?
1: जी खाना हो गया हम लोगों का। तो बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनना है?
0: याचिज मैडम,
1: कौन सा गाना सुनना है आज?
0: आज खेसारी लाल का वही गाना सुनना है।
1: बता दीजिए।
0: कसीरे कैसन बर पा गए।
1: अच्छा अच्छा, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: ये गाना सबसे पहले आपको, जितना रेडियो न्यूज सुनने वाला है सबको।
1: अच्छा जी,
0: एक मेरा दोस्त है वो गुरदीप।
1: बढ़िया है
0: जी,
1: तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक है, ओके मैडम।
1: ओके, रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। नमस्ते।
0: ठीक है, ओके।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
3: कैसी हैं?
2: जी मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
3: मैं भी ठीक हूँ। क्या हो रहा है?
2: जी आप सबसे बातें हो रही हैं।
3: आपका हो गया?
2: जी मेरा तो हो गया है। आपका हो गया?
3: जी मेरा भी हो गया।
2: तो क्या हो रहा है अभी?
3: अभी कुछ नहीं, आपके पास फोन लगा रहे थे।
2: अच्छा जी,
3: गाना सुना है?
2: बिल्कुल बता दीजिए।
3: ये गाना नहीं है, ये जो तेरी टायर की सनसन है।
2: जी जी है।
3: हाँ यही सुना है। पुराना सॉन्ग है?
2: जी पुराना है पर बहुत अच्छा है।
3: हाँ।

0: थोड़ा पूरा बजा दीजिएगा, पहली बात ये है
1: जी।
0: पूरा मतलब जितना है उसको बजा दीजिएगा।
1: अपना नाम भी बता दीजिएगा।
0: एंजल गोपालगंज से।
1: अच्छा जी, आप पहली बार कॉल की है ना?
0: जी तो बजा दीजिएगा, पूरा बजा दीजिएगा।
1: गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
0: जी आपको और सभी दोस्तों को।
1: जी बिल्कुल, तो गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: जी क्या
1: वालेकुम सलाम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
0: कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ।
1: क्या हो रहा है अभी?
0: मैं तो रेडियो सुन रही थी।
1: अच्छा, ठीक है।
0: रेडियो सुन रही थी, उसके बाद आपने गाना भी सुन ली थी। बस खाना खा रही थी और कॉल लगा रही थी। आपका खाना हो गया है?
1: चलिए
0: सुना दीजिए गाना।
1: बता दीजिए कौन सा?
0: हम प्यार करने वाले, नया वाला सुना दीजिएगा।
1: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: जी मैम, आपको और सोनी मैम को और मनोरमा मैम को और अपनी दीदी को और रेडियो सुनने वाले सभी दोस्तों को और सभी आ रही
1: है। तो फिर आपका गाना प्ले करते हैं।
0: जी मैम,
1: सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
0: बाय मैम।
1: बाय।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
5: थैंक यू मैम, आप कैसी हैं मैम?
6: जी मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
5: हम भी ठीक हूँ, मस्त हूँ, बिंदास हूँ। आपकी दुआएं हैं, आपके आशीर्वाद है।
6: अच्छा जी, क्या हो रहा है अभी?
5: अभी तो आपके पास कॉल ही लगा रहे थे।
6: अच्छा जी, नाश्ता हो गया आपका?
5: नाश्ता नाश्ता हो गया है, यारे सारे गाने होने वाला है, हो गया है नाश्ता।
6: अच्छा जी, तो आज बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
5: ये गाना सुना दीजिएगा, तन्हाई की आलम में, बरसात के मौसम में, जिंदा हूँ तो जीने में दो, बरसात में पीने में दो।
6: जी जी, और गाना किसी को सुनवाएंगी जी?
5: सबसे पहले तो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं।
6: जी जी,
5: और सारे जितने रेडियो मूवी में जितने मतलब सुन रहे हैं उन सभी को मतलब डेडिकेट करना चाहते हैं।
6: जी,
5: और सर बताइए मैम, आपका तबीयत वगैरह कैसा है?
6: जी मेरा तबीयत वगैरह तो सही है, बस
5: चलिए। अच्छा, तो स्टोरी चल रही है ना आपका?
6: जी मेरी स्टोरी
5: ये चलती है ना अभी? चलिए, अब ये वॉइस योर चॉइस सबसे मतलब अच्छी कॉफी है मैम?
6: 12 बजे से 4 बजे तक चलता है।
5: 12 से 4
6: दिन में?
5: पहले हम लोग सुनते थे 10 से 1 के बीच चलता था।
6: नहीं, और सब ठीक है?
5: हाँ, हम लोग पूरा फैमिली अच्छा है, तंदुरुस्त है, मस्त है।
6: जी जी, मस्त होना चाहिए।
5: जी जी, आप तो हमारी मतलब जाना पहचाने वाले दोस्त लग रही हैं। पहले सुनते थे लोग, इसलिए आपसे थोड़ा सा मतलब बात करने का एक्सपीरियंस है। और सब बताइए, इतना मतलब बात हो जाता है, नहीं तो आपका लाइन व्यस्त होता है।
6: जी जी, लाइन तो थोड़ा व्यस्त रहता ही है, कॉल आते रहते हैं ना, इसलिए। तो आपका गाना प्ले करते हैं? आपका गाना
5: प्ले कर, हाँ प्ले कर दीजिएगा।
6: जी
5: चलिए, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।
6: जी जी, रेडियो रिंग में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: थैंक यू।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते
1: जी, क्या बोल रहा हूँ
0: जी?
1: उनसे बुजुर्ग तालुका अध्यक्ष जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से।
0: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
1: बस बहुत मजे में मैडम।
0: जी जी, चलिए बढ़िया है। तो आप बता दीजिए कौन सा
1: गाना? मुझे फिल्म का नाम है दलाल।
0: और गाने की बोल?
1: गुटर गुटर दरिया पे सोना कबूतर।
0: अच्छा, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: आप कौन बोल रहे हैं मैडम?
0: मैं तो भारती बोल रही हूँ।
1: सबसे पहले आप सुनिए मैडम
0: जी,
1: और हमारे हेलो फार्मेसी का रेडियो ग्रुप है ऑल इंडिया का, उसमें गौतम राय बोले, गुलवंत कड़ू है, लोकेंद्र वर्मा है, टेकचंद अग्रवाल है, गंगाधर सावनकर जी है, छत्तीस रघुवंशी है, संतोष काटे है, रामपाल यादव है, और राजेंद्र गंगवार जी है, तुकाराम यादव है, भरपूर है हमारे श्रोता मैडम।
0: जी जी, तो गाना आपका प्ले करते हैं।
1: ओके ओके ओके, थैंक यू मैडम।
0: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: ओके ओके।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 90.4 FM में।
5: नमस्ते दीदी।
6: नमस्ते। गणेश जी।
5: जी
6: क्या हाल चल बा?
5: ठीक बा, तुम बताओ?
6: जी हम के हमरो ठीक बा।
5: अगर मनोरमा दीदी कहाँ है?
6: उहो के बानी, उहो अपना सामने बानी।
5: और सब बताएंगे?
6: जी और सब तो ठीक बा, बस रोवे लोग इनसे बात होता। अभी
5: गोपालगंज के मौसम कैसे बा?
6: गोपालगंज के तो नॉर्मल मौसम बावे, एकदम हवा भी बा और हल्का धूप और हल्का छांव भी बा। हमार हाल से चल ठीक बा, रोवा बताई?
7: हमारो ठीक बाते।
6: तो गाना बताई रोवा, यहाँ के तो नहीं की बताओ तो रोवे बता दी।
7: गाना हिंदी से हम सुने के बाद हाई वाला आ गई सारी दुनिया के तेरा बंधन बांध लिया, यही सुना।
6: गाना तो बहुत अच्छा बा जी।
7: दीदी के सबसे पहले रउआ के रही और मनोरमा दीदी के जितना सुनता है वहाँ लोग के और हमने भी सुना सोनी दीदी। ऐसे तो हमने बीटू भैया के सुना एक बार, हम बारह नहीं जी किए।
6: अच्छा जी, चलिए बढ़िया बाबा।
5: और मनीष जी के भोर पार के तरी
6: के भोर? अच्छा यहाँ के नो?
7: हाँ
5: हमारे गाँव से बारह। लगे मैंने घर के लगे घर पर।
6: अच्छा
5: जी, चलिए बढ़िया गाना सुना दे।
6: जी तो गाना प्ले करता नहीं, सुनते रही रेडियो 90.4 FM।
5: नमस्ते।
6: नमस्ते।

0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 92.4 एफएम में।
1: जी सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: जी मैं आगा फसारी बोल रहा हूँ सीतापट्टी से।
0: जी क्या हाल चाल है आपका?
1: बहुत बढ़िया है, आप सुनिए आप कैसे हैं, क्या चल है?
0: जी जी हम सब भी ठीक है, अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ।
1: तो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना?
0: हाँ हाँ, तो आपसे बात ना रिकॉर्डिंग हो रही है तो
1: बिल्कुल सही बात है। तो फिर और सुनाए क्या चल रहा
0: है? सब तो बढ़िया है।
1: चलिए बढ़िया रहना चाहिए। मुझे एक गाना सुना दीजिएगा, फिल्म का नाम है आखिरी।
0: जी और गाने की बोल।
1: और गाने का बोल रहेगा तू मेरी जिंदगी है।
0: जी जी और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: जी आपको और सभी सुनने वाले दोस्तों को, जितने लोग हमको जानते हैं सभी लोग।
0: ओके तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: ओके शुक्रिया,
0: सुनते रहिए रेडियो रंजन 92.4 एफएम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4।
6: धन्यवाद। आप तो जल्दी बोल रहे हैं गोपालगंज से।
5: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
6: जी अच्छा है। मैं सोचे हैं और भी दोस्त बात करते हैं भोजपुरी में, तो आज हम भी बात कर ले भोजपुरी में, भारतीय में
5: भोजपुरी हम भी बोलेंगे।
6: हाँ तो मैम, और सब बताओ कैसा बात?
5: और सब तो बढ़िया बा।
6: और मैम हम बहुत ज्यादा कॉल लगनी तब लागल।
5: अच्छा तो हाँ, कॉल लगता आते बाबा एकदम से लगातार
6: बहुत मेहनत भैल है।
5: इतना बार करेंगे मुश्किल
6: है। हाँ सब पूछिए।
5: अच्छा जी, इतना ज्यादा
6: 3 मिनट में पहले से लगा तो 3 मिनट बाद स्टार्ट भैल का। तो मैम भोजपुरी में बात करे हुए हिंदी गाना के फरमाइश करें।
5: बता दी कौन सा गाना
6: और बताई की भोजपुरी में बात कैसा लगा था?
5: अच्छा लगा था।
6: सोचनी आप बहुत लोग सुन ले बानी की भारती मैम तो भोजपुरी में बात होला, सोचनी हम कर ले।
5: बिल्कुल सही।
6: अपन गोपालगंज से रहते हुए अरे चाहिए बिहार में मानी सुना के
5: बिहार में मानी और भोजपुरी ना बोलने का क्या फायदा?
6: हाँ अपने माटी के पहचान है। हम रखे गाना सुनाई गाना का बोल बा दिल कहता है चल उनसे मिल।
5: और गाना के सुनाने
6: सुनाए के बाद आपके और अनुरमा जी के मैम और वो सब सब शिकायत बार लेकिन हमारे फरमाइश पूरा ना कहू।
5: अच्छा कल
6: ना सोमवार की रात में हमारे एक सप्ताह कम्प्लीट हो गए हुए हम रेजिडेंट जिम के रूल नहीं।
5: सर की
6: शिकायत बा।
5: अच्छा कोनो बात ना, कभी कभी हो जाला
6: मैम। और वो देखे नहीं हम शो में योर वाइस योर चॉइस वाला में एक सप्ताह से ही मतलब फरमाइश करे।
5: ये तो बात बिल्कुल सही।
6: ओके मैम, सब कोई नाम नहीं ले सकत। ऑल बाय एडवांस में धन्यवाद और बाय बाय कहे लोग।
5: जी रेडियो रेंज में कॉल के नहीं हो खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
6: ओके मैम, बाय बाय
5: बाय बाय।

0: हेलो
1: नमस्ते मैम
0: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंचन 90.4 एफएम में।
1: धन्यवाद मैम। हम यासुद्दीन अहमद बोल रहे हैं चौराहे से।
0: जी जी, क्या हाल चाल है?
1: हमारे भाई का नाम है सुखल सुखारी, उन्हीं के भाई हम हैं यासुद्दीन अहमद।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: सब बढ़िया, आपने सुनाइए लोग।
0: जी हम सब भी अच्छे हैं।
1: पूरा रेडियो टीम अच्छे है न?
0: जी जी, सबको
1: चलिए अच्छा के बात। थोड़ा गाना सुनवा सकती हो?
0: बिल्कुल सुनवा सकते हैं, बता दीजिए कौन सा।
1: एक जो कर्पूरा के नहीं है, क्या नाम हुआ उनका, पढ़ता है बड़ी ठंडे वाला गाना सुनते हैं, मनान भाई है। उन हमको भी उन्हीं के एक्टिव से सुनने के हमको भी मन कर रहा है ठंडे वाला गाना। तो गाने से बोल है तरकारी लखतिया जाड़ा लगे, जड़े में बलमा प्यारा लगे। ठीक है भाई।
0: अच्छा
1: जी, मनान भाई के फरमाइश पर हमको भी मन कर दिया ठंडे वाला गाना सुनने का।
0: जी जी, चलिए बढ़िया है। तो गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
1: मनान भाई को सुनवाना चाहते हैं और हम अपना सुनवाना चाहते हैं और जितना रेडियो रिंचन में सुनने वाले सभी को और आप लोग को।
0: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिंचन 90.4 एफएम।
1: ठीक है, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: भाई

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: फिल्मी गाने से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें।

0: To enjoy evergreen melodious songs from over the years to the latest ones, subscribe to Filmi Gaane channel.
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान.
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM.
1: सुनो दिल से.

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

हे महामाया, तेरी सदा ही जय हो। तूने भक्ति का दान देकर एक भक्त का जीवन सफल कर दिया है। इस नाचीज को अपने चरणों की शरण देकर उसका जीवन खास बना दिया है। अब ये भक्त ताउम्र तेरे चरणों में रहना चाहता है। सदैव उसकी सेवा को स्वीकार करते रहना। हे दातिये, एक तेरा ही सहारा है।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।